मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948, श्रावण माह की 27वीं तिथि, तदनुसार 18 अगस्त 2026 सुबह के 5:56 हुए हैं। हमारी आज की सभा आरंभ होती है।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी उम्मीदवारों के 24 दिन से जारी विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने जीएसएससी सीजीएल परीक्षा 2024 और टीडीपीएल एजेंसी द्वारा संचालित सभी प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल शाम मंत्रिमंडल की विशेष बैठक के बाद ये

0: घोषणा की। राज्य सरकार ने झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 2014 से संचालित भर्ती परीक्षा की व्यापक जांच का भी आदेश दिया है। छात्र नेता पीयूष कुमार ने कहा है कि यह निर्णय केवल पहला कदम है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों की 11वीं से 13वीं जेपीएससी परीक्षा और सीबीआई जांच की मांग अब भी लंबित है। विद्यार्थियों ने घोषणा की है कि वो शेष मांग पर विचार कर अगला कदम तय करेंगे। दिल्ली सरकार ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और सुपर स्पेशलिटी मेडिकल सीटों के चरणबद्ध विस्तार के माध्यम से चिकित्सा शिक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए तैयार है। इस योजना के तहत सरकार तीन स्तरीय प्रयास करेगी, जिसमें ग्रीनफील्ड परियोजनाएं, मौजूदा संस्थानों का ब्राउनफील्ड विस्तार तथा स्नातकोत्तर और उन्नत चिकित्सा कार्यक्रमों का विस्तार शामिल है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में चेक प्वाइंट सॉफ्टवेयर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नादव जाफरीर से मुलाकात की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उन्होंने भारत में कंपनी की बढ़ती भागीदारी पर चर्चा की, जिसमें अनुसंधान एवं विकास विस्तार और भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की सुरक्षा के लिए एआई आधारित सुरक्षा का उपयोग शामिल है। केंद्रीय मंत्री ने निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी संदीप सिक्का से भी मुलाकात की। उन्होंने खुदरा निवेश बढ़ाने और भारतीय बाजारों में वैश्विक पूंजी आकर्षित करने के अवसरों पर चर्चा की। भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को नेपाल आर्मी के मानद जनरल का रैंक दिया गया है। कल काठमांडू के शीतल निवास में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उन्हें ये सम्मान प्रदान किया। जनरल धीरज सेठ नेपाल के सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिग्देल के निमंत्रण पर रविवार को नेपाल पहुंचे थे। मानद पद प्रदान करने की यह परंपरा वर्ष 1950 में शुरू हुई थी। इसके तहत भारत और नेपाल एक दूसरे के सेना प्रमुखों को जनरल का मानद रैंक प्रदान करते हैं। हिमाचल प्रदेश में अत्यधिक तेज वर्षा के कारण कल 87 सड़कें अवरुद्ध हो गईं और चंबा जिले में लोहे का एक पुल ध्वस्त हो गया। अचानक आई बाढ़ से भरमौर में बालोद ग्राम पंचायत में लोहे का पुल बह गया और लगभग 50 श्रद्धालु इसमें फंस गए। ये श्रद्धालु भरमौर में मां भगवती खुंदीवाली मंदिर जा रहे थे। स्थानीय लोगों ने उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए लकड़ी का अस्थायी पुल बनाया है। सोलन जिले में चक्की मौर के निकट भूस्खलन से कालका शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गया। मौसम विभाग बिलासपुर कांगड़ा मंडी और सिरमौर जिले में आज तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूरे राज्य में 23 अगस्त तक वर्षा जारी रहने का अनुमान है। राज्य आपदा कार्रवाई केंद्र के अनुसार कुल्लू में सबसे अधिक 33 सड़कें बंद की गई हैं, मंडी में 27 और शिमला में 9 सड़कें अवरुद्ध हैं। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के तहत गणना का चरण पूरा हो गया है। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय के अनुसार इस प्रक्रिया के तहत दिल्ली में लगभग 1,45,00,000 फॉर्म बांटे गए। नई दिल्ली में आयोजित बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में भारत के आयुष शेट्टी ने मौजूदा चैंपियन चीन के शी युची को 21-14, 13-21, 21-19 से हराकर बड़ा उलटफेर किया। पीवी सिंधु और महिला डबल्स जोड़ी ट्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद भी दूसरे दौर में पहुंच गई। वहीं महिला डबल्स में कविप्रिया सेल्वम और सिमरन सिंघी की जोड़ी ने स्पेन की निकोल कैरोला और कार्मेन जिमनेज की जोड़ी को 22-20, 21-14 से हराया। प्रतियोगिता के दूसरे दिन आज पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन पहले दौर में ऑस्ट्रिया के कोलिंस फिलिमोन से खेलेंगे। वहीं उन्नति हुड्डा महिला सिंगल्स के पहले दौर में म्यांमार की थेत हतार हुजार से मुकाबला करेंगी। डबल्स जोड़ी में रोहन कपूर और रुत्विका शिवानी गड्डे तथा कनाडा के जोनाथन लाई और क्रिस्टल लाई आमने सामने होंगे। आशीष सूर्य और अमृता प्रमुरिये तुर्की के एमरे सोनमेज और यासीमेन बेक्टा से मुकाबला करेंगे। एफआईएच महिला हॉकी विश्व कप में आज भारतीय टीम पूल डी के अपने दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका से खेलेगी। ये मैच नीदरलैंड्स के एम्स्टेलफेन में खेला जाएगा। भारत ने ओलंपिक रजत पदक विजेता चीन के साथ 2-2 से ड्रॉ के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। दक्षिण अफ्रीका अपने पहले मैच में इंग्लैंड से 4-0 की हार के बाद वापसी की कोशिश करेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। मन की भक्ति करने से हमें मन को असीम शांति मिलती है, मानसिक तनाव से मुक्ति और जीवन के संघर्षों से लड़ने की आंतरिक शक्ति मिलती है, जिससे मनुष्य का अहंकार कम हो जाता है, विचारों में शुद्धता आ जाती है और परमेश्वर की कृपा हम पर

सही मार्ग पर चलने से बुरे कर्मों का प्रभाव कम हो जाता है। भक्त और भगवान के बीच का प्रेम संबंध स्थापित हो जाता है। जीवन मरण के चक्र से मुक्ति और परम आनंद की प्राप्ति होती है, तो हमें प्रभु की इस भक्ति, इस कृपा में लीन हो जाना चाहिए।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
3: आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। श्रोताओं, जीवन का मूल सिद्धांत यह है कि हमें किसी न किसी से प्रेम करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे से प्रेम किए बिना नहीं रह सकता, यह प्रवृत्ति प्रत्येक प्राणी में विद्यमान है। तो क्यों न हम प्रभु की भक्ति यानी प्रभु के प्रेम में ही लीन हो जाएं और उन्हीं से कर बैठे ये प्रेम।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। विचार बिंदु कार्यक्रम में सुनिए राम प्रसाद बिस्मिल के विचार।
1: सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजवे का दिल में है। इन ओजस्वी पंक्तियों के रचयिता राम प्रसाद बिस्मिल किसी व्यक्ति का नाम नहीं, एक भावना का नाम है। देश के लिए बलिदान हो जाने की भावना, देश को निजी स्वार्थों से ऊपर रखने की भावना। जननी जन्मभूमश्च स्वर्गादपि गरिमा।

0: करने की भावना। देश प्रेम उनकी सांसों में बसा था, उनकी रगरग में कूट कूट कर भरा था। मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए अथक प्रयास और अनगिनत बलिदान होते हैं, तब कहीं वो स्वाधीन हो पाती है, स्वाधीन रह पाती है। भारत माता को स्वाधीन करने का संकल्प तो सभी देश प्रेमियों में था, किंतु उनके रास्ते अलग अलग थे। महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा के प्रति समर्पित उनके निष्ठावान अनुयायियों ने अहिंसा का मार्ग अपनाया और समान रूप से असहाय मानी जाने वाली जनता के संकल्प को ही एक अमोघ और शक्तिशाली अस्त्र के रूप में बदल दिया। सुभाष चंद्र बोस ने देश के प्रति समर्पित सैन्य शक्ति जुटाकर भारत माता के पैरों में पड़ी बेड़ियां काट देनी चाहिए। अनेक ऐसे भी थे जो क्रांतिकारी उपायों से उन लोगों को निर्बल करने में विश्वास रखते थे जिन्होंने देश को गुलाम बना रखा था, जैसा शहीद भगत सिंह, अशफाक उल्ला खां, राजगुरु को स्वाधीन करने का संकल्प तो सभी देश प्रेमियों में था, किंतु उनके रास्ते अलग अलग थे। महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा के प्रति समर्पित उनके निष्ठावान अनुयायियों ने अहिंसा का मार्ग अपनाया और समान रूप से असहाय मानी जाने वाली जनता के संकल्प को ही एक अमोघ और शक्तिशाली अस्त्र के रूप में बदल दिया। सुभाष चंद्र बोस ने देश के प्रति समर्पित सैन्य शक्ति जुटाकर भारत माता के पैरों में पड़ी बेड़ियां काट देनी चाहिए। अनेक ऐसे भी थे जो क्रांतिकारी उपायों से उन लोगों को निर्बल करने में विश्वास रखते थे जिन्होंने देश को गुलाम बना रखा था, जैसा शहीद भगत सिंह, अशफाक उल्ला खां, राजगुरु, राम प्रसाद बिस्मिल आदि अनगिनत बलिदानी क्रांतिकारियों ने किया। बस जैसे भी हो, देश को आज़ाद कराना है, यही उनका लक्ष्य और संकल्प था। ये सिलसिला यहाँ से शुरू होता है और बहुत दूर तक चलता चला जाता है। देश ही उनकी पूजा था, उनकी आस्था था, उनका विश्वास था। ये पूजा कोई मंदिर में जाकर करे या मस्जिद में, गुरुद्वारे में करे या गिरजाघर में, इसकी गहराई में कोई अंतर नहीं पड़ता। अंतर डालते हैं वे जो निहित स्वार्थ को देश के हित से ऊपर मानकर चलते हैं, जो ये कहते हुए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल जाते हैं कि मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे। उन्हें किसका डर? अपने लिए तो उनकी कोई कामना ही नहीं है, जो कुछ है सब मातृभूमि पर न्यौछावर है। क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल का जन्म तो उत्तर प्रदेश में मैनपुरी के एक गांव में हुआ, किंतु लालन पालन शाहजहांपुर में हुआ, जहां उनके पिता पंडित मुरलीधर बाद में जाकर रहने लगे थे। बिस्मिल दसवीं कक्षा में थे, तभी गेंदालाल दीक्षित की अध्यक्षता में उन्होंने क्रांतिकारी जीवन का श्री गणेश किया। मातृभूमि की मुक्ति के दीवानों के लिए संघर्षों और यातनाओं का मार्ग प्रशस्त था। कई बार उन्हें मृत्यु से साक्षात्कार करना पड़ा, कितनी ही बार पैसा न होने के कारण घास पात खाकर गुजारा करना पड़ा, किंतु वे अपने मार्ग पर अडिग रहे। आगरा, राजस्थान, नेपाल, जाने कहां कहां अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भटकते रहे। संध्या के समय 8 नवंबर की एक रेलगाड़ी हरदोई से लखनऊ जा रही थी। एकाएक काकोरी और आलमनगर के बीच गाड़ी एक खंभे के पास खड़ी हो गई। कुछ लोगों ने पुकार कर मुसाफिरों से कह दिया कि वे केवल सरकारी खजाना लूटने ही आए हैं, किसी को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने का उनका इरादा नहीं है। इसके बाद गार्ड से चाबी लेकर तिजोरी बाहर निकाली गई और लगभग पौने घंटे में लूट की धनराशि लेकर क्रांतिकारी वहां से चले गए। 25 सितंबर से गिरफ्तारियां शुरू हो गई और रामप्रसाद बिस्मिल भी पकड़े गए। उन्हें फांसी की सजा हुई और दिसंबर 1927 में गोरखपुर में इस आज़ादी के दीवाने को फांसी पर लटका दिया गया। अंतिम समय मातृभूमि से विदा लेते हुए उन्होंने कहा था, दिल फिदा करते हैं, कुर्बान जिगर करते हैं, पास जो कुछ है वो माता की नज़र करते हैं, खाने वीरान कहाँ देखिए घर करते हैं, खुश रहो अहले वतन, हम तो सफर करते हैं।
1: विचार बिंदु कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे राम प्रसाद बिस्मिल के विचार। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। कृषि जगत कार्यक्रम में सुनिए डॉक्टर मुकेश तिवारी से शैलेंद्र प्रताप की बातचीत। विषय है ग्रामीण विकास के लिए कृषि विधिकरण।

0: उमा का कुछ विविधीकरण लावें ताकि उनकर भैया जोन एक व्यवहारिक बात है, जोन परंपरागत बात है, वह बहुत ज़्यादा उनकर दिक्कत ना हो और उनका लाभ भी हो।
1: जी, किसान भाइयों और बहनों, भारत गांवों का देश है और किसानों का देश है। जब हम ग्रामीण विकास की बात करते हैं तो उसमें हमारा सबसे बड़ा बात आता है कि हम किसान का पहले विकास करें, और किसान का विकास तभी संभव है जब वो खेती के अलावा अन्य कृषि संबद्ध व्यवसायों में जुड़ जाए।
0: मतलब खेती से जुड़ा हुआ ही व्यवसाय रहे
1: जी
0: ताकि उनका जो उन कच्चा माल है या जो संसाधन है या जगह है ओकरे बड़े कुछ अतिरिक्त प्रयास करे जरूरत ना आया
1: ना
0: है।
1: ना ना, बिल्कुल सही
0: जी
1: है। और इसके साथ साथ ये भी बात है कि हम ये विविधीकरण करेंगे कैसे और
0: जी
1: इसकी ज़रूरत क्यों है।
0: हाँ, और साथ
1: देखिए,
0: साथ भैया बाजार भी एक मिलना चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: जी
1: तो विविधीकरण ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जो छोटे किसान हैं, हमारे लघु और सीमांत किसान हैं
0: जी
1: या भूमिहीन किसान हैं, उनके पास छोटी ज़मीन है और वो साल में दो फसल ले रहे हैं, और पूरी तरीके से अगर एक ही फसल पर निर्भर रहेंगे और कोई आपदा आ गई, ओलावृष्टि सूखा, तो वो बुरी तरीके से प्रभावित हो जाते हैं, उनके
0: जी
1: पास दाल रोटी की दिक्कत हो जाती है।
0: तो भैया कुल मिलाकर के मामला खेती पे है, चाहे
1: जी
0: वो भाई फसल हो, अनाज का या सब्जियों की खेती हो, तो हम अभिवृद्धिकरण का क्या जरूरत है, कैसे अपनाऊं।
1: जी इसमें ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपके पास मान लीजिए 1 बीघा 4 बीघा ज़मीन है, तो उसमें आप थोड़े थोड़े भाग में कुछ कुछ काम करें, जैसे कुछ पशुपालन कर लें, कुछ मत्स्य पालन कर लें, कुछ बागवानी लगा लें, तो कुछ सब्जी की खेती कर लें। और इसको और अच्छे से कहें तो जैसे आप सब्जी की खेती कर लीजिए, सब्जी की खेती में आप कम क्षेत्रफल में ज़्यादा समय में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त करके आय अर्जित कर सकते हैं,
0: जी
1: और उन सब्जियों का उपयोग भी आप बिक्री के साथ साथ कई महंगे उत्पाद बनाने में भी कर सकते हैं। इसी तरीके से आपका फल उत्पादन है,
0: हाँ
1: हमारा प्रयागराज क्षेत्र के आसपास के जो ज़िले हैं वहाँ पे आंवला, अमरूद, केला के लिए बहुत ज़्यादा संभावनाएं
0: आम भी
1: हैं।
0: हो तो भैया खूब।
1: जी जी
0: हाँ हाँ
1: तो
0: बैर हो तो
1: जी
0: हाँ
1: तो इनके लिए संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। तो इस तरीके से सब्जियों का उत्पादन करके, फलों का उत्पादन करके हम अपनी आय को पूरे वर्ष भर निरंतर बनाए रख सकते हैं।
0: अच्छा भैया तिवारी जी, एक बात यह हुआ था कि देखें चाहे फल हो चाहे सब्जी हो, ये खास मौसम में खास समय में होता और बहुतायत हो तो भाई सस्ता भी रहा तो खूब एकर उत्पादन होता,
1: जी
0: मूल ओकरे बाद बहुत कम एकर मात्रा रह जाता है ना ही होते, जैसे टमाटर बाटे भाई बाहरे से आवे लागत है, तो ऐसे में एकर स्वाद भी मिलत रहा है। किसान भाई हैं जो मौसम में फेंक देते हैं, सड़ जात है, खराब हो जाता है, ओकर बेहतर उपयोग भी हो सके, उनका ज़्यादा लाभ मिल सके। तो विविधीकरण में हम समझी था जो उन प्रसंस्करण का बात है, चाहे फल का बात हो चाहे सब्जियों के प्रसंस्करण का बात हो, तो उसे तरह तरह के जैसे भाई प्रतापगढ़ में देखें जागरूकता है तो आंवला
1: जी
0: से
1: जी
0: जैम जेली मुरब्बा अचार तमाम चीज़ बनवाते हैं सब और बढ़िया लाभ लेता है, तो ऐसे का सब्जियों में भी अगर उपयोग हो सका था।
1: बिल्कुल सर, सब्जियों में आप जैसे करौंदा है, नींबू है, उसके अलावा आलू है, इन चीज़ों के आप खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से कई उत्पाद बना के मार्केट में दे सकते हैं, बाजार में दे सकते हैं।
0: मरचा है गोभी है एक
1: जी
0: अचार बन सकता बहुत बढ़िया।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: हाँ
1: और इसके साथ साथ जो आपके आंवला है, बेल है, आम है, इनके मीठे उत्पाद जो मुरब्बा कहे जाते हैं, वो भी आप
0: जी
1: बना के आय अर्जित कर सकते हैं। इसके लिए सरकार प्रशिक्षण भी प्रदान कर रही है, जगह जगह प्रशिक्षण केंद्र खोले गए हैं, वहाँ पे प्रशिक्षण भी मिल रहा है और इसके लिए सहायता भी मिल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि महिला सशक्तिकरण, इन कामों में महिलाएँ लगती हैं, ग्रामीण महिलाएँ हमारी अपने स्वाभिमान को सुरक्षित रखते हुए अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकती
0: और हम
1: हैं।
0: समझे तो भाई समूह के माध्यम से अगर ये काम करें तो पूरे गांव क्षेत्र का विकास सुरक्षित
1: बिल्कुल,
0: हो सकता
1: स्वयं सहायता समूह बनाकर सहकारिता के माध्यम से
0: है। हाँ
1: ये पूरे काम को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं।
0: अच्छा तिवारी जी, फूल का भी बड़ी उपयोगिता बाटे, चाहे तीज हो, त्यौहार हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, ब्याह गवन हो, हर जगह फूल का उपयोगिता रहा था, तो फूल में का विविधीकरण कैसे कर हमें किसान भाई को।
1: फूल में ये कर सकते हैं कि अगर आपके पास जगह है तो आप अपने क्षेत्र के हिसाब से गुलाब और गेंदा मुख्य व्यवसायिक फूल हैं,
0: हाँ
1: उनकी
0: एक
1: आप खेती
0: ज़्यादा
1: कर
0: खपत
1: सकते हैं,
0: होता।
1: उसकी खेती आप आराम से कर सकते हैं। इसके अलावा ग्लेडियोलस और रजनीगंधा, जिनकी मांग शादी विवाह के समय में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो आप उसकी भी खेती करके आय अर्जित कर सकते हैं। और इसकी जो बाज़ार है वो हर ज़िले में उपलब्ध है, पर्याप्त मात्रा में आपको धन अर्जन के लिए काफ़ी है।
0: और हम समझे तो भैया एका सुखाए के एक रस निकाल के भी तमाम इत्र या जल एकर बना था, ओकर भी उपयोग होता।
1: जी जी

किसान भाइयों, खेती के साथ साथ अगर खेती आधारित या कृषि आधारित रोजगार धंधा पर भी हमारे किसान भाई जरे गौर करें, मेहनत करें, वैज्ञानिक सोच रखें, तो इमा दूराय ना है कि उनका ज़्यादा और बेहतर आमदनी हो सकता है और समय समय पर आमदनी हो सकता है। तो ग्रामीण विकास में कृषि विविधीकरण का कुछ आवश्यकता बाटे, का महत्ता बाटे, आज ही विषय पे बतकही के बड़े अपने बीच में भैया मुकेश तिवारी जी आया है कार्डेट इफको से। भैया आपको स्वागत है, आप विशेषज्ञ हैं खेती का, कृषि का, विविधीकरण का। तो हमारे किसान भैया कृषि के साथ साथ

0: इन चीज़ों का आप प्रयोग कर सकते हैं, इत्र बना सकते हैं, एसेंस बना सकते हैं, जो भी आप फूल के सुखा करके रंग बना सकते हैं,
1: जी,
0: इन चीज़ों में उपयोग कर
1: वो
0: सकते हैं।
1: प्राकृतिक हो तो भैया अच्छा भी रहा तो बढ़िया दाम भी मिल रहा।
0: हाँ
1: अच्छा तिवारी जी, एक बात यह हुआ था कि भाई कृषि आधारित जैसे आसपास में जगह है तो मुर्गी पालन की जाए, इसका तालाब है तो मछली पालन की जाए, इसका या तरीके की जो पालन वाली बात है पशु या पक्षियों का पालन है तो ऐसे भी तो आय अर्जित की जाए इसका।
0: जी, बहुत अच्छी आपने बात कही है। ज़्यादातर जो किसानों के पास भूमि है, तो हो सकता है कुछ भूमि खराब हो, ऐसी भूमि को उपयोग करने के लिए वो एक छोटा तालाब बना के मत्स्य पालन कर लें। इसके साथ साथ छोटी सी जगह में आप मुर्गी पालन कर सकते हैं, बकरी पालन कर सकते हैं, सुअर पालन कर सकते हैं। और हमारे देश में मांस की खपत बहुत ज़्यादा है, अंडे की खपत ज़्यादा है, तो आप मुर्गी से, बकरी से और
1: मछली से
0: सुअर से, मछली से, इन चीज़ों में आप व्यवसाय करके अधिक आय अर्जित कर सकते हैं।
1: हम समझे तो भैया इनके बारे कुछ विशेष करहु कन आया है, प्रशिक्षित हो जाए, जगह हो और साथ ही साथ जोन भाई अब जैसे मुर्गी पालना है या मछली पालना है तेरे बड़े तो देखें जो भूसी निकलत है या चूनी चोकर निकलत है ऐसे भी काम चल सकता था।
0: जी, काम चल सकता है। इसके साथ साथ एक अभी शोध चल रहा है पंत संस्थान में, जिसमें ये कोशिश की जा रही है कि जो मछली तालाब है उसके ऊपर ही कुछ ऐसी व्यवस्था बना दी जाए कि उसके ऊपर मुर्गी पालन कर लिया जाए और उनकी जो बीट गिरे वो मछलियों के खाने के उपयोग में आ जाए। इस
1: वाह
0: तरह का भी कोशिश चल रहा है।
1: हाँ
0: और इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि आप उनके रोगों का निदान और वो सब चीज़ भी जो उनको ज़रूरत है वो भी आसानी से थोड़ी जगह में आप मैनेज कर पाएंगे।
1: बहुत बढ़िया भाई, देखा समय का मांग यह है। अच्छा साथ ही साथ हम समझे तो मधुमक्खी पालन भी
0: जी
1: भाई
0: जी जी
1: कृषि
0: जी
1: आधारित है, जहाँ पेड़ पालो रही हैं फूल रहे वहाँ मधुमक्खी पालन बढ़िया हो इसका, तो इससे बढ़िया आमदनी हो इसका था।
0: बहुत बढ़िया आमदनी हो सकती है। और अपने देश में शहद की मांग लगातार बढ़ती जा रही है इनके औषधीय गुणों के कारण, तो मधुमक्खी पालन में किसान भाई ऐसा कर सकते हैं कि अपने खेतों में एक दो बक्सों की व्यवस्था कर लें मधुमक्खी पालन करते समय, और उससे एक तो आप शहद बेच के आय प्राप्त कर लेंगे, लेकिन एक बहुत बड़ी बात यह भी है कि जिस खेत के आसपास मधुमक्खी बक्से रखे जाते हैं वहाँ उत्पादन 1.5 से 2 गुना तक बढ़ भी जाता है
1: परागण के द्वारा
0: परागण के द्वारा।
1: वाह
0: मधुमक्खियाँ 3-4 किलोमीटर के क्षेत्रफल में घूम करके और वहाँ से पराग इकट्ठा करती हैं, तो ऐसे क्षेत्रों में फसलों में उत्पादन बहुत बढ़िया बढ़ जाता
1: अंक
0: है।
1: तिवारी समझी थे के साथ साथ अगर हमारे किसान भैया पशुपालन पर भी जोर दें तो विविधीकरण के द्वारा बढ़िया घी बनाए सकते हैं, पनीर बनाए सकते हैं, खोआ बनाए सकते हैं ना, और अच्छी एकर बाजार है, बढ़िया आमदनी हो सकती
0: जी,
1: है।
0: आपने ये जो पशुपालन में दुग्ध से संबंधित चीज़ें बोली, इसके साथ साथ आप गोबर गौमूत्र की सहायता से खाद बना सकते हैं, कार्बनिक खाद बना सकते हैं, कीटनाशक बना के उसकी आय अर्जित कर सकते हैं।
1: तिवारी जी बहुत बढ़िया जानकारी दी, हम समझित हमारे किसान भैया रहे कि खेती के साथ साथ विविधीकरण का भी अपनाऊँ मैं तो उनका ज़्यादा लाभ हो सकता था। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।

0: ग्रामीण विकास के लिए कृषि विविधीकरण। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर मुकेश तिवारी से शैलेंद्र प्रताप की बातचीत। इसी के साथ कृषि जगत कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में सुनिए डॉक्टर अखिलेश को। विषय है बरसात में होने वाले त्वचा रोग व उनका होम्योपैथिक उपचार।
1: बरसात के मौसम में हम देखते हैं मौसम गर्म होता है, नमी, चिपचिपाहट, पसीना बहुत ज़्यादा होता है और वो सूखता नहीं है। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि हम नित्य प्रति स्नान करें और हो सके तो कोई ना कोई एंटीसेप्टिक साबुन या कोई लोशन पानी में डाल करके उससे स्नान करें और रोज़ साफ तौलिए से पूरे बदन को अच्छी तरीके से पोंछ करके और हल्के सूती एवं ऐसे वस्त्र धारण करें जिसमें हवा का आदान प्रदान होता रहे, जिससे कि हमारी त्वचा की देखभाल अच्छे से, उसका एरेशन हो और वो स्वस्थ रहे। खास करके अंतः वस्त्रों को, जैसे हमारी अंडरवियर, बनियान, इन चीज़ों को हमें रोज़ अच्छे से तरीके से धोना चाहिए, उसे धूप में सुखाना चाहिए और हो सके तो उसको आयरन करके ही इस्तेमाल करना चाहिए। इससे किसी भी प्रकार का

0: इन्फेक्शन स्किन तक नहीं पहुंचेगा और हम पूरी तरीके से स्वस्थ रहेंगे। स्किन को जहां तक हो सके ड्राई रखने की कोशिश करें, ढीले वस्त्र पहनें और खुली हवा में टहलें, व्यायाम करें, योगा करें, ताकि स्किन को पूरी तरीके से ताजी हवा का पोषण मिल सके। दूसरा, हमें अपनी स्किन में तेल की मालिश या बालों में तेल का इस्तेमाल बरसात के सीजन में नहीं करना चाहिए या कम से कम करना चाहिए, क्योंकि तेल में चिपचिपाहट होती है और इससे स्किन के पोर्स बंद हो जाते हैं और उनको प्रॉपर नरिशमेंट, एरेशन नहीं मिलता है, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फेक्शंस उसमें सेटल होते हैं और वो त्वचा की विभिन्न परेशानियों का कारण बनते हैं। और हमारे शरीर में बहुत सारी परेशानियां, जैसे खुजली होना, त्वचा का लाल पड़ना, लाल चकत्ते पड़ना, और इन्फेक्शन बढ़ जाता है तो उसमें पस, मवाद, ये सब भी देखने को मिलता है, तो एलर्जिक रिएक्शंस भी देखने को मिलते हैं। बहुत सारे एलर्जेंस होते हैं जो बरसात के सीजन में हमारी त्वचा से रिएक्ट करते हैं और बहुत तरीके की प्रॉब्लम खड़ी करते हैं। तो इसलिए हमें बरसात के सीजन में इन बातों का विशेष ध्यान रखना है कि हमारे वस्त्र स्वच्छ हों, शरीर सूखा रहे, हवा का आदान प्रदान होता रहे। जिस जगह पर हम रह रहे हैं, हमारे बिस्तर, हमारे तौलिए, हमारे जितने भी चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं, वो पूरी तरीके से डिसइन्फेक्ट हों और किसी भी तरीके का इन्फेक्शन उनके द्वारा शरीर में ना होने पाए। और हमें खान पान का भी विशेष ध्यान रखना है कि इस सीज़न में हमें तली भुनी चीज़ें, पकौड़े हैं, इस तरीके की चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं, लेकिन ये स्वास्थ्यवर्धक नहीं हैं, क्योंकि ऑयली चीज़ें स्किन के पोर्स में ऑयल का कलेक्शन करेंगी और वहाँ पर इन्फेक्शन सेटल होगा, जिससे कि डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम खड़ी होती हैं। तो हमें जहाँ तक हो ताज़ा, हल्का और मिर्च मसाले और तेल से रहित भोजन का सेवन इन दिनों करना चाहिए। पानी का अधिक से अधिक प्रयोग करें और शुद्ध पानी नियमित रूप से हम पीते रहें। यौगिक क्रियाएं करें, प्राणायाम करें। सामान्य जो समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं इन दिनों में, एलर्जिक डर्मेटाइटिस, फंगल इन्फेक्शंस, इन्फेक्शियस फंगल डिजीजेज, जैसे रिंग वर्म है, स्किन रैशेज हैं, अर्टिकेरिया है जो एलर्जिक डिजीज होती है, और हर्पीज, ये सब चीज़ें हमें, घमौरियाँ हैं, छोटे छोटे छोटे छोटे दाने निकल आते हैं शरीर पर और ये बहुत ज़्यादा खुजली और जलन पैदा करते हैं। तो इन सब से बचने के लिए हम अगर इस तरीके से अपनी त्वचा की देखभाल करेंगे और उसे स्वच्छ रखेंगे, तो निश्चित रूप से हम जो है इन बीमारियों से दूर रहेंगे। लेकिन यदि किसी तरीके की समस्या उत्पन्न होती है शरीर में, तो हमें एक अच्छे स्किन स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, उनसे निदान लेना चाहिए, ताकि हम जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएं। बरसात में होने वाले त्वचा रोगों के लिए होम्योपैथिक में कुछ बहुत अच्छी दवाइयां हैं जिनको आप सिम्टम्स के आधार पर प्रयोग कर सकते हैं। जैसे डलका मारा है। डलका मारा एक ऐसी दवा है जो नमी से होने वाले सारे त्वचा रोगों में सामान्य रूप से काम आती है। इसको हम दिन में 3 बार प्रयोग कर सकते हैं। रस्टॉक्स है, बेलाडोना है, और रिंग वर्म वगैरह के लिए थूजा है, सीपिया है, ये ऐसी दवाइयां हैं जिनका प्रयोग, सल्फर का प्रयोग हम कर सकते हैं। ये स्किन को बहुत जल्दी हीलअप करती हैं और सारी प्रॉब्लम से आपको बचाती हैं। लेकिन फिर भी मैं ये सलाह दूंगा कि आप एक बार अपने डॉक्टर से सलाह ले लें और उनकी सलाह पर आप इन दवाइयों का सेवन करें, तो निश्चित रूप से आप स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करेंगे।
1: बरसात में होने वाले त्वचा रोग व उनका होम्योपैथिक उपचार, अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर अखिलेश जी को। इसी के साथ स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

सात बजे सुनिए श्री रामचरित मानस से संगीत में पाठ। फिल्मों से लिए गए भजन का आनंद लीजिएगा। 7:10 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में 7:30 पर पंडित गणेश प्रसाद

मिश्र का ख्याल गायन 12:15 पर पंडित गोपाल दास का क्लैरियोनेट वादन और रात 10:30 पर पंडित नारायण राव व्यास का ख्याल गायन सुनिएगा। 8:45 पर कार्यक्रम होगा नमस्कार प्रयागराज। सुगम संगीत का कार्यक्रम सुनिए 9:50 पर और रात 7:45 पर।

लोकगीत का कार्यक्रम होगा 10:30 पर और एक ही कलाकार ये कार्यक्रम सुनेंगे आप दिन में 11 बजे। 12:30 पर हेलो फरमाइश कार्यक्रम होगा। दोपहर 1:15 पर पनघट कार्यक्रम में प्रीति लता श्रीवास्तव के गाय लोकगीत के साथ सुनिए मधुबाला पांडे की बातचीत। विषय है करियर विकल्प और कौशल विकास।

2:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम होगा NCERT का उमंग धरती के गीत कार्यक्रम सुनेगा शाम 5 बजे 5:15 पर योजन सुनेंगे अपना कार्यक्रम युवाड़ी 6:30 पर पंचायत घर कार्यक्रम में कमलेश कुमार यादव और साथी के गाय लोकगीत के साथ सुनिए डॉक्टर मनोज कुमार सिंह से अरविंद कुमार की बातचीत जैविक और प्राकृतिक खेती 7:31 पर संस्कृत कार्यक्रम होगा रात 8:30 पर सबरस कार्यक्रम सुनेगा गजलों पर आधारित कार्यक्रम सुनेगा कहकशा 9:30 पर खेल दर्पण रात 10 बजे ये कार्यक्रम लखनऊ केंद्र से प्रसारित किया जाएगा ये थी रूपरेखा आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार।

शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए हिमाचल कन्या उमा की हजारों वर्ष की तपस्या पूरी हुई। उधर जब से सती ने शरीर त्याग किया था,

तब से ही शिव के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया था। पृथ्वी पर विचरण करते हुए कहीं वे मुनियों को ज्ञान का उपदेश देते, कहीं श्री राम के गुणों का वर्णन करते। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब स्वयं भगवान राम ने उन्हें पार्वती के जन्म की कथा सुनाई और उनसे आग्रह किया कि वे जाकर शैल कुमारी से विवाह करें। माता पिता गुरु और स्वामी की बात बिना विचारे ही शुभ समझकर माननी चाहिए, ऐसा मानकर शिवजी ने भगवान राम की आज्ञा मान ली और सप्तर्षियों को उमा के निर्णय की परीक्षा लेने हेतु भेजा। ऋषिगण ने कई प्रकार से नारद जी की दूसरों का घर उजाड़ने वाली आदत का वर्णन करके उमा को शिवजी से विमुख करने की चेष्टा की, किंतु वो अपने निश्चय पर अडिग थीं।

आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस से संगीत में पाठ, संगीत सतीश भाटिया का था। इसी के साथ ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए फिल्मों से लिए गए भजन। ये पहली रचना हमने ली है सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म से। लता मंगेशकर की आवाज है, पंडित नरेंद्र

अभी आपने सुना सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म का ये खूबसूरत सा भजन। लीजिए सुनिए कार्यक्रम के अंत में सुनिए मसाल फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज, जावेद अख्तर के बोल, संगीत हृदयनाथ मंगेश।

लता मंगेशकर के गाए इस खूबसूरत भजन के साथ ही फिल्मों से लिए गए भजन का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागपंचमी पर गोरखनाथ मंदिर परिसर में प्रदेश स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता के विजेताओं को किया पुरस्कृत। कहा, निजी खेल अकादमियों और अखाड़ों को भी सहायता प्रदान करेगी सरकार। मुख्यमंत्री ने प्रदेश भर में नई ई पास आधारित कोटेदार कमीशन प्रणाली का किया शुभारम्भ। उचित दर विक्रेताओं को अब 90 रुपए की बजाय 125 रुपए प्रति कुंतल मिलेगा लाभांश। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी की नए पदाधिकारियों की घोषणा। प्रदेश से 8 पदाधिकारी।

0: की टीम में शामिल। और प्रदेश भर में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने आज भी विभिन्न जिलों में मध्यम से भारी बारिश की जताई संभावना। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले वर्षों में प्रदेश में खेल संस्कृति में व्यापक बदलाव आया है और सरकार ने खेलों के लिए बेहतर इकोसिस्टम विकसित किया है। हर गांव में खेल मैदान, विकास खंड स्तर पर मिनी स्टेडियम और जिलों में स्टेडियम विकसित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कल गोरखनाथ मंदिर में नागपंचमी पर आयोजित कुश्ती प्रतियोगिता के समापन समारोह में विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि माफिया प्रवृत्ति युवा शक्ति की सबसे बड़ी दुश्मन है। शिक्षा, नकल, नशा, खेल या किसी भी क्षेत्र में सक्रिय माफिया युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाता है। सरकार ऐसे माफियाओं की पूरी संपत्ति जब्त कर कड़ी कार्रवाई कर रही है। श्री योगी ने कहा कि अब तक 500 से अधिक खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है और अगले एक महीने में 500 और पदक विजेताओं को नौकरी देने की तैयारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार जल्द ही नई युवा नीति लाएगी और हर जिले में रोजगार जोन विकसित किए जाएंगे। श्री योगी ने निजी खेल अकादमियों और अखाड़ों को भी सरकारी सहायता देने का आश्वासन दिया।
1: ओलंपिक में मेडल देश के लिए प्राप्त करने वाले दो खिलाड़ी ललित उपाध्याय और राजकुमार पाल, ये गाजीपुर के ही एक निजी स्टेडियम से पनपे हैं, आगे बढ़े हैं। खेल इकोसिस्टम जब विकसित होगा, उसको विकसित करने के लिए सरकार ने ही उसको आज तय किया है, निजी एकेडमी कोई चलाएगा तो निजी एकेडमी के लिए हम सरकार से भी उसको सहायता प्रदान करें।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ से उचित दर विक्रेताओं के लिए नई ई पास आधारित कोटेदार कमीशन प्रणाली का शुभारंभ किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने उचित दर विक्रेताओं के लाभांश को 90 रुपए से बढ़ाकर 125 रुपए प्रति कुंतल कर दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले 9 साल में सरकार ने प्रदेश खाद्य वितरण प्रणाली की खामियों को दूर करने का काम किया है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देश पर उचित मूल्य विक्रेताओं से जुड़ी दुकानों को अन्नपूर्णा भवन के रूप में निर्मित किया जा रहा है, जहां दुकान और वेयर हाउस की सुविधा दी जाएगी।
1: आप सभी अपने यहां अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़वाई, धनराशि का आवंटन सरकार आपको करेगी। राशन वितरण का काम तो आप एक सप्ताह 10 दिन कर लेंगे, 20 दिन आप उस वेयर हाउस का उपयोग अन्य कार्यों के लिए भी कर सकते हैं, अतिरिक्त इनकम उससे भी कमा सकते हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से जुड़े हुए उत्पाद भी अगर हम वहां रखेंगे, उस पर्व और त्योहार में अगर हम स्थानीय उत्पाद को भी प्रायोरिटी देते हैं, हमारा जो स्थानीय कारीगर, स्थानीय हस्तशिल्पी उससे प्रोत्साहित होगा, उसके माध्यम से हम भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेंगे।
0: मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का कन्नौज, बलरामपुर, गोरखपुर, सुल्तानपुर, चित्रकूट, कौशाम्बी, कानपुर देहात और बदायूं सहित विभिन्न जिलों में सीधा प्रसारण किया गया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कल पार्टी के नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा की। श्री नवीन ने वसुंधरा राजे सिंधिया, तीरथ सिंह रावत, राम माधव, वैजयंत जय पांडा, सरदार मनप्रीत सिंह बादल और रेखा वर्मा सहित 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की नियुक्ति की है। राष्ट्रीय टीम में प्रदेश के 8 चेहरे शामिल किए गए हैं। बस्ती के पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी को महासचिव और गोरखपुर से संगीता यादव को मंत्री बनाया गया है। एक रिपोर्ट।
2: केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता पीयूष गोयल को पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री बीएल संतोष को संगठनात्मक राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। श्री नवीन ने विनोद तावड़े, सुनील बंसल, स्मृति ईरानी और बिप्लब कुमार देव सहित 8 पार्टी नेताओं को राष्ट्रीय महासचिव भी नियुक्त किया है। पार्टी ने अपने विभिन्न मोर्चों के नए प्रमुखों के नाम भी घोषित कर दिए हैं, जिनमें डॉक्टर हेमांग जोशी युवा मोर्चा अध्यक्ष, रूप कुमार चौधरी महिला मोर्चा अध्यक्ष और बंसीलाल गुर्जर किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि नवनियुक्त पदाधिकारी पार्टी को मजबूत करने और जनसेवा पर ध्यान केंद्रित करने में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल

0: @AIRNewsGorakhpur और एक्स हैंडल @AIRNews_GKP पर भी उपलब्ध है। उद्यान कृषि विपणन राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कल लखनऊ में योजनाओं के सफल और पारदर्शी क्रियान्वयन के लिए नव विकसित ऑनलाइन पोर्टल potato.uphorticulture.in का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने आलू उत्पादक किसानों के लाभ के लिए 3 नई योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें 1,000 करोड़ रुपए का भामाशाह भाव स्थिरता कोष, भंडारण शुल्क में छूट और आलू के बीज पर छूट शामिल है।
1: राज्य में भामाशाह भावांतर योजना का हम शुभारंभ कर रहे हैं, जिसमें 1,000 करोड़ का प्रावधान उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। निर्धारित लागत मूल्य का जो अंतर होगा उसका 25% अनुदान राज्य के किसानों के खाते में DBT के माध्यम से अंतरित हो जाएगी। जो आलू किसानों के द्वारा अपना आलू शीत गृहों में भंडारित किया गया है, उसके किराए में 100 रुपए प्रति किलो के हिसाब के दर से राज्य सरकार उन्हें अनुदान DBT के माध्यम से देगी।
0: सहारनपुर में कल से अग्निवीर भर्ती रैली शुरू हो गई। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम में शुरू हुई भर्ती रैली में पहले दिन हापुड़ जिले की 3 तहसीलों के 899 युवाओं ने शारीरिक दक्षता परीक्षा में हिस्सा लिया। भर्ती रैली 4 सितंबर तक चलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर से प्रदेश भर के PRD जवानों से जुड़ी महत्वपूर्ण योजना का शुभारंभ करेंगे। योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित PRD जवान सम्मेलन में मुख्यमंत्री 3,000 रुपए वर्दी भत्ता की धनराशि PRD जवानों के बैंक खाते में भेजेंगे। इसके साथ ही PRD स्वयंसेवकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा कार्ड वितरित कर मुख्यमंत्री PRD परिवार कल्याण योजना का शुभारंभ भी करेंगे। इस दौरान श्री योगी लखनऊ में बनने वाले बहुमंजिला PRD बैरक का शिलान्यास भी करेंगे। नागपंचमी का पर्व कल प्रदेश भर में श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। श्रावण मास के 3rd सोमवार और नागपंचमी पर वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से पहुंचे कांवड़ियों और श्रद्धालुओं का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। वहीं बाराबंकी, अमेठी और जौनपुर के मंदिरों में जलाभिषेक के लिए पहुंचे शिव भक्तों तथा कांवड़ियों पर भी हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। अयोध्या में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पवित्र सरयू नदी में आस्था की डुबकी लगाई और प्राचीन नागेश्वरनाथ मंदिर पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। प्रदेश के विभिन्न जिलों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र के अधिकांश जिलों में आज भी मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना जताई है। मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि विभाग द्वारा इसके लिए अलर्ट जारी किया गया है। उधर लगातार हो रही बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण कई जनपदों में बाढ़ के हालात हैं। वाराणसी में गंगा का बढ़ा हुआ जलस्तर घाटों के ऊपरी हिस्सों की ओर बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। वहीं चित्रकूट में मंदाकिनी नदी खतरे के निशान को पार कर गई है। प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर रामघाट की ओर जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागपंचमी पर गोरखनाथ मंदिर परिसर में प्रदेश स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता के विजेताओं को किया पुरस्कृत। कहा, निजी खेल अकादमियों और अखाड़ों को भी सहायता प्रदान करेगी सरकार। मुख्यमंत्री ने प्रदेश भर में नई ई पास आधारित कोटेदार कमीशन प्रणाली का किया शुभारंभ। उचित दर विक्रेताओं को अब 90 रुपए की बजाय 125 रुपए प्रति कुंतल मिलेगा लाभांश। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने की पार्टी के नए पदाधिकारियों की घोषणा। प्रदेश से 8 पदाधिकारी राष्ट्रीय टीम में शामिल। और प्रदेश भर में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने आज भी विभिन्न जिलों में मध्यम से भारी बारिश की जताई संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनिए पंडित गणेश प्रसाद मिश्र का ख्याल गायन राग भटियार। इनके साथ

ख्याल गायन राग भटियार। इनके साथ तबले पर संगत कर रहे थे श्रवण कुमार भट्ट और तानपुरी पर श्रीकांत वैश्य। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए समूह स्वरों में ये देशभक्ति गीत।

अभी आप सुन रहे थे समूह स्वरों में ये देशभक्ति गीत। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दिल्ली से प्रसारित समाचार प्रभात।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। झारखंड में जारी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने जेएसएससी, सीजीएल परीक्षा और निजी एजेंसी टीडीपीएल द्वारा संचालित सभी अन्य भर्ती परीक्षाएं रद्द की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की मतदाता पहचान प्रणाली की प्रशंसा की, इसे अमेरिका के चुनाव विनियमों को और सख्त बनाने के लिए आदर्श बताया। भारत आज नई दिल्ली में 12वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को काठमांडू में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने नेपाल आर्मी के मानद जनरल का रैंक प्रदान किया। मौसम विभाग ने आज झारखंड में अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है और आयुष शेट्टी ने नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में विश्व के नंबर 1 और मौजूदा चैंपियन शी

0: ਉਹ ਕਿਉਂ ਇੱਕੋ ਹਰ ਆਇਆ। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी उम्मीदवारों के 24 दिन से जारी विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2024 और टीडीपीएल एजेंसी द्वारा संचालित सभी प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल शाम मंत्रिमंडल की विशेष बैठक के बाद ये घोषणा की।
1: पूरे तरीके से इसका ऑपरेशन होनी चाहिए। जो हमें जानकारी डीजीएल को लेकर हम लोग के समक्ष बताया गया और उस तथ्यों को समझ बुझने के बाद कैबिनेट ने जेएसएससी डीजीएल को भी रद्द करने का निर्णय लिया।
0: और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: सरकार ने वर्ष 2014 से अब तक की भर्ती प्रक्रियाओं की जांच कराने के साथ परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में समिति गठित करने का भी निर्णय लिया है। इस बीच मंत्री दीपिका पांडे सिंह और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के साथ विधायक जयराम कुमार ने सदर अस्पताल पहुंचकर देवेंद्र नाथ महतो और अन्य आंदोलनरत छात्रों को जूस पिलाकर उनका अनशन समाप्त कराया। देवेंद्र नाथ महतो ने सरकार के फैसले का स्वागत किया और जेपीएससी जेएसएससी न्याय मंच ने फिलहाल आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की। वहीं छात्र नेता रविंद्र पासवान ने सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच का आदेश होने तक रिफॉर्म मंच का आंदोलन जारी रहेगा। सरकार के फैसले के बाद जेएससीसी सीजीएल के जरिए पहले से नियुक्त अभ्यर्थियों ने भी विरोध जताया और रांची के प्रोजेक्ट भवन के बाहर जुटकर अपनी नौकरी और भविष्य को लेकर चिंता जाहिर की। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की मतदाता पहचान प्रणाली की प्रशंसा की है और इसे अमेरिका के चुनाव विनियमों के लिए मॉडल बताया है। उन्होंने भारत की निर्वाचन प्रणाली को चुनावी सुरक्षा का उदाहरण बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ हाल की बातचीत का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार ने यह सवाल उठाया था कि बिना अनिवार्य वैध फोटो पहचान पत्र के अमेरिका में चुनाव कैसे कराए जा सकते हैं। श्री ट्रंप ने इस टिप्पणी का हवाला देते हुए अमेरिकी कांग्रेस से सेव गार्ड अमेरिकन वोटर एलिजिबिलिटी यानी सेव अमेरिका अधिनियम पारित करने को कहा। यह प्रस्तावित विधेयक संघीय चुनाव में मतदान के लिए और अधिक सख्त नियम लागू करने की मांग करता है। भारत आज नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया है कि यह बैठक महत्वपूर्ण विचार विमर्श, सर्वसम्मति तक पहुंचने और पर्यावरणीय सहयोग को और मजबूत करने का मंच उपलब्ध कराएगी। एक रिपोर्ट।
3: ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। यह कार्यक्रम भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 की मुख्य थीम सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के अंतर्गत आयोजित किया जाएगा। यह बैठक सदस्य देशों के मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों के लिए सार्थक चर्चा करने, आम सहमति बनाने और पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने का मंच प्रदान करेगी। अध्यक्षता के हिस्से के रूप में भारत ने ब्रिक्स पर्यावरण कार्य समूह के तहत केंद्रित गतिविधियों के लिए 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें सतत जीवन शैली को बढ़ावा देना, वनीकरण, जंगल की आग का प्रबंधन और आपदा के प्रति दृढ़ताशील, सर्कुलर इकोनॉमी और अनुकूलन शामिल है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को नेपाल आर्मी के मानद जनरल का रैंक दिया गया है। कल काठमांडू के शीतल निवास में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। नेपाल के उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव, विदेश मंत्री शिशिर खनाल, नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव तथा नेपाल सेना और सरकार के वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर मौजूद थे। जनरल धीरज सेठ नेपाल के सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिग्देल के निमंत्रण पर रविवार को नेपाल पहुंचे थे। मानद पद प्रदान करने की यह परंपरा वर्ष 1950 में शुरू हुई थी। इसके तहत भारत और नेपाल एक दूसरे के सेना प्रमुखों को जनरल का मानद रैंक प्रदान करते हैं। जनरल धीरज सेठ ने जनरल सिग्देल के साथ द्विपक्षीय सैन्य संबंध बढ़ाने पर विचार विमर्श किया। उन्होंने भारतीय दूतावास में राजदूत नवीन श्रीवास्तव से भी भेंट की और दोनों देशों के संबंध और मजबूत करने पर चर्चा की। उन्होंने नेपाल सेना को भारत की ओर से सैन्य

0: और चिकित्सा उपकरण भी दिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मौसम विभाग ने आज झारखंड में अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर राज्य, कराईकल, पुदुचेरी, तमिलनाडु, केरलम और माहे में भी गुरुवार तक तेज बारिश होगी। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून की तेज वर्षा जारी है। राज्य में कल अधिकांश स्थानों पर बहुत तेज बारिश हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बारिश के कारण कई स्थानों पर जनजीवन अस्त व्यस्त है।
1: बीते 24 घंटों के दौरान मंडी जिले के कटौला में सर्वाधिक 74 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। लगातार बारिश के चलते सामान्य जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार इस मॉनसून सीजन के दौरान प्रदेश में अब तक बारिश से जुड़ी घटनाओं में 80 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि लगभग 994 करोड़ रुपए की सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान हो चुका है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज राज्य के 4 जिलों बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर में भारी से बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि 6 अन्य जिलों ऊना, हमीरपुर, चंबा, कुल्लू, शिमला और सोलन के लिए भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: आंध्र प्रदेश के डॉक्टर BR अंबेडकर कोनासीमा जिले से मछुआरों को ले जा रही मछली पकड़ने की एक नौका समुद्र में लापता हो गई है। ये मछुआरे इस महीने की 3 तारीख को मछली पकड़ने के लिए निकले थे और उन्हें 10 दिन के भीतर वापस लौटना था। उनके वापस न लौटने पर परिवार वालों ने अधिकारियों को सूचना दी। तटीय पुलिस और मत्स्य विभाग के अधिकारियों ने लापता मछुआरों की तलाश के लिए अभियान शुरू कर दिया है। केरलम में विझिंझम समुद्री बंदरगाह से आज से सीधा निर्यात और आयात शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री VD सतीशन आज इस सेवा का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल मुख्य अतिथि होंगे। एक रिपोर्ट।
2: विझिंझम समुद्री बंदरगाह अब तक मुख्य रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट केंद्र के तौर पर काम कर रहा था, जहां मदरशिप कहे जाने वाले बड़े जहाजों से आने वाले कंटेनर को आगे ले जाने के लिए छोटे जहाजों में स्थानांतरित किया जाता था। इस बंदरगाह को 17 जुलाई को निर्यात और आयात के लिए मंजूरी मिली थी। शुरुआत में विझिंझम बंदरगाह से सिर्फ फुल कंटेनर लोड कार्गो का आयात निर्यात होगा। इस बंदरगाह का पिछले वर्ष 2 मई को उद्घाटन किया गया था। तिरुवनंतपुरम से स्मिति M. पलुरुथि की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि व्यक्ति को हमेशा आत्मसम्मान, साहस और स्वाभिमान के साथ जीना चाहिए। एक सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए उन्होंने कहा कि सच्चा पुरुषार्थ इसी में है कि व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में अपने सिद्धांतों और मूल्यों से समझौता न करे। गोल में श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी के आधार पर 178 रन की बढ़त हासिल कर ली है। भारतीय गेंदबाजों ने मेजबान टीम को 284 रन पर समेट दिया। भारत ने अपनी पहली पारी में 462 रन बनाए थे और आज चौथे दिन का मैच भारतीय समय अनुसार सवेरे 10 बजे से शुरू होगा। और अब खबरें नई दिल्ली में आयोजित BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की।
3: नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के पहले राउंड में भारतीय खिलाड़ियों ने जीत के साथ शुरुआत की। खिलाड़ी आयुष शेट्टी ने पुरुषों के एकल श्रेणी में मौजूदा चैंपियन और दुनिया के नंबर वन खिलाड़ी चीन के शी यूकी को 21-14, 13-21 और 21-19 से शिकस्त दी। वहीं महिलाओं की एकल श्रेणी में भारत की स्टार खिलाड़ी PV सिंधु ने आयरलैंड की सोफिया नोबल को 21-7 और 21-11 से आसानी से हरा दिया। साथ ही महिलाओं की युगल श्रेणी में भारत की जोड़ी टेसा जोली और गायत्री गोपीचंदन ने स्पेन की पौला पेज और लूसिया रोड्रिगेस को 21-9 और 21-13 से हरा दिया। इससे पहले पुरुषों की युगल श्रेणी में भारत की जोड़ी MR अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन ने दूसरे राउंड में जगह बनाई। दूसरे गेम में ये जोड़ी 6-4 से आगे चल रही थी, तभी आयरलैंड के उनके प्रतिद्वंदी स्कॉट गिल्टिया और पॉल रेनॉल्ड्स को चोट के कारण खेल से बाहर होना पड़ा। अर्जुन और अमसा करुण ने पहला गेम 21-16 से जीत लिया था। विष्णु और भानु की रिपोर्ट के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार।

0: दिल्ली।
1: एफआईएच महिला हॉकी विश्व कप में आज भारतीय टीम पूल डी के अपने दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका से खेलेगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में भारतीय जनता पार्टी की नई राष्ट्रीय टीम की घोषणा और झारखंड में छात्र आंदोलन के असर के समाचार छाए हुए हैं। पंजाब केसरी के मुख्य पृष्ठ पर पहला समाचार है, अब नितिन की नवीन टीम। पत्र ने उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे सिंधिया, राम माधव, महासचिव स्मृति ईरानी और कोषाध्यक्ष पीयूष गोयल के चित्र भी सबसे ऊपर प्रकाशित किए हैं। दैनिक भास्कर ने इसी खबर को शीर्षक दिया है, भाजपा की नवीन टीम, 12 महिलाएं, 7 अल्पसंख्यक और 6 नए महासचिव। जनसत्ता में इस समाचार की सुर्खी है, माधव और ईरानी की वापसी, अमित मालवीय की हुई छुट्टी। हिंदुस्तान का शीर्ष समाचार है, टीम नवीन में जोश होश का मेल। नवभारत टाइम्स ने झारखंड के घटनाक्रम को पहला समाचार बनाया है, कई फजीहतों के बाद एनटीए ने बदली अपनी टीम, 600 एक्सपर्ट्स हटाए। पत्र ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के निर्देश और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के वक्तव्य को बॉक्स प्रकाशित करते हुए आंदोलनरत छात्रों की तस्वीर भी प्रमुखता से प्रकाशित की है। दैनिक ट्रिब्यून ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के चित्र सहित इस खबर को शीर्षक दिया है, झारखंड आउटसोर्स एजेंसी की 2014 से अब तक कराई गई सभी परीक्षाएं रद्द। राजस्थान पत्रिका ने रेल यात्रियों की सुविधाओं की उपेक्षा और अनदेखी को संपादकीय का विशेष बनाया है। पत्र कहता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ताजा रिपोर्ट चौंकाने वाली है, जिसमें कहा गया है कि देश के कई बड़े रेलवे स्टेशनों के वाटर कूलर के पानी में ई कोलाई बैक्टीरिया मिले हैं। सवाल सिर्फ पानी के पीने का साफ होने का नहीं है, यात्रियों की दूसरी सुविधाओं की भी समयबद्ध जांच और सतत निगरानी करनी चाहिए, चूंकि यात्री सुविधाओं कोई भी अनदेखी चिंताजनक है। लोकसत्ता ने नाग पंचमी के अवसर पर महाकाल मंदिर उज्जैन में उमड़ी लाखों भक्तों की भीड़ का समाचार अपने पहले पृष्ठ पर रखते हुए बिहार के लखीसराय में मची भगदड़ में 7 दर्शनार्थियों की मौत का समाचार भी बॉक्स में प्रकाशित किया है।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड में विद्यार्थियों के जारी विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने जेएसएससी, सीजीएल परीक्षा और निजी एजेंसी टीडीपीएल द्वारा संचालित सभी अन्य भर्ती परीक्षाएं रद्द की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की मतदाता पहचान प्रणाली की प्रशंसा की, इसे अमेरिका के चुनाव विनियमों को और सख्त बनाने के लिए आदर्श बताया। भारत आज नई दिल्ली में 12वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को काठमांडू में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने नेपाल आर्मी के मानद जनरल का रैंक प्रदान किया। मौसम विभाग ने आज झारखंड में अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। और आयुष शेट्टी ने नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में विश्व के नंबर एक और मौजूदा चैंपियन शी यू की को हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। झारखंड गवर्नमेंट कैंसल्स जेएसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन आफ्टर 24-डे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट, ऑल्सो कैंसल्स ऑल अदर रिक्रूटमेंट एग्जाम्स कंडक्टेड बाय द प्राइवेट एजेंसी टीडीपीएल। U.S. President Donald Trump praises India's voter ID system, hails it as a model for stricter U.S. election rules. India to host 12th BRICS Environment Ministers meeting in New Delhi today. Indian Army Chief General Dhiraj Seth conferred rank of Honorary General of Nepal Army by President Ramchandra Podel in Kathmandu. IMD issues red alert for a very heavy rainfall in Jharkhand today. And Ayush Shetty stuns world number one and defending champion Shi Yu Qi in first round of men's singles at BWF Badminton World Championships in New Delhi. And now the news in detail. Jharkhand government has cancelled JSSC CGL examination after 24-day students' protest in the state. It has also cancelled all other recruitment exams conducted by the private agency TDPL. The announcement triggered celebrations at the protest site in Ranchi, though the demand for a CBI probe remains unresolved. We have a report.
0: The Jharkhand government has decided to cancel the JSSC CGL examination and all competitive

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। झारखंड सरकार ने 24 दिन तक जारी रहने वाले तलबा एहतजाज के बाद जेएसएससी सीजीएल इम्तिहान को रद्द कर दिया है। झारखंड हुकूमत ने प्राइवेट एजेंसी TDPL के जरिए मुनाकिद कराए गए दीगर तमाम भर्ती इम्तिहान भी मनसूख कर दिए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के वोटर शनाख्ती कार्ड निज़ाम की तारीफ की है और इसे अमरीका में मजीद सख्त इंतखाबी कवानीन के लिए एक मिसाली नमूना करार दिया है। भारत आज नई दिल्ली में ब्रिक्स वुजराए माहौलियात के 12वें इजलास की मेजबानी करेगा। भारतीय फौज के सरबराह जनरल धीरज सेठ को नेपाल के सदर रामचंद्र पौडेल ने काठमांडू में नेपाली फौज के एजाजी जनरल का ओहदा अता किया। भारतीय महकमा मौसमियात ने आज झारखंड में इंतहाई शदीद बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। और नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन आलमी चैंपियनशिप में मर्दों के सिंगल्स के पहले राउंड में आयुष शेट्टी ने आलमी नंबर एक और दिफाई चैंपियन शी यू की को शिकस्त दी। अब खबरें तफसील से। झारखंड हुकूमत ने रियासत में तलबा के 24 दिन तक जारी रहने वाले एहतजाज के बाद जेएसएससी सीजीएल इम्तिहान को मनसूख कर दिया है। हुकूमत ने प्राइवेट एजेंसी TDPL के जरिए मुनाकिद कराए गए दीगर तमाम भर्ती इम्तिहान भी रद्द कर दिए हैं। इस ऐलान के बाद रांची में एहतजाज के मकाम पर तलबा ने जश्न मनाया। ताहम CBI जांच का मुतालबा अभी पूरा नहीं किया गया।

0: मीटिंग में लिया गया। एहतजाज करने वाले तलबा ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में इस फैसले का खैर मकदम किया और मिठाइयां तकसीम करके और एक दूसरे को गुलाल लगाकर जश्न मनाया। हुकूमत ने 2014 के बाद से जेपीएससी और जेएसएससी के जरिए किए गए भर्ती के अमल की जांच करने और इम्तिहान के निजाम में इस्लाहात की सिफारिशात पेश करने के लिए आईएएस ऑफिसर अमिताभ कौशल की सरबराही में एक कमेटी तश्कील देने का भी फैसला किया है। इस दौरान रियासती वजीर दीपिका पांडे सिंह, वजीर सेहत इरफान अंसारी और रुकन असेंबली जयराम कुमार ने सदर अस्पताल का दौरा किया और देवेंद्र नाथ महतो समेत एहतजाज करने वाले दीगर तलबा की भूख हड़ताल जूस पिलाकर खत्म कराई। देवेंद्र नाथ महतो ने हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इस फैसले से उनके अहम मुतालबात पूरे हो गए हैं। जेपीएससी जेएसएससी न्याय मंच ने भी ऐलान किया है कि वो फिलहाल अपना एहतजाज मुअत्तल कर रहा है। तलबा रहनुमा रविंद्र पासवान ने हुकूमत के इस फैसले का खैर मकदम करते हुए उसका शुक्रिया अदा किया। ताहम उन्होंने कहा कि रिफॉर्म मंच मुबैना बेजाब्तियों की सीबीआई जांच का हुक्म जारी होने तक अपना एहतजाज जारी रखेगा। हुकूमत के फैसले के बाद उन उम्मीदवारों में भी एहतजाज शुरू हो गया जिन्हें पहले ही जेएसएससी सीजीएल इम्तिहान के जरिए मुलाजमत के लिए मुंतखब किया जा चुका है। रांची से महविश रहमान की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
1: अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के वोटर शनाख्ती कार्ड निज़ाम की तारीफ की है और इसे सख्त अमरीकी इंतखाबी जाब्तों के लिए मिसाल करार दिया है। जनाब ट्रंप ने भारत के इंतखाबी तरीक़ेकार को इंतखाबी जांच पड़ताल के लिए मिसाली नमूना करार दिया और अमरीका में वोटर शनाख्त से मुतालिक ज़रूरतों में सख्ती बरतने की वकालत की। पेश है एक रिपोर्ट।
2: सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब ट्रंप ने भारत के आला इंतखाबी कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के साथ अपनी हालिया बातचीत का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि जनाब कुमार ने सवाल पूछा था कि अमेरिका में मजाज तस्वीरी शनाख्ती दस्तावेज के बगैर इंतखाबात किस तरह मुनाकिद होते हैं। जनाब ट्रंप ने इस तबसे के जरिए अपने उस मुतालबे को दोहराया कि अमरीकी कांग्रेस को सेफ गार्ड अमरीकन वोटर एलिजिबिलिटी सेव अमरीका एक्ट को मंजूर करना चाहिए। इस मुजवजा कानून के जरिए वफाकी इंतखाबात में वोटिंग के लिए सख्त ज़रूरतें मुतारफ कराने की तजवीज़ है। इसके तहत राय दहिंदगान को वफाकी इंतखाबात के लिए रजिस्टर करते वक्त अमरीकी शहरियत का दस्तावेजी सबूत और हुकूमत की जानिब से जारी करदा तस्वीरी शनाख्ती कार्ड फ्राहम करना होगा। वाइट हाउस ने इस कानून को अमरीकी इंतखाबात में सिर्फ अमरीकी शहरियों की जानिब से राय दहिंदगी को यकीनी बनाने वाला कदम करार दिया। अमरीकी इंतजामिया ने कहा कि भारत और ब्राज़ील ने वोटर शनाख्ती कार्ड को बायोमेट्रिक डेटाबेस से मुंसलिक कर दिया है जबकि अमरीका शहरियत के लिए बड़े पैमाने पर खुद से तस्दीक पर इन्हिसार करता है। जनाब ट्रंप ने भारत के आम इंतखाबात के वसी दायरे का जिक्र करते हुए कहा कि भारत के हालिया आम इंतखाबात में तकरीबन 462 मिलियन अफराद ने अपने हक के रायदही का इस्तेमाल किया। दिल्ली से कुमुदी पारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
1: भारत आज नई दिल्ली में ब्रिक्स मुल्कों के माहौलियात के वजीरों के 12वें इजलास की मेजबानी करेगा। माहौलियात जंगलात और आबोहवा की तब्दीली की वजारत ने कहा कि ये इजलास अहम उमूर पर तफसीली तबादले ख्याल इत्तफाक राय को फरोग देने और माहौलियात से मुतालिक बाहमी तआवुन को मजीद मजबूत बनाने के लिए प्लेटफॉर्म फराहम करेगा। तफसील हमारे रामनिगार से।
2: ब्रिक्स वज़राए माहौलियात के इजलास की सदारत माहौलियात जंगलात और आबोहवा की तब्दीली के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव करेंगे। ये इजलास भारत की 2026 ब्रिक्स सदारत के वसीतर मौजू इस्तेहकाम इख्तिरा ताउन और पायदारी की तश्कील के तहत मुनाकिद किया जा रहा है। भारत ने ब्रिक्स माहौलियात वर्किंग ग्रुप के तहत खसूसी तवज्जो के लिए 4 तरजीही शोबों की निशानदेही की है। इनमें पायदार तर्ज जिंदगी को फरोग देना, शजरकारी, जंगलात में आग पर काबू पाने का इंतजाम और कुदरती आफात से निपटने की सलाहियत, सर्कुलर इकोनॉमी और आबोहवा की तब्दीली के असरात से मुताबिकत पैदा करना शामिल हैं। ब्रिक्स माहौलियात वर्किंग ग्रुप का क्याम 2015 में मॉस्को में मुनाकिद होने वाले ब्रिक्स वज़राए माहौलियात के पहले इजलास के दौरान अमल में आया था। इसका मकसद ब्रिक्स मुल्कों के लिए माहौलियाती तरजीहात से मुतालिक अहम उमूर पर तवज्जो देने, तजर्बात का तबादला करने, बेहतरीन तरीक़ेकार शेयर करने और रुकन ममालिक के दरमियान इज्तिमाई इकदामात को मजबूत बनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम करना था। नई दिल्ली से नीतिका गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
1: भारतीय फौज के सरबराह जनरल धीरज सेठ को कल काठमांडू के शीतल निवास में मुनक्किद एक तकरीब के दौरान नेपाल के सदर रामचंद्र पौडेल ने नेपाली फौज के एजाजी जनरल का ओहदा अता किया। इस मौके पर नेपाल के नायब सदर राम सहाय प्रसाद यादव, वजीर खारजा शिशिर खनाल, नेपाल में भारत के सफीर नवीन श्रीवास्तव और नेपाली फौज और हुकूमत के आला ओहदेदार मौजूद थे।

0: जनरल सेठ नेपाल के अपने हमनसब जनरल अशोक राज सिगडेल की दावत पर इतवार को सरकारी दौरे पर नेपाल पहुंचे। एजाजी जनरल का ओहदा देने की ये रिवायत साल 1950 से जारी है, जिसके तहत नेपाल और भारत एक दूसरे की फौज के सरबराहान को एजाजी जनरल का ओहदा अता करते हैं। जनरल सेठ ने नेपाली फौज के सदर दफ्तर में जनरल सिगडेल से भी मुलाकात की। दोनों फौजी सरबराहों ने बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दोनों ममालिक के दरमियान फौजी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल किया। जनरल सेठ ने भारतीय सिफारतखाने में सफीर नवीन श्रीवास्तव से भी मुलाकात की, जिसमें नई दिल्ली और काठमांडू के दरमियान जामे ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के तौर तरीकों पर गुफ्तगू हुई। केरलम में विजिंजम सी पोर्ट से रास दरामदात और बरामदात आज से शुरू हो जाएंगी। केरलम के वजीर आला वीडी सतीसन सुबह 11:15 इन खिदमात का इफ्तिताह करेंगे। बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। तफसील हमारे नामानिगार से।
1: केरलम में विजिंजम सी पोर्ट से रास दरामदात और बरामदात आज से शुरू हो रही है, जो कि बंदरगाह के कामकाज के नए मरहले का आगाज होगा। अब तक विजिंजम बुनियादी तौर पर बैन अल-अक़वामी कार्गो हब के तौर पर काम करता रहा, जहां बड़े जहाजों जिन्हें मदर शिप्स कहा जाता है पर आने वाले कंटेनर को आगे के सफर के लिए छोटे जहाजों पर मुंतकिल किया जाता था। कस्टम्स के आला कमिश्नर ने 17 जुलाई को दरामदात और बरामदात की इजाजत दी। शुरुआत में विजिंजम बंदरगाह पर दरामदात और बरामदात दोनों के लिए सिर्फ फुल कंटेनर लोड और FCL कार्गो ही इस्तेमाल होंगे। इस बंदरगाह को गुज़श्ता साल 2 मई को मुल्क के नाम वक्फ किया गया था। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पुलुर्थी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
0: सुप्रीम कोर्ट ने सिक्किम में वोटर फहरिस्तों की खसूसी जामे नजरसानी SIR के लिए साल 2002 को बुनियाद बनाने से मुतालिक इंतखाबी कमीशन के फैसले में मदाखलत करने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस वी मोहन्ना पर मुश्तमिल बेंच ने कल एक गैर सरकारी तंजीम की जानिब से दायर की गई मफाद आम्मा की अर्जी को खारिज कर दिया। इस अर्जी में चुनाव कमीशन को यह हिदायत देने की दरख्वास्त की गई थी कि सिक्किम में जारी SIR के लिए साल 2002 के बजाय साल 1993 को बुनियाद बनाया जाए। अदालत आलिया ने कहा कि चुनाव कमीशन ने मुख्तलिफ रियासतों में जारी SIR के लिए यकसां तौर पर 2002 को बुनियादी साल मुकर्रर किया है, क्योंकि आखिरी मरतबा ऐसी नजरसानी उसी साल की गई थी। ताहम बेंच ने कहा कि दरख्वास्त गुजार मुनासिब रियायत के लिए इंतखाबी कमीशन से रुजू कर सकता है। तालीम के वजीर प्रहलाद जोशी ने कल नई दिल्ली में आला तालीम के महकमे के सेक्रेटरी, इम्तिहानात मुनक्किद कराने वाली कौमी एजेंसी NTA और दीगर आला ओहदेदारों के साथ एक मीटिंग की। वजीर मौसूफ ने इम्तिहानात से मुतालिक जाब्तों पर सख्ती से अमल करने की हिदायत दी। उन्होंने राजदाराना अमली सरगर्मियों, अलग थलग कमरों, एयर गैप्ड सिस्टम्स यानी बाहरी नेटवर्क से मुनक़िद निज़ाम, डिवाइस जमा करवाने जैसे जाब्तों पर जंगी पैमाने पर अमल किए जाने की तलकीन की। NTA से कहा गया कि वह सभी इम्तिहानात के अमल की तफसीली जांच करे और इसे दुरुस्त करने के लिए किए गए मुतालिका इकदामात के बारे में रिपोर्ट दाखिल करे। भारतीय महकमे मौसमियात ने आज झारखंड में शदीद बारिश से मुतालिक रेड अलर्ट जारी किया है। मौसमियात से मुतालिक एजेंसी ने बिहार, छत्तीसगढ़, मशरकी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और मगरबी बंगाल में शदीद से इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मशरकी उत्तर प्रदेश, मगरबी बंगाल, सिक्किम, शुमाली मशरकी रियासतों, कराईकल, पुडुचेरी, केरलम और माहे में जुमेरात तक शदीद बारिश का इम्कान है। मौसमियात के महकमे ने गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और अंडमान निकोबार जजायर में अगले 2 से 3 दिन के दौरान गरज चमक के साथ तेज हवाओं की पेशगोई की है। हिमाचल प्रदेश में मानसून का सिलसिला जारी है। गुज़श्ते 24 घंटे के दौरान रियासत भर में बेशतर मकामात पर शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई। कई मकामात पर बारिश के सबब मामूलात जिंदगी मुतासिर हुए। पेश है एक रिपोर्ट।
2: हिमाचल प्रदेश के बेशतर हिस्सों में कल रात से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। गुज़श्ते 24 घंटे के दौरान मंडी जिले के कटोला में सबसे ज्यादा 74 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जिससे मामूलात जिंदगी मुतासिर हैं। मूसलाधार बारिश और मिट्टी के तोदे खिसकने की वजह से तकरीबन 87 सड़कें बंद हैं, 80 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि तकरीबन 994 करोड़ रुपये की सरकारी इमला को नुकसान पहुंचा है। शिमला से रितेश कपूर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्मार।
0: इस दौरान मौसमियात के महकमे ने आज उत्तराखंड के गढ़वाल खित्ते के पहाड़ी जिलों में इंतहाई शदीद बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसमियात के महकमे के मुताबिक रियासत में बारिश का सिलसिला जुमे के रोज तक जारी रहने का इम्कान है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि किसी शख्स को चढ़ते सूरज के सामने नहीं झुकना चाहिए और यही असल शुजात है। वज़ीर-ए-आज़म ने सोशल मीडिया

0: पर संस्कृत सुभाषितम शेयर करते हुए ये बात कही। BWF बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में कल नई दिल्ली में भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी आयुष शेट्टी ने बड़ा उलटफेर करते हुए आलमी नंबर एक और दिफाई चैंपियन चीन के शी यू की को मर्दों के सिंगल्स के पहले राउंड में हरा दिया। आयुष ने शी यू की को 21-14, 13-21 और 21-19 से शिकस्त दी। ट्रेसा जॉली और गायत्री गोपीचंद पर मुश्तमिल खवातीन की डबल्स की जोड़ी और मायानाज खिलाड़ी पीवी सिंधु भी वर्ल्ड चैंपियनशिप के दूसरे राउंड में पहुंच गई हैं। खवातीन के सिंगल्स में सिंधु ने आयरलैंड की सोफिया नोबेल को 21-7 और 21-11 से शिकस्त दी। खवातीन के डबल्स में ट्रेसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने स्पेन की पौला लोपेज और लूसिया रोड्रिगेज को सीधे सेटों में 21-9 और 21-13 से हरा दिया। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं असदुल्ला।
1: शुक्रिया जमीर। कौमी राजधानी दिल्ली से शायब होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब और प्रताप समेत आज के सभी अखबारों ने कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत की सदारत में मुनक्किदा ब्रिक्स माहौलियाती वर्किंग ग्रुप की मीटिंग को सफे अव्वल पर शाये करते हुए लिखा है कि इस मीटिंग में आलूदगी, हयातियाती तनवु, शजरकारी और सर्कुलर मईशत के शोबे में तआवुन को मजीद मजबूत करने पर जोर दिया गया। रोजनामा इनकलाब की सुर्खी है, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि योम आज़ादी से कबल सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुख्तलिफ रियासतों में ऑपरेशन के जरिए दहशतगर्द ग्रुप शहजाद भट्टी नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए इसे तबाह कर दिया है। रोजनामा प्रताप ने मरकजी वजीर ममलकत बराए साइंस और टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह के इस बयान को सफ़े अव्वल पर शाये किया है कि तकनीक पर मबनी पेंशन खिदमात की फराहमी से माली वसाइल में नुमाया बचत हुई है।
0: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। झारखंड सरकार ने 24 दिन तक जारी रहने वाले तलबा एहतजाज के बाद JSSC CGL इम्तिहान को रद्द कर दिया है। झारखंड हुकूमत ने प्राइवेट एजेंसी TDPL के जरिए मुनाकिद कराए गए तमाम दीगर भर्ती इम्तिहान भी मनसूख कर दिए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के वोटर शनाख्ती कार्ड निज़ाम की तारीफ की है और इसे अमरीका में मजीद सख्त इंतखाबी कवानीन के लिए मिसाल नमूना करार दिया है। भारत आज नई दिल्ली में ब्रिक्स वुज़राए माहौलियात के 12वें इजलास की मेजबानी करेगा। भारतीय फौज के सरबराह जनरल धीरज सेठ को नेपाल के सदर रामचंद पौडेल ने काठमांडू में नेपाली फौज के एजाजी जनरल का ओहदा अता किया। भारतीय महकमा मौसमियात ने आज झारखंड में इंतहाई शदीद बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। और नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन आलमी चैंपियनशिप में मर्दों के सिंगल्स के पहले राउंड में आयुष शेट्टी ने आलमी नंबर एक और दिफाई चैंपियन शी युकी को शिकस्त दी। इसके साथ ही आकाशवाणी से यह खबरनामा खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त नीलम सिंह। श्रोताओं, आज नमस्कार प्रयागराज कार्यक्रम में एक विशेष महत्वपूर्ण विषय पर हम बात करेंगे। विषय है गिग इकोनॉमी और बदलती रोजगार संस्कृति। आइए समझे इस नई कार्य संस्कृति के अवसर, चुनौतियां और भविष्य के बारे में। जाने की बदलती दुनिया में रोजगार का स्वरूप आखिर किस दिशा में जा रहा है।

रोजगार का अर्थ भी होता था कि निश्चित कार्यालय, निश्चित समय, निश्चित वेतन और वर्षों तक चलने वाली नौकरी। लेकिन डिजिटल युग ने काम की पारंपरिक तस्वीर को तेजी से बदल दिया। आज कोई व्यक्ति को अपने घर से किसी दूसरे शहर या देश के लिए काम कर सकता है। कोई ऐप के माध्यम से कैब चला रहा है, भोजन पहुंचा रहा है, ऑनलाइन पढ़ रहा है या पढ़ा रहा है, डिजाइन बना रहा है, कंटेंट तैयार कर रहा है या स्वतंत्र रूप से अपनी सेवाएं दे रहा है। यही है बदलती व्यवस्था।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
3: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के आईसीटीसी केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
4: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज, और हम बात कर रहे हैं गिग इकोनॉमी की। एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें लोग स्थायी नौकरी के बजाय अलग अलग परियोजनाओं, अस्थायी कार्यों या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से काम करते हैं। इसमें एक ओर युवाओं के लिए स्वतंत्रता, अपनी सुविधा के अनुसार काम करने और आय के नए अवसर दिखाई देते

देते हैं तो दूसरी ओर नौकरी की स्थिरता, सामाजिक सुरक्षा, बीमा, पेंशन और नियमित आय जैसी चुनौतियां भी सामने आती हैं। सवाल ये है श्रोताओं कि क्या काम की दुनिया अब नौकरी से अवसर की ओर बढ़ रही है? क्या युवा एक ही नौकरी करने के बजाय कई तरह के कामों से अपनी पहचान बनाएंगे? और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस बदलती रोजगार संस्कृति में काम करने वाले व्यक्ति के अधिकार और सामाजिक सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाएगी?

गिग इकोनॉमी केवल रोजगार का नया मॉडल नहीं, बल्कि ये हमारे काम करने, कमाने और पेशेवर पहचान बनाने के तरीके में हो रहे बड़े बदलाव का संकेत है। श्रोताओं, गिग इकोनॉमी से आप अपना अवसर निकाल सकते हैं, ढूंढ सकते हैं काम करने के तरीके को। चलते चलते हम यही कहेंगे कि बारिश के मौसम में कुछ सावधानियां आपको रखनी होंगी। गाड़ी धीरे चलाएं, खुले बिजली के खंभों व तारों से दूर रहें, जल भराव वाले रास्तों पर न जाएं और पीने के पानी को हमेशा उबाल कर पिए। साफ पानी इस्तेमाल करें, स्वस्थ रहें, खुश रहें।

0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424242।
1: ओ 8700।

0: 4-2-4-2। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700-001-4242 पर।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: UP 112 है उत्तर प्रदेश का सुरक्षा चक्र, क्योंकि ये बेफिक्र होकर खुली हवा में आजादी के साथ सांस लेने का हौसला देता है।
4: तो किसी भी आपात स्थिति में पुलिस, फायर ब्रिगेड, प्राकृतिक आपदा, एम्बुलेंस, साइबर अपराध, महिला या बाल अपराध संबंधित प्रथम प्रतिक्रिया और तत्काल सहायता के लिए 112 मिलाएं।
3: यूपी 112 की ओर से प्रदेश वासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं।
4: शहर या देहात, दिन हो या रात, यूपी 112 है आपके साथ।
3: यूपी 112 नंबर 1 सेवाएं अनेक।
5: प्रस्तुत है फिल्म संकेत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज से, बोल विश्वेश्वर शर्मा के और संगीत शंकर जयकिशन का। फिल्म का नाम सन्यासी।

मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने सुना सन्यासी फिल्म का ये गीत। बोल विश्वेश्वर शर्मा के थे और संगीत शंकर जयकिशन का था। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत किशोर कुमार की आवाज में, बोल योगेश के, संगीत आर डी बर्मन का, फिल्म का नाम मंजिल।

मंजिल फिल्म के इस खूबसूरत गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। अगला कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

0: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है।
1: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए कानपुर नगर और झांसी जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं कानपुर नगर जिले की हलचल, आलेख और स्वर है राजेश श्रीवास्तव का।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत यूके व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता सीटा तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता प्रभावी होने के साथ ही भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच आर्थिक साझेदारी का एक नया युग का शुभारंभ हुआ है। इसी क्रम में पिछले दिनों औद्योगिक नगरी कानपुर नगर स्थित ICD पनकी में कार्यालय महानिदेशक विदेश व्यापार DGFT FIEO एवं कानपुर लॉजिस्टिक पार्क लिमिटेड KLPL द्वारा आयोजित भारत यूके व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता के अंतर्गत व्यापार संचालन का शुभारंभ अवसर पर फ्लैग ऑफ समारोह संपन्न हुआ। गौरतलब है कि इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सीटा से भारतीय निर्यात को बढ़ावा लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश के निर्यातकों के लिए नए अवसर सृजित होंगे। समझौते के अंतर्गत भारत के लगभग 99% निर्यात को यूनाइटेड किंगडम के बाजार में शून्य शुल्क पहुँच प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त 137 सेवा उप क्षेत्रों के अवसरों का विस्तार होने से भारतीय सेवा क्षेत्र को भी व्यापक लाभ मिलेगा। यह समझौता विशेष रूप से वस्त्र, चमड़ा, इंजीनियरिंग, खाद्य प्रसंस्करण, औषधि, MSME इन क्षेत्रों में निर्यात वृद्धि, निवेश आकर्षण तथा रोजगार सृजन की नई संभावनाएं विकसित करेगा। भारत यूके सीटा के प्रभावी होने से उत्तर प्रदेश विशेषकर कानपुर के निर्यातकों के लिए वैश्विक बाजार में प्रवेश और विस्तार के नए द्वार खुलेंगे। चमड़े के सामान, परिधान एवं वस्त्र, इंजीनियरिंग सामान, रसायन उद्योग को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। यह समझौता भारत की निर्यात क्षमता को सुदृढ़ करने तथा विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर सिद्ध होगा। यह समझौता के तहत उच्च रोजगार सृजित करने वाले एवं श्रम प्रधान वस्त्र एवं परिधान क्षेत्रों को शून्य शुल्क प्रवेश प्राप्त होगा। इससे भारतीय निर्माताओं को वैश्विक प्रतिस्पर्धा की तुलना में महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धा बढ़त मिलेगी।

0: सीईओ हेड उत्तर प्रदेश आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि
1: अगर हम रेडीमेड गारमेंट्स की बात करें तो ये भी शुल्क जीरो हो जाएगा, जिसमें 12% का शुल्क लगाया जाता था। लेदर के या फुटवेयर में 16% का, केमिकल्स में 8% का था, जेम्स एंड ज्वेलरी में 4% का था, प्रोसेस फूड में 50-60% का था। तमाम ऐसी कमोडिटी में शुल्क जीरो हो जाएगा, जिससे निर्यातकों ने इस प्रयास को बड़ा सराहा है और अब लगातार हमारा जो एक्सपोर्ट है यूके को वो बढ़ेगा, शहर से भी बढ़ेगा, प्रदेश से भी बढ़ेगा और देश से भी बढ़ेगा।
0: जनपद कानपुर नगर स्थित आईआईटी के वैज्ञानिक डॉक्टर ध्रुवराज करण ने पिछले दिनों अपने शोध के आधार पर बताया कि मौजूदा और पुराने वाहनों में E20 प्रयोग से कोई समस्या नहीं है। इंजन रिसर्च लैब आईआईटी में प्रोजेक्ट साइंटिस्ट डॉक्टर ध्रुवराज करण ने के अनुसार उन्होंने अपने शोध के दौरान पाया कि मौजूदा और पुराने वाहनों में E20 का प्रयोग से कोई समस्या नहीं है। डॉक्टर ध्रुवराज करण ने लोगों को उपभोक्ता पुस्तिका, यूजर मैनुअल और समय समय पर पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा जारी की जाने वाली गाइडलाइन पर ध्यान देने की सलाह दिया। उन्होंने बताया कि किए गए एक्सपेरिमेंट के अनुसार टेक्नोलॉजी E85 तक एथेनॉल का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए अलग तरह के हार्डवेयर चाहिए। डॉक्टर ध्रुवराज करण ने बताया
2: E20 तक ऐसा हमने अपने शोध में पाया है कि ऐसा कोई प्रॉब्लम वर्तमान वाहनों और पुराने वाहनों में नहीं, सो E20 तक हम लोग नॉर्मल यूज कर सकते हैं।
0: जनपद कानपुर नगर में पिछले दिनों प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कानपुर मंडल के पर्यटन एवं संस्कृति विभाग से संबंधित प्रस्तावित और निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान कानपुर मंडल के लगभग 31.8 करोड़ की 25 पर्यटन विकास परियोजनाओं का रोडमैप तैयार किया। इसमें अधिक पर्यटन विकास प्रस्ताव के साथ ही मंदिर, संग्रहालय, इको टूरिज्म और संस्कृत स्थलों के विकास पर फोकस रहा। सभी परियोजनाओं में गुणवत्ता, समयबद्ध क्रियान्वयन और जनप्रतिनिधियों के साथ बेहतर समन्वय सुनिश्चित किए जाने के साथ ही 1 करोड़ की लागत वाली सभी निर्माणाधीन परियोजनाएं नवंबर तथा उच्च गुणवत्ता के साथ पूरी की जाने के निर्देश उन्होंने अधिकारियों को दिए। जनपद कानपुर नगर में पिछले दिनों शिक्षकों और उनके परिवारजनों की स्वास्थ्य सुरक्षा एवं सुध को सदन करने के लिए मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत छत्रपति साहू जी महाराज विद्यालय में लाभार्थी शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा कार्ड वितरित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सुरेंद्र मैथानी विधायक सहित छत्रपति साहू जी महाराज विद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक ने किया। योजना के तहत 5 शिक्षकों को उनके और उनके परिवारजनों को सूचीबद्ध निजी चिकित्सालय 5 लाख रुपए तक निःशुल्क कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिलेगी, जबकि सरकारी चिकित्सालयों में उपचार राशि की कोई सीमा नहीं होगी। इस योजना से जनपद के 1000 से अधिक शिक्षकों को लाभ मिलेगा। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना प्रदेश सरकार की शिक्षकों के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाती है। स्वास्थ्य संबंधी संकट के समय यह योजना शिक्षकों उनके परिवारों को महत्वपूर्ण राहत प्रदान करेगी।
3: कानपुर नगर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं झांसी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विकास कुमार का।
4: झांसी नगर निगम क्षेत्र के 13 वार्डों में करीब 4,20,00,000 रुपए की लागत से सड़क और नाला निर्माण कार्य कराए जाने की जानकारी सामने आई है। इन कार्य से स्थानीय नागरिकों और आवागमन और जल निकासी की सुविधा मिलने की उम्मीद है। झांसी नगर निगम क्षेत्र में पिछले दिनों करीब 44,61,00,000 रुपए की 4 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। इसमें CM ग्रिड फेज 3 के तहत BKD चौराहे से गणेश चौराहे तक सड़क, फुटपाथ, साइड पटरी और सुंदरीकरण का कार्य प्रमुख है। जल जीवन मिशन के तहत पाइप डालने से प्रभावित हुई सड़कों की मरम्मत को लेकर जिलाधिकारी ने संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिए हैं। जिले में करीब 170 सड़कें प्रभावित बताई गई हैं। उन्हें निर्धारित मानकों के अनुसार बहाल करने को कहा गया है। प्रेमनगर क्षेत्र में बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से पानी की टंकी का ऊपरी हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन क्षेत्र की पेयजल आपूर्ति प्रभावित हुई है। जिलाधिकारी गौरांग राठी ने पौधारोपण अभियान की समीक्षा की। जिले में इस वर्ष 1,03,00,000 पौधों लगाने का लक्ष्य रखा गया। 27 विभागों से लगाए गए पौधों की जीवित स्थिति और जियो ट्रैकिंग की रिपोर्ट मांगी गई है। गुरसराय और गरोठा क्षेत्र के लिए 63,24,00,000 रुपए की संयुक्त पुनर्गठन पेयजल योजना का लोकार्पण किया गया। योजना से दोनों नगर क्षेत्रों के लगभग 7,440 घरों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य है। गरोठा क्षेत्र के एक सरकारी विद्यालय में हाई टेंशन लाइन गिरने से करीब 40 बच्चों की जान बाल बाल बची। इस घटना के बाद जिले के सरकारी विद्यालयों के ऊपर और आसपास से गुजर रही विद्युत लाइनों को हटाने की आवश्यकता और अधिक महत्वपूर्ण हो गई। जिले के 119 सरकारी विद्यालयों और विद्युत लाइनों से जुड़े खतरे से मुक्त कराने की कार्यवाही की जानकारी सामने आई है। इसमें करीब 40 विद्यालयों से विद्युत लाइनें हटाई जा चुकी हैं। यह कदम विद्यालयों और शिक्षकों की सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। झांसी में रेलवे से जुड़े अपराध के मामले में RPF और GRP ने कार्यवाही करते हुए करीब 3 टन रेलवे स्क्रैप बरामद किया। मामले में 2 ट्रक चालकों और 1 कबाड़ी को गिरफ्तार किया गया। झांसी ललितपुर मार्ग पर रोडवेज बस सेवा शुरू करने की खबर सामने आई है। पहले चरण में 5 बसों के संचालन की व्यवस्था की गई। इसमें दोनों जिलों के बीच सार्वजनिक परिवहन सुविधा को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। जुलाई के अंतिम सप्ताह में जिले में बारिश और जलभराव की स्थिति भी चर्चा में रही। कई इलाकों में बारिश के कारण रास्तों और घरों में पानी भरने से जनजीवन प्रभावित हुआ। प्रशासन की ओर से जल निकासी और मौसम की स्थिति पर निगरानी रखी गई। पिछले दिनों झांसी पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 25,000 के इनामी आरोपी जितेंद्र उर्फ जीतू यादव को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार आरोपी पर ग्राम प्रधान के बेटे की हत्या की सुपारी लेने का आरोप था। मामले में पुलिस की ओर से की गई कार्यवाही जारी रही। झांसी जिले में एक और गंभीर सड़क दुर्घटना हुई। अतीक अहमद के 21 वर्षीय बेटे अवान अहमद और उसके साथी सोनू की सड़क हादसे में मौत हो गई। वाहन के डिवाइडर से टकराने के बाद यह हादसा हुआ, जिसमें 3 अन्य लोग घायल हुए। पुलिस ने दुर्घटना के कारणों की जांच की। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिले में विभिन्न सरकारी और सार्वजनिक स्थानों में राष्ट्रीय पर्व मनाया गया। सरकारी कार्यालयों, शिक्षण संस्थानों और अन्य स्थानों पर ध्वजारोहण तथा देशभक्ति से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए। पिछले 1 माह में झांसी जिले में पेयजल, सड़क, जल जीवन मिशन, विद्यालयों की सुरक्षा, पौधारोपण, नगरीय विकास, सार्वजनिक परिवहन, अपराध नियंत्रण और सड़क सुरक्षा से जुड़े विशेष रूप से गुरसराय गरोठा की 83 करोड़ रुपए से अधिक की पेयजल परियोजना, 44 करोड़ से अधिक की नगरीय विकास परियोजना और 119 सरकारी विद्यालयों को विद्युत खतरे से मुक्त कराने की कार्रवाई जनहित की दृष्टि से महत्वपूर्ण रही।
3: यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
5: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

0: सुबह सवेरे आध्यात्मिक चेतना का कीजिए विकास आराधना के साथ।
1: विचारों की तरंग और भावनाओं की उमंग, नमस्कार प्रयागराज के संग।

0: एक ही कलाकार में फिल्मी सितारों का सफरनामा। जोड़िए दिल से दिल के तार हेलो फरमाइश के साथ।
1: गृह लक्ष्मी के साथ होंगी घर की

0: लोक रंग लोक उमंग लेकर आता है पनघट।
1: युवाओं की सोच को आवाज देता कार्यक्रम युववाणी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: और पंचायत घर में होंगी खेत खलिहान और चौपाल की बातें।

0: आवाज आईना के साथ।
1: तू आशिक है, मैं तेरी आशिकी।
2: सिल्वर स्क्रीन से खुलेगा सिनेमा की सुनहरी यादों का एल्बम।

0: रोड, कभी वार्डन रोड, कभी कैडल रोड, कभी पेडल।
1: लिफाफों में बंद एहसासों के रंग, चिट्ठी आई है के संग।
2: पहली बार
3: सुबह से रात तक आपकी आवाज आपके साथ।
1: सुनते रहिए आकाशवाणी प्रयागराज, धड़कन हर दिल की।

एहसास की धूप छाओं में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्ज़ और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ, धड़कन हर दिल की।

पलट आई है फिर से सावन की बारिश, पलट आई है फिर से सावन की बारिश, कड़ी धूप घर से हटाने लगी है, बिछा दो सभी फूल राहों पे उसकी, बिछा दो सभी फूल राहों पे उसकी, वो सावन की रुत मिलने आने लगी है। यूं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से हर मौसम हमारे लिए एक अनमोल तोहफा है, क्योंकि यूं भी एक इंसानी फितरत है कि यकसानियत से जल्द तबीयत उब जाती है और तब्दीली की ख्वाहिश होती है। इसीलिए अल्लाह ने दुनिया में अपनी मखलूकात, इलाकात, चरण परन सब में तगैरात रखी है ताकि इंसान के जौक की तस्कीन हो सके और वो यकसानियत से उबे नहीं। तबीयत में इस तरह की तब्दीली पैदा करते हैं साल में चार बार तब्दील होते मौसम, कभी गर्मी की शिद्दत, कभी सर्दी की वो कड़क की ठंडक, कभी पतझड़ के उदास दिन और कभी सावन की वो रंगीली शामें। सावन का महीना वो रंगारंग मौसम है जो शदीद गर्मी से बेहाल होते इंसान समेत तमाम जानदारों के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। सावन आते ही हर सिमत सब्जा लहलहाने लगता है, इंसान का जहन दिल मुअत्तर हो जाता है, बागों के झूले और पकवान की खुशबूएं ऊंची पेंगे लेने लगती है। पूरे बरसगीर में बरसात के मौसम की अलग ही धूम होती है, छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े बूढ़ों तक।

तबीयत सबकी ही गुदगुदा उठती है। और जब सूरज की तमाजत से बेहाल आसमान और जमीन को सावन की काली घटाएं ढक लेती हैं और सूखी जमीन की मिट्टी पर जब पानी की नर्म नर्म बूंदें अपनी दस्तक देती हैं और फिर बरखा रिम झिम कर बरसती है, तो इस मिट्टी से उठने वाली सोंधी सी महक हम सब की रूहों तक को सरशार कर देती है। और जब एक आम इंसान इस मौसम की खूबसूरती और इस मौसम की रूमानियत को महसूस करके सरशार हो सकता है, तो फिर एक शायर का दिल, उसका जहन और उसका कलम क्यों नहीं मुतासिर हो। शायरी के लिए तो ये मौसम है ही साजगार, क्योंकि शेर व अदब का ताल्लुक रिश्ता इस्तवार करने से है।

कल की सरशार हो सकता है, तो फिर एक शायर का दिल, उसका जहन और उसका कलम क्यों नहीं मुतासिर हो। शायरी के लिए तो ये मौसम है ही साजगार, क्योंकि शेर व अदब का ताल्लुक रिश्ता इस्तवार करने से है, और ये ताल्लुक जो फर्द से भी हो सकता है और कायनात की दूसरी अशिया से भी। ये ताल्लुक सावन के मौसम बहार के खुशबू भरे लम्हात में और मजबूत होता है, और शायर के ज़हन व क़लम को खुद ब खुद रवा दमा कर देता है। यही वजह है कि दौरे कदीम में अमीर खुसरो से सावन का जिक्र शायरी में शुरू होता है। अमीर खुसरो की शायरी में सावन का महीना अपने इर्द गिर्द हरियाली के रंग बिखेर देता है, रिश्तों की बनत को तेज कर बिछड़े हुओं से मिलने की चाह को बढ़ा देता है। उनकी सावन से जुड़ी शायरी में सावन के रंग और मोर के फैले पंखों का जिक्र मिलता है। अमीर खुसरो के सावन को अदबी नाकिद सलमान आसिफ कुछ यूं बयान करते हैं कि सावन की मौसमी हकीकत में जहां मौसम की हरियाली, मिट्टी की खुशबू, बादलों की गरज और बारिश की छमछम शामिल है, वहीं अमीर खुसरो के अशार में यही बारिश दिल की धड़कन और रूह की सरशारी बन जाती है। खुसरो के कलाम में जब हम सावन का जिक्र तलाश करते हैं तो सावन का अहवाल कुछ यूं मिलता है कि धानी रंगत में भी गत हो दिल की चुनरी भी, धानी रंगत में भी गत हो दिल की चुनरी भी, और पवन लहरा के गावत हो एक ठुमरी भी। या इस तरह कि सरसों फूल बनी और कोयल कुकत राग मल्हार, सरसों फूल बनी और कोयल कुकत राग मल्हार, नारियां झूले डाल के देखत हैं सावन की धार। अमीर खुसरो ने सावन को हिंदी और उर्दू तहजीब का एक जमालियाती जुज बनाया। उन्होंने सावन को एक आशिक की फरियाद, एक सूफी की दुआ और एक लड़की के दिल के जज्बात में ढाला। जब वो लड़की सावन के झूले पड़ते ही अपने मैके की याद में तड़प उठती है और अमीर खुसरो के कलम के जरिए पुकार उठती है

अपने उगलती थी दफीने और बारिश थी लगातार तो यूं गर्द थी मफकूद, बारिश थी लगातार तो यूं गर्द थी मफकूद, जिस तरह मैं नाप से धुल जाते हैं सीने। और क्या दिल की तमन्नाओं को मरबूत किया था, क्या दिल की तमन्नाओं को मरबूत किया था, सबसे पिचमकती हुई सावन की झड़ी ने, सबसे पिचमकती हुई सावन की झड़ी ने। इसी तरह मशहूर जमाना शायर दाग दहलवी सावन के मंजर को और सावन की फुहारों को नजरअंदाज नहीं कर सके और कह उठे, कोई छींटा पड़े तो दाग कलकत्ते चले जाएं, कोई छींटा पड़े तो दाग कलकत्ते चले जाएं, अजीमाबाद में हम मुंतजर सावन के बैठे हैं। बशीर बदर ने कहा कि दिल से जो छटे बादल तो आंख में सावन है, दिल से जो छटे बादल तो आंख में सावन है, ठहरा हुआ दरिया है, बहता हुआ पानी है। नासिर काज़मी इस तरह रकम तराज है कि याद आई वो पहली बारिश, याद आई वो पहली बारिश जब तुझे एक नजर देखा था। बरसात का बादल तो दीवाना है, क्या जाने किस राह से बचना है, किस छत को भिगोना है। अशफाक अंजुम ने कहा कि हमसे पूछो मिजाज बारिश का, हमसे पूछो मिजाज बारिश का, हम जो कच्चे मकान वाले हैं। खुसरो से लेकर आज तक तमाम ही शुरा ने इस मौसम बरसात में सावन का जिक्र अपने अपने अंदाज में बेहतरीन तरीके से किया है, लेकिन इन सब का हासिल और इस मौसम पर सबसे बेहतरीन नज़्म हमारे ख्याल में नज़ीर अकबर आबादी की बरसात की बहार। तो आइए इस मौसम में लुत्फ उठाएं इस नज़्म का भी कि क्या क्या मची है यारो बरसात की बहारें, क्या क्या मची है यारो बरसात की बहारें, सब्जियों की लहलहाहट बागात की बहारें, बूंदों की झमझमाहट कतरात की बहारें, हर बात के तमाशे हर घात की बहारें, क्या क्या मची है यारो बरसात की बहारें। बादल हवा के ऊपर हो मस्त छा रहे हैं, झड़ियों की मस्तियों से धूमे मचा रहे हैं, पड़ते हैं पानी हर जा जलथल बना रहे हैं, गुलजार भीगते हैं सब्जे नहा रहे हैं, मारे हैं मौज डाबर दरिया ढूंढ रहे हैं, मोरों पपी है कोयल क्या क्या रमन रहे हैं, झड़ कर रहे हैं झड़िया नाले उमंड रहे हैं, बरसे है में झड़ाझड़ बादल घमंड रहे हैं, जंगल सब अपने तन पर हरियाली सज रही है, गुल फूल झाड़ बूटे कर अपनी धज रहे हैं, बिजली चमक रही है बादल गरज रहे हैं, अल्लाह की नकारे नौबत के बज रही है, हर जा बिछा रहा है सब्जा हरे बिछोने कुदरत के बिछ रहे हैं, हर जा हरे बिछोने जंगल में हो रहे हैं पैदा, हरे बिछोने और बिछवा दिए हैं हक ने क्या क्या हरे बिछोने, सब्जों की लहलहाहट कुछ अब्र की सी आई और छा रही घटाएं सुर्ख और सफेद का ही, सब भीगते हैं घर घर ले माह ताप माही, ये रंग कौन रंगे तेरे सिवा इलाही, क्या क्या रखे हैं यारब सामान तेरे कुदरत, बदले है रंग क्या क्या हर आन तेरे कुदरत, सब मस्त हो रहे हैं पहचान तेरे कुदरत, और तीतर पुकारते हैं सुभान तेरे कुदरत, और कोयल की कूक में भी तेरा ही नाम हैगा, और मोर की जटल में तेरा प्याम हैगा, ये रंग सौ मजे का जो सुबह शाम हैगा, ये और का नहीं है तेरा ही काम हैगा। नज़ीर की क्या खूबसूरत मंजर कशी अभी तक रही इस मौसम की, और इस मौसम का मजा जो इंसान उठाते हैं वो किस तरह उठाते हैं जिन्हें तमाम सहूलियात होती हैं, और किस तरह परेशान होते हैं वो लोग जिनके पास जिंदगी गुजारने का असासा और साजो सामान नहीं है, उनके लिए मौसम किस तरह परेशान होता है। दोनों की मंजर कशी देखिए कि फूलों की सेज ऊपर सोते हैं कितने बन बन, सोहे गुलाबी जोड़े फूलों के हार अबरन, कितनों के घर है खाना सूना लगे है।

0: आंगन कोने में पड़ रही है सरमूल अपेक सौगन। जो खुश है वो खुशी में काटे है रात सारी, जो गम में है उन्हों पर गुजरे है रात भारी, जो दुख में है सो उनके सीने फड़क रहे हैं, आहें निकल रही हैं, आंसू टपक रहे हैं। जब कोयल अपनी इनको आवाज है सुनाती, सुनते ही गम को मारे छाती है उमड़ी आती, पीपी की धुन को सुनकर बेकल है कहती जाती, मत बोल ऐ पपीए फटती है मेरी छाती। बरस के ये नजीर अकबर आबादी की एक तवील नजर बरसात के हर मंजर को इस तरह पेश करती है कि तमाम ही मजे और तमाम ही तकलीफें हमारी आंखों के आगे घूम जाते हैं। गरज ये कि हर मौसम और हर दौर में हमारे तमाम शुआरा ने सावन को कभी हिजर की बहती आंख से देखा तो कभी विसल के खेते तबस्सुम की नजर से, क्योंकि सावन का ये मौसम है ही दिलों की कैफियत पर असरअंदाज होने वाला, सूखी धरती को हरा करने वाला। हमारी दुआ है इस सावन को बरसाने वाले रब से, कि सावन में बिछड़ों को मिलाने वाले रब से ये सावन हम सब के लिए खैर का, रहमत का, अमन का और सुकून का पैगाम लाए। तो इस मौसम में बरसात यानी खूबसूरत घनक रंग सावन के इस मौसम की दिली मुबारकबाद के साथ और तरह तरह के मजेदार पकवानों के मजों के साथ अपने मेजबान रपा पंचम को आज का प्रोग्राम खत्म करने की इजाजत दें। अलविदा।
1: अभी आप सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम। आज का ये कार्यक्रम सावन पर खुसूसी प्रोग्राम था। उर्दू शायरी में सावन, तहरीर व आवाज थी रबाब अंजुम की और तरतीब व पेशकश थी विक्रांत चौधरी की। उर्दू कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
2: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए 8700014242।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुनिए ज्योति मिश्रा के स्वर में ये भजन।

ज्योति मिश्रा के गाए इस भजन के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम अब यही समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। भारत आज नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया है कि ये बैठक महत्वपूर्ण विचार विमर्श, सर्वसम्मति तक पहुंचने और पर्यावरणीय सहयोग मजबूत करने का मंच उपलब्ध कराएगी। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी उम्मीदवारों के 24 दिन से जारी विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2024 और टीडीपीएल एजेंसी द्वारा संचालित सभी प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल शाम मंत्रिमंडल की विशेष बैठक के बाद ये घोषणा की। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: सरकार ने वर्ष 2014 से अब तक की भर्ती प्रक्रियाओं की जांच कराने के साथ परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में समिति गठित करने का भी निर्णय लिया है। इस बीच मंत्री दीपिका पांडे सिंह और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के साथ विधायक जयराम कुमार ने सदर अस्पताल पहुंचकर देवेंद्र नाथ महतो और अन्य आंदोलनरत छात्रों को जूस पिलाकर उनका अनशन समाप्त कराया और जेपीएससी जेएसएससी न्याय मंच ने फिलहाल आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की। छात्र नेता रविंद्र पासवान ने सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच का आदेश होने तक रिफॉर्म मंच का आंदोलन जारी रहेगा। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: दिल्ली सरकार ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और सुपर स्पेशलिटी मेडिकल सीटों के चरणबद्ध विस्तार के माध्यम से चिकित्सा शिक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए तैयार है। इस योजना के तहत सरकार 3 स्तरीय प्रयास करेगी, जिसमें ग्रीनफील्ड परियोजनाएं, मौजूदा संस्थानों का ब्राउनफील्ड विस्तार तथा स्नातकोत्तर और उन्नत चिकित्सा कार्यक्रमों का विस्तार शामिल है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की मतदाता पहचान पत्र प्रणाली की प्रशंसा की है और इसे अमेरिका के चुनाव विनियमों के लिए मॉडल बताया है। उन्होंने भारत की निर्वाचन प्रणाली को चुनावी सुरक्षा का उदाहरण बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ हाल की बातचीत का उल्लेख किया। अमेरिका के विशेष दूत जेयर्ड कुशनर ने कहा है कि प्रस्तावित गजा संघर्ष विराम योजना पर इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के साथ लगभग 4 घंटे चली बैठक में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। श्री कुशनर ने कहा कि बातचीत मुख्य रूप से गजा के पुनर्निर्माण, असैन्यकरण और इसराइल की सुरक्षा चिंताओं पर केंद्रित रही। उन्होंने ये भी बताया कि श्री नेतन्याहू और उनकी टीम द्वारा उठाए गए कई मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। केरला में विंझिंजम समुद्री बंदरगाह से आज से सीधा निर्यात और आयात शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन आज सेवा का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल मुख्य अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि व्यक्ति को हमेशा आत्मसम्मान, साहस और स्वाभिमान के साथ जीना चाहिए। सोशल मीडिया पोस्ट में एक संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए उन्होंने कहा कि सच्चा पुरुषार्थ इसी में है कि व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में अपने सिद्धांतों और मूल्यों से समझौता न करे और अपने आदर्शों पर दृढ़ रहे। मौसम विभाग ने आज झारखंड में अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली में भी गुरुवार तक तेज बारिश होगी। मछुआरों को आज अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में न जाने की सलाह दी गई है। FIH महिला हॉकी विश्व कप में आज भारतीय टीम पूल डी के अपने दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलेगी। ये मैच नीदरलैंड्स के एम्स्टेलफेन में खेला जाएगा। भारत ने ओलंपिक रजत पदक विजेता चीन के साथ 2-2 से ड्रॉ के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। नई दिल्ली में आयोजित BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में भारत के 21 वर्षीय आयुष शेट्टी ने मौजूदा चैंपियन चीन के शी चीचू को 21-14, 13-21, 21-19 से हराकर बड़ा उलटफेर किया। पीवी सिंधु और महिला डबल्स जोड़ी ट्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद भी दूसरे दौर में पहुंच गईं। वहीं महिला डबल्स में कविप्रिया सिल्व और मौसिमरन सिंघी की जोड़ी ने स्पेन की निकोल कैरोला और कार्मेन जिमनेज की जोड़ी को 22-20, 21-14 से पराजित किया। के दूसरे दिन आज पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन पहले दौर में ऑस्ट्रिया के कोनल्स फिलिमोन से खेलेंगे। वहीं उन्नति हुड्डा महिला सिंगल्स के पहले दौर में म्यांमार की थेट हतात हुजार से मुकाबला करेंगी। डबल्स जोड़ी की बात की जाए तो रोहन कपूर और रुत्विका शिवानी गड्डे तथा कनाडा के जोनाथन लाई और क्रिस्टल लाई आमने सामने होंगे। आशीष सूर्य और अमृता प्रमुथेश तुर्की के एमरिस उन्मेज और यासिमेन बेक्टास से मुकाबला करेंगे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: सरकार ने वर्ष 2014
2: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के कार्यक्रम में सुनिए जुबिन नौटियाल की आवाज में सैयारा फिल्म का ये खूबसूरत संगीत। बोल और संगीत ऋषभ कांत का।

अगला गीत मिथुन अंकित तिवारी की आवाज में, बोल और संगीत मिथुन का, फिल्म का नाम सनम रे।

आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। लीजिए सुनिए अगला गीत फना फिल्म से, आवाज सोनू निगम, सुनिधि, आमिर खान और काजोल की, बोल परशुन जोशी के, संगीत जतिन ललित का।

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: फना फिल्म के इस खूबसूरत गीत के साथ सुनिए MS धोनी फिल्म का ये गीत। पलक मुच्छल की आवाज, मनोज मुंतशिर के बोल और संगीत, अमल मलिक का।

पलक मुच्छल के गाए इस खूबसूरत गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है लोकगीत का कार्यक्रम और इस कार्यक्रम में आज की कलाकार हैं शशिबाला जैन। लीजिए सुनिए इनके स्वर में कजरी।

लोकगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे शशिबाला जैन के गाए लोकगीत। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत का। इसके अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं एक ही कलाकार, और आज के कलाकार हैं एक गीतकार जो शब्दों में जिंदगी लिखते हैं, गुलजार साहब।

आज मैं बात करने जा रही हूँ उस शख्सियत की जिनके शब्द सिर्फ गीत नहीं बनाते बल्कि हमारे दिल की आवाज़ बन जाते हैं, जिनकी कलम ने बारिश को भी महसूस कराया, खामोशी को भी आवाज़ दी और रिश्तों को भी एक खूबसूरत भाषा दी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ प्रसिद्ध गीतकार, लेखक, कवि और फिल्मकार गुलजार साहब की।

एक गीतकार के रूप में गुलजार साहब की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वे साधारण शब्दों में असाधारण भावनाएं कह देते हैं। उनके

गीतों में प्रेम है, बिछुड़ना है, बचपन है, प्रकृति है और जीवन की छोटी छोटी खुशियां भी हैं। उनके गीतों को आवाज देने वाले महान गायक और गायिकाओं में लता मंगेशकर, आशा भोसले, किशोर कुमार, भूपेंद्र, जगजीत सिंह और हरिहरन जैसे अनेक नाम शामिल हैं। जब गुलजार के शब्द और किसी महान की आवाज साथ आती है तो गीत केवल सुना नहीं जाता, महसूस किया जाता है।

फिल्म मासूम का कि तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हो या दिल से का सतरंगी रे, गुलजार साहब ने हर गीत में भावनाओं की एक अलग दुनिया रची है। फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर के गीत जय हो के लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सम्मान मिला और उन्होंने ऑस्कर जीता।

लेकिन गुलजार साहब की पहचान केवल पुरस्कारों से नहीं है, उनकी असली पहचान उन शब्दों में है जिन्हें सुनकर हमें लगता है कि अरे ये तो मेरे दिल की बात कह दी। गुलजार साहब ने हमें सिखाया कि शब्द छोटे हो सकते हैं लेकिन उनमें छिपी भावनाएं बहुत बड़ी हो सकती हैं। लेकिन लेखनी हमें बताती है कि कविता केवल किताबों में नहीं होती, वो बारिश की बूंदों में, पुराने खत में, किसी की याद में, कभी कभी हमारी खामोशी में भी होती है। बस इतना ही कहना चाहूँगी, गुलजार साहब एक नाम नहीं, शब्दों से बुना हुआ एक एहसास है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार, ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवा रहे हैं कविता कृष्णमूर्ति के स्वर में ये गीत, फिल्म 1942 ए लव स्टोरी से। इनके साथ गीत गाया है कुमार सानू ने। कुछ तो चाहत रही होगी इस बारिश की बूंदों की भी, वरना कौन गिरता है इस जमीन पर आसमान तक पहुंचने के बाद।

आइए अब सुनते हैं सोनू निगम और शान को। जाने कौन रह गया भीगने से शहर में, जिसके लिए लौटती है रह रह कर बारिश फिर से।

और आइए अब सुनते हैं आशा भोसले और विनोद राठौर को फिल्म चांदनी में। कोई रंग नहीं होता बारिश के पानी में, फिर भी फिजा को रंगीन बना देता है।

आइए अब सुनते हैं किशोर कुमार को फिल्म मंजिल में।

इसी के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। बारहवां ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों का सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडप में चल रहा है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। सम्मेलन में सदस्य देशों के मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, नीति निर्माता और विशेषज्ञ पर्यावरण से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। इसका उद्देश्य आम सहमति बनाना और पर्यावरण के क्षेत्र को मजबूत करना है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 का विषय है, लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों पर विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक को लेकर वोट बैंक की राजनीति के लिए गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया। एक निजी समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि ये विधेयक विदेशी धन प्रवाह में पारदर्शिता लाएगा और अब सच्चाई सामने आएगी। उन्होंने कहा कि विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजना उत्कृष्ट निर्णय है। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने बहुत झूठ फैलाया है और इस तरह की झूठी बातें फैलाकर राजनीति करना सरासर गलत है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए प्रदेश प्रभारी नियुक्त किए हैं। विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी और जगदीश ईश्वर भाई पटेल को सह प्रभारी बनाया गया है। डॉ सतीश पुनिया को पंजाब का प्रभारी और तरुण चुग को गुजरात का प्रभारी नियुक्त किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय कर्नाटक लोक सेवा आयोग में कथित प्रश्नपत्र लीक घोटाले से जुड़े मामले में राज्य में कई ठिकानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। आयोग के पूर्व अध्यक्ष शिवशंकरप्पा एस साहूकार पर प्रश्नपत्र लीक, ओएमआर शीट में छेड़छाड़ और पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती के लिए प्रति उम्मीदवार 70 से 80 लाख रूपये की रिश्वत मांगने के आरोप है। आरोप है कि एक निजी कंपनी ने बिचौलिए के रूप में काम किया। निदेशालय ने शिवशंकरप्पा के आवास, आयोग के कुछ पूर्व सदस्यों के ठिकानों और निजी कंपनी से जुड़े कार्यालयों में तलाशी ली। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर 24 दिन से जारी विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2024 और टीडीपीएल एजेंसी द्वारा संचालित सभी प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल शाम मंत्रिमंडल की विशेष बैठक के बाद ये घोषणा की। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: सरकार ने वर्ष 2014 से अब तक की भर्ती प्रक्रियाओं की जांच कराने के साथ परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में समिति गठित करने का भी निर्णय लिया है। इस बीच मंत्री दीपिका पांडे सिंह और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के साथ विधायक जयराम कुमार ने सदर अस्पताल पहुंचकर देवेंद्र नाथ महतो और अन्य आंदोलनरत छात्रों को जूस पिलाकर उनका अनशन समाप्त कराया और जेपीएससी जेएसएससी न्याय मंच ने फिलहाल आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की। छात्र नेता रविंद्र पासवान ने सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच का आदेश होने तक रिफॉर्म मंच का आंदोलन जारी रहेगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आज उधमपुर, रियासी और कठुआ जिलों में संदिग्ध लोगों की आवाजाही की सूचना मिलने के बाद कई जगहों पर तलाशी अभियान शुरू किया। रियासी के सदनी जंगलों और कठुआ के हीरानगर सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास कई गांवों में भी तलाशी अभियान चलाया गया। सभी इलाकों में तलाशी अभियान जारी है। नई दिल्ली में बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज शाम लक्ष्य सेन पहले दौर में ऑस्ट्रिया के कोलिंस फिलिमोन से खेलेंगे। उन्नति हुड्डा पहले दौर में म्यांमार की थेत हतार थुजार के साथ मुकाबला करेंगी। मिक्स डबल्स के पहले दौर में भारत के रोहन कपूर

0: India's Ayush Shetty stunned world number one and defending champion Shi Yuqi in the first round of the men's singles at the BWF Badminton World Championships in New Delhi yesterday. Ace shuttler PV Sindhu and the women's doubles pair of Teresa Jolly and Gayatri Gopichand also advanced to the second round at the World Championships. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.5% down in the forenoon session today. The Sensex dropped 366 points to 77,362, while the Nifty lost 87 points to 24,201 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है. मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर. आइए सुनते हैं कार्यक्रम विवरण. खेलों में रुचि रखने वाले श्रोताओं के लिए कार्यक्रम होगा रात 10 बजे खेल दर्पण, जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे. शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में दोपहर 12:15 बजे पंडित गोपाल दास का क्लैरियोनेट वादन हम आपको सुनवाएंगे, और रात 10:30 बजे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में पंडित नारायण राव व्यास का ख्याल गायन होगा. 12:30 पर श्रोताओं के फोन कॉल्स पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा हेलो फरमाइश, प्रस्तुति होगी मधु कुमार की. 12:15 पनघट कार्यक्रम में ग्रामीण अंचल की बहनें सुनेंगी प्रीति लता श्रीवास्तव के स्वर में लोकगीत, और मधु बाला पांडे की बातचीत करियर विकल्प और कौशल विकास. 2:30 NCERT की ओर से प्रायोजित कार्यक्रम होगा. 5:00 धरती के गीत कार्यक्रम में कलाकार होंगे गुलाब सिंह यादव और साथी. 5:15 युवाणी कार्यक्रम में युवजन सुनेंगे करियर की बात के अंतर्गत प्रोफेसर विनीता से बातचीत उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कैसे बनाएं करियर. 6:30 पंचायत घर कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सुनेंगे कमलेश कुमार यादव और साथी के स्वर में लोकगीत के अलावा बातचीत डॉक्टर मनोज कुमार सिंह से अरविंद कुमार की. विषय होगा जैविक और प्राकृतिक खेती. 6:50 पर प्रायोजित कार्यक्रम होगा किसानवाणी. 6:50 पर किसानवाणी कार्यक्रम होगा, और 7:31 पर संस्कृत कार्यक्रम में अरुणी मिश्र की वार्ता होगी लोक मंगलस महाकवि गोस्वामी तुलसीदास. 7:45 पर सुगम संगीत की कलाकार होंगी श्रेया श्रीवास्तव, इनके स्वर में भजन और गीत हम आपको सुनवाएंगे. 8:30 सबरस कार्यक्रम होगा, और 9:30 कहकशा. ये थे आज के शेष कार्यक्रम.

खोए हुए व्यक्तियों के संदर्भ में सूचनाएं सुनिए। श्यामा प्रजापति पुत्री राम अजूर प्रजापति निवासी परसपुर अमावा थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़। ये श्यामा प्रजापति लापता हैं 20 मई 2026 से। श्यामा की उम्र है 18 वर्ष। चेहरा लंबा है, इकहरा बदन है, रंग सांवला है और लंबाई है 155 सेमी। गुलाबी रंग का सलवार सूट और काली चप्पल पहने हुए हैं। इनकी सूचना मिलने पर मोबाइल नंबर 800-9493-067 पर सूचित करें। मोबाइल नंबर पुनः सुन लें 800-9493-067। एक और सूचना सुनिए। मोहनी सोनकर पुत्री विनोद कुमार सोनकर निवासी गुतनी थाना मणिकपुर जनपद प्रतापगढ़ से लापता हैं।

मोहिनी की उम्र है 24 वर्ष। ये 15 जुलाई 2026 से लापता हैं। चेहरा लंबा है, रंग सांवला है, ऊंचाई है 5 फीट। ये लाल रंग का सलवार सूट पहने हुए हैं। इनकी सूचना मिलने पर मोबाइल नंबर 9026113570 पर सूचित करें। मोबाइल नंबर पुनः सुन लें, 9032113570। खोए हुए व्यक्तियों के संदर्भ में सूचनाएं समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित गोपाल दास का बजाया क्लैरिनेट राग है शुद्ध सारंग।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित गोपाल दास का क्लैरिनेट वादन राग शुद्ध सारंग। इनके साथ तबले पर संगत की श्री महावीर प्रसाद भट्ट ने। इसके साथ ही शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। इसे आप सुन सकते हैं न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी। आइए सुनते हैं श्रोताओं की फोन कॉल्स पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो फरमाइश। प्रस्तुति है मधु कुमार की।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम, अपना नाम बताइए।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्कार
1: मैम रोशनी बोल रहे हैं, गाँव भुटिया मोटिहरा जिला प्रतापगढ़।
0: जी रोशनी जी, कौन सा गीत सुनेंगी?
1: मैम कुर्बान फिल्म का।
0: जी गाने के बोल बता दीजिए।
1: तू जब जब मुझको पुकारे मैं दौड़ी हूँ नदी किनारे।
0: रोशनी जी की पसंद का कुर्बान फिल्म का ये गाना आइए सुनते हैं।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम, अपना नाम बता दीजिए।
1: महेंद्र यादव, मुन्ना बरौ हंडिया प्रयागराज से।
0: जी हंडिया से महेंद्र जी ने कॉल की है, तो महेंद्र जी की क्या पसंद है?
1: सड़क फिल्म का गाना है, जब जब प्यार पे पहरा हुआ है।
0: जी जी,
1: प्यार और भी गहरा हुआ है।
0: ये संजय दत्त और पूजा भट्ट के ऊपर, जी उनके ऊपर फिल्म आया हुआ ये गाना है। तो आपकी इस पसंद को पूरा करते हैं महेंद्र जी, लीजिए सुनिए सड़क फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम, अपना नाम बता दीजिए।
1: गांव दौदापुर पोस्ट उमरी प्रयागराज निवासी, मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा की मथुरा से आदरणीय मधु दीदी से वार्तालाप कर रहा हूँ। सादर नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्कार जी, बताइए कौन सा गीत सुनेंगे?
1: मेरे आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है साजन बिना सुहागन
0: जी,
1: और गीत के बोल है मधुबन खुशबू देता है सागर श्यावन देता है। बहुत ही सुंदर प्यारा सुनला गीत और प्रेरणादायक।
0: बहुत बढ़िया गीत चुना शारदा प्रसाद प्रजापति जी ने, मथुरा से कॉल की है इस गीत को सुनने के लिए, तो आइए सुनवाते हैं।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना नाम बता दीजिए।
1: सुरेंद्र यादव, बांका जलालपुर।
0: जी सुरेंद्र जी, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: राजा हिंदुस्तानी का, परदेसी परदेसी जाना नहीं।
0: अच्छा, ये बताइए, फोन इन के अलावा आप कौन कौन से कार्यक्रम सुनते हैं?
1: हम फोन इन ही सुनते हैं।
0: अच्छा अच्छा,
1: आपकी जितना फरमाइश है आपका सब मैं सुनता हूँ।
0: अच्छा अच्छा, कैसे लगते हैं आपको कार्यक्रम?
1: बहुत अच्छा लगता है जी सुनने में।
0: चलिए तो अब हम आपको सुनवा देते हैं राजा हिंदुस्तानी।
1: नाम लेना चाहता हूँ।
0: अच्छा, किसके नाम लेना चाहते हैं?
1: एक मेरी छोटी सी बच्ची है।
0: अच्छा,
1: तालवी यादव नाम है।
0: हाँ हाँ,
1: बस और किसी ने।
0: अच्छा ठीक है, नाम ले लीजिए आप अपने परिवारजनों के।
1: है वो भाई है
0: जी।
1: हाँ
0: तो सुरेंद्र जी, आपको सुनवाए राजा हिंदुस्तानी फिल्म का ये गाना।
1: ठीक मैडम,
0: लीजिए सुनिए।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम, अपना नाम बता दीजिए
1: सोनू जायसवाल साहिब प्रतापगढ़ से बोल,
0: जी। सोनू जी, कौन सा गीत सुनेंगे?
1: दीवाना का
0: गाने के बोल बता दीजिए।
1: कोई सा भी, ऋषि कपूर की फिल्म है।
0: हाँ, ऋषि कपूर की फिल्म है दीवाना, और उसके सारे गाने हिट थे। तो
1: जी हाँ, सभी गाने अच्छे हैं।
0: फिर सोनू जी, आपको इस हिट फिल्म का सुनवाते हैं ये हिट गाना।

अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं की फोन कॉल्स पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो फरमाइश। प्रस्तुति थी मधु कुमार की। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर।

थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। बारहवां ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों का सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडप में चल रहा है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। सम्मेलन में सदस्य देशों के मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, नीति निर्माता और विशेषज्ञ पर्यावरण से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। इसका उद्देश्य आम सहमति बनाना और पर्यावरण के क्षेत्र को मजबूत करना है। श्री यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे सहयोग को और मजबूत करने तथा पर्यावरण कार्य समूह के लिए सकारात्मक परिणामों हेतु सार्थक तरीके से जुड़ने को उत्सुक हैं। सेमिकॉन इंडिया 2026 का पांचवा संस्करण अगले महीने की 17 तारीख से नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। 3 दिन के इस सम्मेलन में 40 से अधिक देशों की 500 से अधिक प्रदर्शक और करीब 240 कंपनियां हिस्सा लेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में बताया कि प्रदर्शनी में जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, मलेशिया, जर्मनी और नीदरलैंड्स के 6 अंतर्राष्ट्रीय पवेलियन होंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों पर विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक को लेकर वोट बैंक की राजनीति के लिए गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया। एक निजी समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि विपक्ष ने बहुत झूठ फैलाया है और इस तरह की झूठी बातें फैलाकर राजनीति करना सरासर गलत है।
1: पूरा झूठ फैलाया देश भर में है कि FCRA जो है क्रिश्चियन मिशनरी को टारगेट किया जा रहा है, जबकि क्रिश्चियन मिशनरी का टोटल इंडिया का जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन आते हैं वो 16% है, बाकी तो सब हिंदू का है। तो प्रोटेस्ट ज्यादा करना है तो हिंदू लोग करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा तो हिंदू का है। देखिए, इस तरह का झूठे बातें फैला करके राजनीति करना बिल्कुल ठीक नहीं है।
0: श्री रिजिजू ने कहा कि ये विधेयक विदेशी धन प्रवाह में पारदर्शिता लाएगा और अब सच्चाई सामने आएगी। उन्होंने कहा कि विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति को भेजना एक उत्कृष्ट निर्णय है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए प्रदेश प्रभारी नियुक्त किए हैं। विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी और जगदीश ईश्वर भाई पटेल को सह प्रभारी बनाया गया है। डॉ सतीश पुनिया को पंजाब का प्रभारी और तरुण चुघ को गुजरात का प्रभारी नियुक्त किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय कर्नाटक लोक सेवा आयोग में कथित प्रश्न पत्र लीक घोटाले से जुड़े मामले में राज्य में कई ठिकानों पर तलाश अभियान चला रहा है। आयोग के पूर्व अध्यक्ष शिव शंकरप्पा एस साहूकार पर प्रश्न पत्र लीक, ओएमआर शीट में छेड़छाड़ और पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती के लिए प्रति उम्मीदवार 70 से 80 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप हैं। आरोप है कि एक निजी कंपनी ने बिचौलिए के रूप में काम किया। निदेशालय ने शिव शंकरप्पा के आवास, आयोग के कुछ पूर्व सदस्यों के ठिकानों और निजी कंपनी से जुड़े कार्यालयों में तलाशी ली। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आज उधमपुर, रियासी और कठुआ जिलों में संदिग्ध लोगों की आवाजाही की सूचना मिलने के बाद कई जगहों पर तलाश अभियान शुरू किया। रियासी के सदनी जंगलों और कठुआ के हीरानगर सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास कई गांवों में भी तलाशी अभियान चलाया गया। मध्य प्रदेश के भिंड में ग्वालियर भिंड इटावा राजमार्ग पर कल देर रात वैन और ट्रक की टक्कर में 8 लोगों की मौत हो गई और 23 घायल हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर कारणों की जांच शुरू कर दी है। भारत और श्रीलंका के बीच गॉल्फ में खेले जा रहे पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के चौथे दिन दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 5 विकेट पर 123 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारतीय गेंदबाजों ने मेजबान टीम को पहली पारी में 284 रन पर ऑल आउट कर दिया। BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में महिला सिंगल्स के पहले दौर में भारत की उन्नति हुडा और म्यांमा की थेत हतार थुजार के बीच मुकाबला जारी है। भारतीय खिलाड़ी ने कुछ देर पहले ही पहला गेम 22-20 से

0: राजों से पानी छोड़ने जाने से कई अजला में सैलाबी सूरत हाल है। वाराणसी में गंगा के पानी की बढ़ती हुई सतह घाटों के ऊपरी हिस्से की तरफ बढ़ रही है, जिसकी वजह से इंतजामिया और सिक्योरिटी एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। उधर चित्रकूट में मंदाकिनी नदी खतरे के निशान को उबूर कर गई है। इंतजामिया ने हिफाजत के पेश नज़र रामघाट जाने वाली सड़क को बंद कर दिया है। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। अब ग्रामीण अंचल की बहनें अपना कार्यक्रम सुनेंगी पनघट।

0: गंगा। अरे ओ गंगा, अरे हम तुमसे कहते ही राम राम।
1: राम राम जया बहनी, और पनघट सुने बैठी सब बहनी हरेन के गंगा और
0: जया के
1: राम राम, राम।
0: गंगा जानत हो हमार जो पनघट है ना, वो केवल पानी भरे के जगह नहीं बल्कि दिखा यहाँ हम सबे गांव घर परिवार समाज और हमार सबके रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हर जरूरी बात दिल खोल के करी थी।
1: बिल्कुल बहनी, देखा आजकल सब अपने अपने दुनिया में इतना मगन व इतना काम व मनई के कि फुर्सत तो मिल भी नहीं करत।
0: बिल्कुल
1: तो जोन थोड़ के फुर्सत मिले थे वो में अपने दिल की बात अपने सखियन से अपने पनघटे पे करे पे कितना अच्छा लागत है।
0: बिल्कुल सही कहो गंगा कि देखा जब तू ये बात कहो तो देखा आज हम अपनी सखियन से एक ऐसी बात उनके सामने लेके आई है जो हम सबके जीवन से सीधी जुड़ी है।
1: बिल्कुल, देखा कहा थे ना कि बूंद बूंद से सागर बनत है ना, छोट छोट कोशिश से बड़ा मुकाम मिलत है। तो आज के हमारे विषय भी यही खूबसूरत सोच से जुड़ा हुआ कि घर की छोटी बचत से बड़े सपने
0: है ना। देखा गंगा बिल्कुल सही कहो कि देखा छोटी छोटी बचत से जो ने बड़े सपने तैयार हो जाते हैं। तो देखा सपना देखे के लिए केवल गंगा पैसे की आवश्यकता नहीं हो,
1: बिल्कुल नहीं,
0: पर देखा उसके लिए हिम्मत समझदारी और सही दिशा भी जरूरी होता।
1: बिल्कुल, देखा हम सब के जीवन में कुछ ना कुछ सपना जरूर होता है।
0: बिल्कुल सही,
1: चाहे वो सपना होए अपन घर बनावे के, चाहे वो सपना होए अपने बच्चन के अच्छी शिक्षा दे के, या फिर अपन कोनो काम शुरू करे के, और या फिर भविष्य के आर्थिक रूप से सुरक्षित बनावे के।
0: बिल्कुल सही कहो, बिल्कुल। और देखा ये कारण से हम ये बात भी कहब कि देखा छोटी बचत बड़े सपने दोनों कहूँ ना कहूँ नहीं देखा ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची भी कहा जाते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: इसलिए ना। और देखा गंगा की अक्सर हम एक बात सोची थी कि जैसे हमारा जो आम आदमी है उनकी सोच माँ ये आवत है कि देखा आमदनी जब बहुत ज्यादा होए तबे हम पैसा बचा सकी।
1: हाँ, लेकिन ऐसा हो ही ना।
0: बिल्कुल सही, देखा ऐसा है नहीं। कैसे देखा ये जो बचत करे की बात है ये देखा एक आदत होती है ना, और देखा घर में रोज के खर्चे में से थोड़ा थोड़ा बचाया जा सकते है। वही देखा छोटी रकम समय के साथ साथ बड़े काम आ सकती।
1: कहे से कि देखा कमाई कितनी बार ये हमेशा हमरे हाथे में ना हो,
0: बिल्कुल,
1: लेकिन वो कमाई में से कितना बचावे के बा ये काफी हद तक हमरे हाथ में होते कि जितना हम कमा नहीं होकर एक हिस्सा ले आए कि हम एक जगह रख दे।
0: बिल्कुल सही,
1: हमारे हाड़े गाढ़े काम आए।
0: और देखा कई बार ऐसा होता है गंगा कि देखा बिटिया की पढ़ाई हो चाहे घर की जरूरत हो खेती किसानी का काम हो या फिर देखा भविष्य की खातिर कोई बड़ी बात हो या बड़ी बचत हो या बड़ा सपना हो, देखा बड़े सपने का मजबूत आधार जो है छोटी बचत ही बन सकती है।
1: बिल्कुल, अक्सर देखा लोग सोचते हैं कि मतलब हम बहुत कुछ बड़ा करब या हमारे पास खूब पैसा हो जाए तब हम बचत करब,
0: ऐसा नहीं,
1: लेकिन ऐसा कभी हो ही ना।
0: बिल्कुल सही,
1: तो यही नाते वास्तविकता एक बिल्कुल विपरीत होता है। बचत के लिए बड़ी आय से ज्यादा जरूरी है कि बड़ी सोच और अनुशासन मने के अंदर।
0: बिल्कुल सही। और गंगा देखा एक बात और भी है कि देखा जब हम बचत के बारे में सोची थी तो जो हमारे घर की गृहिणी है उनका हम लोग जो ने मील का पत्थर वो मानी थी। कहे से देखा घर के सब लोग देखा अपन दिनचर्या में मतलब जो ने व्यस्त रही

0: है, पर जो घर की गृहिणी हुई दिन रात, चाहे वो कहूं भी हुए, ओके मन माओ के दिमाग में कहूं ना कहूं एक एक पैसा जोड़े की जोड़े जुगत लगी रहा था,
1: जोड़ जोड़ के चलत है,
0: कैसे वो जुगाड़ करे कि थोड़ा थोड़ा पैसा बचत कर सके। और देखा एक सबसे बढ़िया साधन है, देखा हम आपन भी बताई कि हमारी बिटिया है, तो हम उसे कहा कि देखा अगर तो का मतलब थोड़ा थोड़ा पैसा अगर तेरे पास है तो देखा एक छोटा सा गुल्लक खरीद ना और मैं पैसा डाल दा। तो देखा एक दिन जब हम गुल्लक फोड़े तो हम देखा कि बहुत सारा पैसा रहा हो,
1: पैसा इकट्ठा हो गया। ऐसे एक चीज और देखा कि छोटे से बच्चे के अंदर भी ये संस्कार अपहिने से जात ब कि हम थोड़ करके इकट्ठा पैसा जोड़ब तो हमें आगे आवे वाले समय में वो काम दे।
0: बिल्कुल सही। और देखा कई बार ऐसा होता है कि त्योहार है, हारी बीमारी है, जब हमारे सामने आए जाते तो हम लोगन का लगा थे और पैसा कहूं से आए जाए कि हमार सौन जो देखा त्योहार पे का होते हैं इच्छा होते मन कराते कि लाओ एहू सामान खरीद ले एहू कर ले, तो देखा वो इच्छा मारे का नहीं पड़त।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: छोटी छोटी बचत कहूं ना कहूं बड़ी बड़ी चीजन में हम सब लोगन के साथ में मतलब काम दे जाते।
1: बिल्कुल। तो यही नाते देखा बचत बहुत जरूरी है। तो हम सब सोचे थे देखा मतलब जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, ठीक है, महीने के अंत में जब छोट छोट खर्चा जोड़ा थे तो पता चला था कि छोट छोट रकम मिलके एक बहुत बड़ी राशि
0: तैयार हो गई। बिल्कुल सही।
1: तो एक बात हमेशा याद रखना चाहिए कि बड़ा खर्च हमेशा बड़ा ना दिखत, बल्कि कई बार छोटे छोटे खर्च मिलके बड़ा नुकसान कही जाते हैं।
0: बिल्कुल सही। और देखा बड़ा नुकसान कही जाते और देखा छोटी छोटी बचत बन के बड़ा हम सब लोगों के लिए इनाम भी बन जाते।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो यही नाते देखा बचत करे के चाहिए अपने बच्चन के बेहतर भविष्य के लिए, अपने माता पिता के सुरक्षा के लिए, अपने लिए, अपना घर, अपना व्यवसाय, अच्छी शिक्षा, बेहतर जीवन और आर्थिक स्वतंत्रता अगर मने चाहत व तो बचत करना बहुत जरूरी।
0: बिल्कुल सही। और गंगा देखा एक बात और है कि हम सब लोग जब बचत करे की बात करी थी तो कई बार ऐसा होता है कि छोटी छोटी जो हम लोग मतलब जो जैसे कि कई बार खर्चा कर दी थी और ये जो समझ आवा थी एक समय के बाद आवा थी। कई बार हम सब लोग खर्चा करी जाई थी पर एक समय आवा थे जब हम ठहराव में आई थी, रुकी थी, समझी थी कि हाँ नहीं अब हम ज्यादा खर्चा कर रहे, अब बचत करे के समय है।
1: तो देखा अपने सब देर किए यही नाते तो गदेलन के अपहिने से वो शिक्षा दिया जादव कि वो बचत करे सीखे।
0: और देखा गंगा कि बातचीत तो चलते रही।
1: बिल्कुल। गीत गौने भी होत रहे तो तन की पनघट गुलजार हो जाए।
0: हाँ। और देखा चला तो का सुनाई थी एक बढ़िया सी कजरी और सुनावा थी आशय देवेदी बहनी।
1: चलो सुना जाए, बहनी अरुण भी सुने।

0: गंगा?
1: हाँ बेटी।
0: देखा गीत गाने कितनी अच्छी लग रही थी, और देखा तो एकदम जोरदार सुनवाओ अगन।
1: बिल्कुल, देखा ये मौसम में कजरी ना हो तो फिर कोनो बात ही ना है।
0: हाँ, और कजरी ऊपर से जोरदार कजरी, मतलब सुन के एकदम मन खुश होएगा।
1: खुश होएगा।
0: देखो गंगा, अभी हम लोग देखा छोटी बचत और बड़े सपने की बात करते हैं। हाँ देखा, वही से देखा जब पैसे की बात आवा थी तो हमारे जो आज के युवा हैं,
1: हाँ,
0: है ना,
1: हाँ,
0: देखा उनके सामने भी एक बड़ी चुनौती है, जैसे कि करियर विकल्प और कौशल विकास से जुड़ी हुई।
1: बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल।
0: कि उनकी भविष्य के लिए कौन तरह के करियर उनके काम आई हैं,
1: हाँ,
0: और मतलब का करे का उनका आगे, उनका मतलब चाहिए, उनका करे का चाहिए।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: तो देखा यही से जुड़ी जो अपने पनघटे पे एक बातचीत है, यही करियर विकल्प और कौशल विकास। और देखा इमा बात किए हैं मधुबाला पांडे बहनी से, गीता सिंह बहनी। तो चला सुन लिया जाए, और देखा सुना जाए और समझा जाए कि इमा का है जरूरी अपने युवा लोग बच्चन के लिए।
1: चला सुना जाए बहनी हरन।
2: देखा बहनी हरन, पनघटे पे हम सब आपके पदे हमेशा नई नई जानकारी नए नए विषय पे लेके आवत रहा थी। आज भी एक ऐसा नया विषय हम सब लेके आई है आपके बदे। हमारे साथे हैं बहनी मधुबाला पांडे, का जानकारी लेके आई हैं हम सब बदे।
3: बहनों, पनघट कार्यक्रम सुनने वाली सब बहनी हरन का हमार प्यार भरा नमस्कार, और अच्छे भविष्य के खातिर ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का हमारा विषय बा बहनी हरन, करियर विकल्प और कौशल विकास। करियर से हमार मतलब बा बहनी हरन रोजगार, और विकल्प से मतलब बा हमारे सामने उपलब्ध साधन। कौशल विकास का मतलब बहनी हरन अपनी योग्यता के अनुसार नए नए चीजन का विकास करब और अपन रोजगार स्वयं बनाओ। बहनी, एक समय रहा कि परिवार सब संयुक्त होत रहन, घर का एक सदस्य अगर आमदनी का काम करत बा तो परिवार के सभी सदस्य का भरण पोषण

0: उसी से चलत रहा।
1: यानी कि बहनी, आप कहे चाहत हैं कि करियर विकल्प का आज इतनी जरूरत काहे महसूस होता है, है ना?
0: बिल्कुल बिल्कुल बहनी, देखा है बदलाव के साथे साथे हर जरूरत भी बढ़त जात बा। तो देखा है बाकी सभी सदस्य जो उन घर के रहन बहनी हरन, वो घर के व्यवस्था में सहयोग करत रहन, सभी का जीवन खुशहाल रहा। शायद सुविधा भी इतनी नहीं रही, सोचे के दायरा भी इतना बड़ा नहीं रहा, लोगन के मन में बड़ा संतोष भी रहा। परंतु बहनी हरन, आज हमार समाज बहुत बदल गवा बा।
1: बिल्कुल सही बात है, देखा दिन प्रतिदिन जन समाज का स्वरूप जटिल हो जाता है।
0: सबको देखा सोच बदलत जात बा, हर व्यक्ति सभी प्रकार का सुख सुविधा पावे चाहते हैं, वह भी बहनी हरन बहुत कम समय में। इंतजार करे की जो क्षमता रही लोगन में, वो तो बिल्कुल भी कम हो चला जात बा। और देखा परिवार भी एकांकी होत जात बा, परिवार में सदस्य से अधिक पैसा को महत्व दिया जात बा। इन सब बातन का देखत में बहनी हरन देखा भैया हरन के तो नौकरी ढूंढब जरूरी बटबे की हा, अब हमारे बहनी हरन का भी आपन रोजगार ढूंढब बहुत आवश्यक हो गया बा।
1: जैसे कि मधुबाला बहनी आप बतावत रहे कि समाज का स्वरूप बहुत जटिल हो गया,
0: बिल्कुल
1: एक कारण से जो है और भैया हरे के ऊपर अकेले बोझ न बढ़ जाए, एक खातिर जरूरी है कि बहुत
0: काहे से कि देखा जरूरत बढ़त चली जात बा लोगन के, तो सबके बाहर निकलब कुछ न कुछ करब जरूरी बा,
1: ताकि भैया हरन हमार बोझिल न महसूस करे।
0: तो बहनी हरन देखा बात अब हम विकल्प करत रहे, अगर हम लोगन चाहिए तो सरकारी नौकरी चुन सकी थे और अपना व्यवसाय भी चुन सकी थे।
1: बिल्कुल
0: दोनों स्थिति में देखा एक बात कहे चाह कि शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण साधन बा। शिक्षा हमारे लिए तमाम दरवाजे खोलत है, हम अपनी सुविधा और योग्यता के अनुसार उस दरवाजे में प्रवेश ले सकी थे। शिक्षित होवे के बाद बहनी देखा हमारे सोचे जो दायरा भा वो थोड़ा बढ़ जाता है, निर्णय शक्ति बढ़ जाता है। और बहनी हरन अगर कौन कारणवश आप लोगन शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाई, तो देखा अपने बच्चन का पूरा मौका दें।
1: देखा कहे कि ये मतलब हा मधुबाला बहनी कि जैसे शिक्षा जो है वो प्राप्त करे से इतना रास्ता खुल जाता है, जो
0: बिल्कुल,
1: शिक्षा
0: बिल्कुल।
1: के बिना जो सीमितता रहा था वो सीमितता दूर हट जाता है।
0: बिल्कुल, खास कह के देखा बहनी निर्णय के शक्ति जोन बा वो अपन बढ़ जाता है।
1: बिल्कुल
0: बहनी, जीवन में बदलाव अगर सचमुच में लावे चाहत है, एक बात और हम राय देव, केहू के देखा देखी न भागे, पहले अपने आत्म मूल्यांकन करें और अपनी रुचि के देखें। तो अपने आत्म मूल्यांकन करने के बाद जोन है अपन रुचि सामने ले आवे।
1: यानी कि बहनी हम समझे थे कि आत्म मूल्यांकन आत्म निरीक्षण बहुत ही जरूरी बा, तब कौनो अगला कदम उठावे। पता चला जैसे हम जो है कौनो देखा देखी कौनो और रोजगार पकड़ लेती, लेकिन हमार रुचि उनमें नहीं बा, तो वो रोजगार के हम ज्यादा दिन चलाए नहीं पाऊ।
0: बिल्कुल, जैसे देखा बनी हम कहे कि शिक्षित भय पे सोचे कि जो नहीं शक्ति बढ़ जाता है और निर्णय ले के शक्ति बढ़ जाता है। तो बहनी हरन अपने बारे में पहले निरीक्षण करें कि हम कौन काम अच्छे से कर सकी थे, और वो काम करे में अगर कौनो व्यवधान आए, समस्या आए, तो उसे हम समाधान कैसे कर सकी थे। ये सब चीजन के जब अगर उनके अंदर शक्ति आ जाए तब अपने काम में सफल हुई है। और एक साथ साथ एक चीज और कह चाहब, अगर वो जैसे सचमुच में नौकरी करे चाहत हैं, तो देखा नौकरी जोन बा सरकारी बा उनमें कुछ शर्त होत है, जैसे पदवी के अनुसार शैक्षिक योग्यता, जौने पदवी के लिए हम आवेदन करत ही वही के अनुसार हमार पढ़ाई भी होवे के चाहे। ओकरे साथे साथे जान लगी प्रतियोगिता की परीक्षा होत है, ओके तैयारी करे के पड़त है,
1: कई चरणों में होत है, शारीरिक मापदंड भी होते ना बहनी।
0: ओकरे साथे साथे बहनी जो न थोड़ा समय की भी सुविधा होवे के चाहे, और धैर्यशीलता कहे के मतलब बड़े धैर्य के साथ तैयारी किया जाता है, तभी होता है। तो देखा ये सब पूरा सोच समझ के मूल्यांकन करे के बाद भी अपने रोजगार खुद चुने और सोचे समझें, और बच्चन कभी सही राय दें, उनका ये समझावें कि कौनो काम शुरू कर दिए, पता चला कि हम दिन भर बैठ के रील बनावत है, तो ऐसे देखा भविष्य उज्जवल न होई। जीवन में अगर हम सचमुच में बदलाव ले आवे चाहत है, तो मैं देखा संघर्ष करे की आदत होवे के चाहे, अपने हाथे से काम करे के भी आदत होवे के चाहे।
1: और जब देखा बहनी आजकल के लड़कन बच्चन में यही सब हम सब देखा कि उनका एकदम तैयार चीज चाहत है,
0: बिल्कुल
1: संघर्ष
0: बिल्कुल।
1: नहीं करे चाहता, तो देखा जब संघर्ष न होए तो तरक्की न होए।
0: और एकरे साथे देखा एक राय है और हम देवे चाह कि अगर बहनी अध्ययनशील है और बच्चन अध्ययनशील है, तो मैं देखा

0: चिंता करे कि ज्यादा परेशान होए की जरूरत नहीं बा। ऐसा लोग तो किसी भी क्षेत्र में अपन स्थान सुरक्षित कह सकते हैं।
1: यानी तो कि सर नित नया नया ज्ञान
0: बिल्कुल
1: रहे,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: दिमाग के खाली न छोड़े।
0: सरकारी नौकरी देखा हम अगर बात करत रहे बहनियरन तो हमारे लिए पदवी बहुत बा, सभी पदवी पावे के हम लोग अधिकारी भी है। और कुछ की बात के में ई कठिनाई बा कि अगर हम एक शिक्षक बने चाहत है तो आवेदन करे कि हमार पढ़ाई जोन बा एक शिक्षक के अनुसार होवे के चाहे और हमारे अंदर इंतजार करे कि

0: की आवेदन किया जाता है, परीक्षा की तैयारी किया जाता है, और उकरे बाद ज्यादा समय लेत है तब हमें जाए के पद मिलत है।
1: आ
0: और
1: मधुबाला वहीनी ई पद बहुत कम भी आवत, बहुत सीमित होत है।
0: हाँ
1: आ जनसंख्या इतनी
0: बिल्कुल सही, बिल्कुल
1: भारी है,
0: सही।
1: बड़ी है जनसंख्या, है ना। तो
0: जैसे मान लो एक पद में निकला बा, तो एक पद के खातिर 100 लोगन तैयारी करे शुरू केहन और
1: बिल्कुल,
0: आवेदन केहन
1: और एक एक
0: मुला।
1: अंक बदे प्रतियोगिता हुई
0: हाँ
1: जात है, तो बहुत डगर कठिन होता है। और लड़कन बच्चन के बहुत समय भी कभो कभो बर्बाद भी हो जाता, कभो कभो तो सफल हो
0: और
1: जाता, तो
0: उम्मा
1: बड़ी
0: सबसे
1: अच्छी
0: बड़ा
1: बात है।
0: नुकसान ही होता है कि न पद भी मिले पे लोगन के मन में जो न है थोड़ा सा आत्मविश्वास कमजोर हो लागत है।
1: बिल्कुल।
0: लोगन सोचा थी का हम बहुत कमजोर है कुछ ना कह सकी, मुला ऐसन बात नहीं बा। हम तो देखा बहनी हरण की ई राय देवे चाहब कि अगर उनके पास कुछ आर्थिक तंगी बा और वो खुद अपन व्यवसाय कुछ करे चाहते हैं तो व्यवसाय की तरफ बेहिचक मुड़े। हर व्यक्ति के देखा कुछ न कुछ शौक होता है, कुछ न कुछ उनके अंदर हुनर होता है, तो अपने शौक और अपने हुनर के एकदम सामने ले आवें, वो के व्यवसाय के रूप में ढालें। और बहनी हरण अपने व्यवसाय में देखा थोड़ा सा आधुनिकता ले आवें, नयापन।
1: और कई बहनी अरे कई परिवार में पहले से भी कुछ व्यवसाय चलत रहते हैं, तो ओका भी आगे बढ़ावे। और
0: बिल्कुल बिल्कुल। हम अगर देखा परिवार की व्यवसाय की बहनी आप बात करें तो एक हमारे एक कहानी याद आवत है। हमारे बगल में ही एक कुंभकार है, तो कुंभकार जो नहीं वो आदमी अपना पुराना बर्तन का बनावे के पूरा काम करत रहन,
1: अच्छा।
0: और आर्थिक तंगी तो रहबे की ही मुला थोड़ा बहुत अपन कमाई के मिट्टी के बर्तन बनाए के काम उन चला लेते रहन, घर गृहस्थी उनकर पूरी चलत रही। मुला उनके परिवार में एक लड़का ऐसा होनहार रहा उन्हीं के, तो वो कुछ नया करे चाहत रहा, तो वो जब कुछ नया करे चाहत रहा तो पढ़े लिखे चाहस महतारी बाप जोन का कहन उनके थोड़ा सहयोग देहन, सहयोग देहन। तो वो लड़का जोन है पॉलिटेक्निक के पढ़ाई कहे के बाद सोचेस कुछ हम व्यवसाय करी, मुला संजोग ऐसन रहा कि कहीं उनके नौकरी मिल गई।
1: अरे बहुत
0: जब
1: बढ़िया।
0: नौकरी मिल गए तो जान ल कि नौकरी में 20-25 हज़ार लगभग मिलत रहा, तो परिवार ठीक ठाक
1: ठीक
0: चलत
1: ठाक
0: रहा,
1: चलत रहा।
0: काफी तंगी उनकर दूर हो गई रही है, लोगन खुशी से जीवन बितावत रहन। मुला देखा समय केहू के हाथ में होत ना, परिस्थिति बदलत रहत है। उनके सामने का हो गया कि जो नहीं ई कोरोना महामारी जब आवा तो कोरोना महामारी में जो नहीं नौकरी छिन गई।
1: अच्छा।
0: जब नौकरी छिन गई तो लड़का बड़ा परेशान, जो होनहार बा वो
1: हाँ
0: तो
1: हाँ
0: परेशान रहबे करे,
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो वो अपने मन में सोचे लागिन कि हम काव करी काव करी। अब जगह जगह बड़े परेशान और सोचें कहाँ जाई का करी। देखा वही बीच में हमारे प्रधानमंत्री जोन हैं माटी कला योजना चलाएं, तो वो लड़का के पता चला माटी कला योजना में वो जाई को कर प्रशिक्षण लेहन।
1: अरे
0: और
1: बहुत
0: हमारे आंखों
1: बढ़िया।
0: देखा हाल है, नाम तो हम नहीं बता सके, मुला जान ल कि एक प्रेरणा का स्रोत हम लोगन के खातिर है वो
1: बिल्कुल
0: बच्चा।
1: बिल्कुल, हम सब की सीखे के चाहिए ऐसे।
0: हाँ तो जान ल कि जब योजना के वो जो नहीं प्रशिक्षण ले लेन, प्रशिक्षण लेने के बाद वो अपने पिता के व्यवसाय कर इतना सुंदर रूप बनाए सो लड़का कि कहत है कि उनके सामान की बड़ी मांग बढ़ी है।
1: हाँ, जैसे आप बतावत रही कि आधुनिकता जो है जरूरी
0: हाँ
1: है, तो
0: नयापन
1: वही जो है आपने पारंपरिक व्यवसाय में आधुनिकता के जोड़ दी है।
0: बिल्कुल। तो जान ल कि वो अपने मिट्टी से बढ़िया बढ़िया सजावट के सामान, त्योहार से संबंधित दीपावली होली एक साथ साथ ही इतना सुंदर सुंदर वो बोतल बनावे लागिन। तो बोतल जान ल कि पानी पिए के खातिर लोगन इस्तेमाल करे लागिन और खरीदे लागिन। तो बतावत हैं लोगन कि उनके सामान जो ने अपने देश के कई प्रदेशन में मांग भव
1: अच्छा।
0: वो सप्लाई करत हैं, कहते हैं
1: हाँ
0: जी के कहते हैं निर्यात करत
1: हाँ
0: हैं। और लोगन बतावत हैं कि करीब महीना में वो 2 लाख 2.5 लाख रुपया कमाए लेते हैं। हम तो कहे तो बहुत बड़ी बात है, अपने घर बैठे और अपने पिता की भूमि पर अगर बच्चा इतना कमाए ले तो जान लग बहुत होनहार।
1: और देखा आप बतावत रही कि शिक्षा बहुत जरूरी है,
0: वो
1: चाहे
0: शिक्षा लेहे के बाद लड़का काम के हैं करते
1: चाहे
0: हैं।
1: जो है सरकारी नौकरी पावे के हो, चाहे आप, तभी तो एक दिमाग में ये बात आए कि
0: सोचे
1: देखा
0: एकदम दायरा
1: अपने
0: बा
1: हाँ निजी व्यवसाय के वो अपन दिमाग लगाए के आधुनिकता से उका जोड़ के कहाँ से कहाँ पहुंचाए देस।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो जान ल कि एकरे साथे साथे सबसे अच्छा तो हमें ये लाग बहनी कि हम जाई थे कभों को तो देखी थे ओकर जोन कार्य क्षेत्र अपन बनाए हैं, उमा कम से कम 40-45 लोगन काम भी करत हैं, इतना लोगन को वो रोजगार भी दिए हैं और आमदनी भी करत हैं। और यह जान ल कि हो सबसे बड़ी बात ये बा कि अपने पिता की भूमि पर कहीं न जाना न आना न कोई सामान।
1: कहे के मतलब भी खुद भी आत्मनिर्भर हो गए, और कई लोगों के भी रोजगार देके आत्मनिर्भर बनाए चुका है।
0: देखा आपन

0: देश के जो सरकार बा ई जगह जगह प्रशिक्षण भी चलावत रहथिन कौशल विकास के खातिर लोगन में, और प्रशिक्षण दे के बाद प्रमाण पत्र भी देथिन। तो ई प्रशिक्षण में देखा सिलाई, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स और स्वास्थ्य सेवा से संबंधित चीजन के जानकारी दिया जाता है, और लोगन प्रशिक्षण लेहे के बाद आपन खुद के व्यवसाय शुरू करते हैं। और जे देखा मन से तन से अगर सोच समझ के काम करते हैं वो तो पूरी तरह से सफल हैं। और ई योजना के बारे में अगर जानकारी लेवे बनी हरन चाहें तो देखा स्किल इंडिया पोर्टल पर
1: अच्छा
0: सारी जानकारी उपलब्ध बा, और जानकारी लेके बनी हरन प्रशिक्षण ले सकत हैं और अपना व्यवसाय कुछ न कुछ शुरू कर सकत।
1: तो मधुबाला बहनी देखा कौशल विकास से और करियर से जुड़ी इतनी जरूरी जरूरी महत्वपूर्ण जानकारी हम सबका दीन आप आइन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: गंगा
1: बहनी
2: देखा कितनी अच्छी बातचीत रही, और पूरी उम्मीद है कि हमार बहनी अरेन इसे कुछ न कुछ जो उन्हें वो काम की बात रही हुई और
1: बिल्कुल बिल्कुल
2: है
1: सीखे हुई हैं, और देखा जिकरे अंदर करे के जज्बा बना तो वो जरूर करे और चार मनई उसे प्रेरित भी हुई हैं।
2: बिल्कुल सही। और देखा गंगा एक बात और है, कबो कबो का होते हैं बच्चन का उतनी समझ नहीं होत, पर जब माता पिता जब मतलब उनका जानकारी होते सब चीज के तो अपने बच्चन का प्रेरित करते हैं आगे बढ़े के लिए, और बहुत सारे साधन उनका बतावत है कि देखा ऐसे से ऐसे ही रास्ता अपनावा है ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल
2: देखा बातचीत फिर चलत रही तो कैसे एक गीत सुन लिया जाए।
1: हाँ
2: देखा सुनावत है रागनी चंदा बहनी, तो चला सुना जाए कजरी।

0: गंगा।
1: हाँ बहनी,
0: जोरदार गाना सुनो अक्का जाने तो कल रतिया भर पानी बरसा है। हाँ। झमाझम जाले हो, इतना आवाज आवत रहा रात भर। ऐसा लगा कि हे भगवान देव जन है, लगा था कि आज पानी भरिन दे पूरा
1: एकदम। देखा रात भर झमाझम पानी बरसा है, खेते में सवेरे उठे देखे तो पूरा खेत लबालब भरा।
0: बिल्कुल वही बात है। और देखा सब पगडंडी उगडंडी सब जो ने वही में जो ने कहा है कुछ पता नहीं
1: कुछ चला पता नहीं चला था। लेकिन देखा इतनी बढ़िया बारिश होत बाटे, तो यही बढ़िया मौसम में रसोई घर से हम इतना बढ़िया चटपटा चीज तो है सोचा थी आज हम बनवा बताए दी कि टमाटर की मीठी चटनी और आलू की कुरकुरी कचौरी।
0: अरे वाह गंगा, क्या बात है। मौसम के रोपे जो ने आलू की कचौरी और चटनी जो ने
1: सुन के मुंह में पानी आएगी
0: सोने पे सुहागा है।
1: देखा पहले टमाटर के मीठी चटनी बनाओ। ये विदा सामग्री ले ली, 4 पका टमाटर ठीक है, आधा कप चीनी चाहे ले ला चाहे गुड़ ले ला, आधा छोटा चम्मच जीरा ले ला, आधा छोटा चम्मच सौंफ ले ला, एक चुटकी हींग ले ला, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च ले ला और नमक स्वाद के अनुसार और एक छोटा चम्मच तेल, थोड़ा सा गरम मसाला। अब देखा बनावे की विधि यह है कि टमाटर उबाल के या बारीक काट के पीस ला, कढ़ाई में तेल गरम करके जीरा सौंफ और हींग डाल दो में। अब टमाटर डाल के 5-7 मिनटों का पकावा, फिर चीनी या गुड़ जोन भी रखे हो और नमक और लाल मिर्च डाल दा। धीमी आंच पर तब तक पकावा जब तक चटनी गाढ़ी और चमकदार ना हो जाए। अब सबसे अंत में गरम मसाला डाल दा। इतनी बढ़िया चटनी बन के तैयार हो जाते है कि पूछा जीन। अब आलू की कचौरी ओके भरावन बनावे भी दे, 3-4 उबला आलू ले ला ठीक, एक छोटा चम्मच सौंफ ले ला, आधा छोटा चम्मच जीरा ले ला, आधा छोटा चम्मच अजवाइन ले ला और 1-2 हरी मिर्च ले ला बारीक कटी हुई, एक छोटा चम्मच लाल मिर्च ले ला, आधा छोटा चम्मच अमचूर ले ला और नमक ले ला, थोड़ा धनिया ले ला हरी। अब मैदा में चाहे मैदा ले ला चाहे आटा ले ला, जोन भी तो है
0: सही
1: लगे। 2-3 बड़ा चम्मच मोइन डाल दा जिससे नरम आटा गुथाए जाए। अब 15-20 मिनट ओका ढक के रख दा। अब आलू एकदम मींच के मसाले के साथ अच्छी तरीके से भून ला, ओका ठंडा कर ला। अब आटे के लोई बनाए के भरावन भरा और हल्के हाथ

0: से बेला, ठीक है, मध्यम धीमी आंच पे गरम तेल में कचौरी जोन बा वो सुनहरी हो और कुरकुरी होए तक खूब तला। गरम कचौरी के मीठी चटनी के साथ परोसा, दिखा मजा आ जाता है एकदम खाए।
1: गंगा तुम बताओ तो, बस मुंह में पानी आवा थे, बस लगा था कि कोनो छाना जा बस चटनी के साथ बस।
0: और ये मौसम में तो खास करके चटपटी चीज खाए के लिए मन एकदम वैसे रहा था कि क्यों बनाए के दे दे और बैठ के खा चुपचाप एकदम चटर पटर।
1: बिल्कुल सही,
0: तो देखा इतना बढ़िया चटर पटर हम तुम्हें बताए, अब हमें बढ़िया से चटपटा एक गीत सुनाए दे तू।
1: हाँ देखा तू ऐसे इतनी बढ़िया जब विधि बताओ हो इतने सब अच्छी चीज के तो का काहे ना सुनाओ। चला सुनावा थी, फिल्म है गंगा जमुना और लता मंगेशकर जी की आवाज में।
0: चलो सुना जाए।

0: गंगा, देखा गीत जोरदार है ना।
1: बिल्कुल, ढूंढो ढूंढो रे साजना मोरे कान का बाला।
0: हाँ, देखा साजन से जो है जौन ना कही सको ओहो कह दो, कैसे देखा साजन है तो सब सुन रही है ना?
1: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो जया बहनी, देखा कितना पानी बरसत हुआ है ना।
0: बिल्कुल सही,
1: ये मौसम में तो मच्छर एकदम अति कर दिए हैं।
0: हाँ देखा, जब पानी बरसत है और जब ये जो देखा ये जो समय होते हैं ना गंगा, हाँ। बारिश के बाद जो ना हल्की हल्की ठंडी सहर वाला मौसम, ना नमी मतलब सूखे में रह जाते हैं ना बहुत गीले में, लेकिन नमी नमी वाले मौसम में मच्छर इतना आतंक मचा,
1: इतना मच्छर मनई के लिए भी, गोरु बछरू के लिए भी, बूढ़ पुरानिया के लिए, सबके लिए दिक्कत। देखा कि धुईयर खूब संजा बेरी सुलगा ले, अपने सबके लगे और गोरु बछरू के भी लगे, कहे से कि उन्हों सबके जीव है। देखा
0: बिल्कुल सही,
1: उन्हों सबके मच्छर काटते हैं, बीमारी होते, यही नाते दोनों सबके देखभाल जरूरी है ना।

0: बिल्कुल सही गंगा। और देखा सबसे बड़ी बात है कि मच्छर जो ने देखा कई बीमारी भी पैदा करते हैं। और देखा गंगा एक बात और, अब आज इस समय में जब बारिश का समय होते तो हम लोगों का खास साफ सफाई के भी ध्यान रखे का चाहिए,
1: हाँ,
0: है ना।
1: एक चीज और देखा, मने ही चूल्हा लगे, लकड़ी उकड़ी धरत है, इन्हन पानी धरत है, तो वही जाए के खाना बनो थे, देखत ना ओमे कीड़ा बीछी काऊ बैठा हुआ। तो
0: बिल्कुल सही,
1: यही समय में तो ज्यादातर सावधानी बरते हैं और देख समझ के तब वही चीज
0: काम करें।
1: ओका बै पर है।
0: हाँ, और देखा सबसे बड़ी बात है कि खान पान का भी, देखा इतने समय जो ये जो समय होते हैं वहाँ खान पान का भी खास ध्यान रखें। कैसे देख जो खाना होता है उसका ताज़ा बनावें, ताज़ा खाएं और बासी
1: बिल्कुल
0: खाना ना खाएं। और ढकें जरूर से, हर चीज़ ढका होए का चाहिए, पानी होए चाहे खाना होए। खासकर कोशिश करें कि खाना उतना ही बनावें जितना एक समय में ख़त्म हो जाए, दूसरे मीटिंग में या दूसरे समय में फिर से कुछ खाना अच्छा बना लें। और देखा
1: बिल्कुल
0: जो गर्मी से सर्दी का समय होता है ना, इस समय जो है बहुत ऐसा भारी भारी खाना खाए कि बहुत ज्यादा मन भी नहीं हो। थोड़ा बहुत देखा हल्का खाना बनाए हुए शाम संध्या के टाइम में जो ने हल्का कुछ खा ले, सुबह के समय में जो ने
1: देखा ये मौसम
0: अच्छा,
1: में खाना पचबो नहीं करत।
0: बिल्कुल सही देखा, पाचन की समस्या हो जाते इस समय में। और देखा गंगा हम तो खुद कई दिनों से हम महसूस करे थे पानी पिए के मन नहीं करा, देखा है ना।
1: पानी भी भारी भारी लागत है एकदम।
0: तो देखा जब सब बात तो हो गई, अब संदेश सुनने के भी बेला है, तो चला
1: बिल्कुल
0: एक संदेश सुना जाए।
2: बिल्कुल। पनघट जहाँ बातन में होत है अपने पन का मिठास, माटी के खुशबू और दिल से दिल का जुड़ाव, जहाँ मिलके हम हंसी थे, बोली थे और आपन सुख दुख बांटी थे। ये हम सब का आपस में जोड़े के एक अदृश्य डोर है बहनी हरिन, हमें बहुत खुशी हुए अगर आपो पनघट का हिस्सा बनी है।
0: हमका जरूर बतावें कि आप सबके हमारे कार्यक्रम कैसन लागत है, कौन बात आपका ज्यादा पसंद आवत है और इमा आप नवा का जोड़े चाहत है। आपन प्यारी प्यारी प्रतिक्रिया और सुझाव हमका ईमेल संदेश और व्हाट्सएप के जरिए भेजें।
1: हमारा ईमेल एड्रेस है
3: pangatprogram@gmail.com। स्पेलिंग है PANGATPROGRAME@gmail.com। pangatprogram@gmail.com। एमा कौनो प्रकार के कोई स्पेस ना हुई, सारे अक्षर छोटी ABCD या स्मॉल लेटर में हुई हैं।
1: हमारा व्हाट्सएप नंबर है 800-492-6250। तो सखियन देर कोने बात के, तुरंत उठावें अपन मोबाइल और भेज दें अपने मन के बात, या तो लिख के या अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके। आपके संदेश के हम सब के
4: बेसब्री से इंतजार रही।
0: गंगा,
1: हाँ बहनी,
0: दिखा बहनी लोगन का और हम लोगन का भी प्रतिक्रिया के इंतजार रही, बहनी लोगन का हमारे कार्यक्रम के इंतजार रही, है ना?
1: बिल्कुल। अच्छा देखा, पनघटे पे आए के बाद इतनी निक निक बात बत कही, गीत गौ नहीं होते तो घरे जाए के तो बिल्कुल मन ना कहा मन कहा था बस सखियन से बढ़िया बढ़िया बात करत रहा है और यही बैठा रहा है ना।
0: हाँ, पर लेकिन घड़ी इशारा कर दी।
1: चले के बेला हो तो बहनी हरन से राम राम किया जाए।
0: राम राम, राम, राम बहनी हरन।

0: अभी ग्रामीण अंचल की बहनें अपना कार्यक्रम सुन रही थी। पनघट ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: न्यूज़ The headlines. 12th BRICS Environment Ministers meeting

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। पर्यावरण सहयोग पर आम सहमति बनाने के उद्देश्य से 12वें ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में

0: संपन्न। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की। प्रवर्तन निदेशालय ने कर्नाटक लोक सेवा आयोग में पेपर लीक घोटाले में कई ठिकानों पर छापेमारी की। झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा। ट्रिशा जॉली और पुलेला गायत्री गोपीचंद सहित 15 अन्य खिलाड़ी अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित। और नई दिल्ली में BWF विश्व चैंपियनशिप में उन्नति हुड्डा म्यांमार की थेत हतार थुजार को हराकर महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में। अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 12वां ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में सदस्य देशों के मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों ने सार्थक चर्चा, आम सहमति बनाने और पर्यावरण सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सम्मेलन की अध्यक्षता की। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। बैठक को संबोधित करते हुए श्री यादव ने मानवता को प्राथमिकता देते हुए सतत पर्यावरण के निर्माण की दिशा में नीति, प्रौद्योगिकी और जनभागीदारी को समन्वित करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने 2005 और 2022 के बीच प्रदूषण उत्सर्जन की तीव्रता में 37% से अधिक की कमी की है। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष के रूप में भारत एक स्वतंत्र, रचनात्मक और सर्वसम्मति आधारित संवाद को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और सभी सदस्य देशों के दृष्टिकोण तथा योगदान को बेहद महत्व देता है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए प्रदेश प्रभारी नियुक्त किए हैं। विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी और जगदीश ईश्वर भाई पटेल को सह प्रभारी बनाया गया है। डॉक्टर सतीश पुनिया को पंजाब का प्रभारी और तरुण चुघ को गुजरात का प्रभारी नियुक्त किया गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों पर विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक को लेकर वोट बैंक की राजनीति के लिए गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया। एक निजी समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि विपक्ष ने बहुत झूठ फैलाया है और इस तरह की झूठी बातें फैलाकर राजनीति करना सरासर गलत है।
1: पूरा झूठ फैलाया देश भर में कि FCRA जो है क्रिश्चियन मिशनरी को टारगेट किया जा रहा है, जबकि क्रिश्चियन मिशनरी का टोटल इंडिया का जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन आते हैं वो 16% है, बाकी तो सब हिंदू का है। तो प्रोटेस्ट ज्यादा करना है तो हिंदू लोग करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा तो हिंदू का है। देखिए, इस तरह का झूठे बातें फैला करके राजनीति करना बिल्कुल ठीक नहीं है।
0: श्री रिजिजू ने कहा कि ये विधेयक विदेशी धन प्रवाह में पारदर्शिता लाएगा और अब सच्चाई सामने आएगी। उन्होंने कहा कि विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजना एक उत्कृष्ट निर्णय है। भारतीय जनता पार्टी ने आज नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रगीत वंदे मातरम का अपमान करने के लिए कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जब कांग्रेस पार्टी राष्ट्रगीत का सम्मान नहीं कर सकती तो उसे स्वतंत्रता आंदोलन के संरक्षक होने का दावा करना बंद कर देना चाहिए।
2: 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने घोषणा की, जन गण मन राष्ट्रीय गान, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो कांग्रेस के ही थे ना, तो ये जो नया बदलाव किया गया, कभी ये उम्मीद नहीं थी कि प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू द नेशनल ऑनर्स एक्ट जो बना 1971 में, किसने बनाया? कांग्रेस की सरकार, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर। उसमें क्या कहा गया, तिरंगा हो, जन गण मन हो, इसका कोई इंसल्ट करेगा तो 3 साल तक की सजा हो जाए।
0: श्री प्रसाद ने कहा कि कल जब कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे गोवा गए थे तब भी पार्टी के कार्यक्रम में वंदे मातरम के केवल 2 ही छंद गाए गए। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि डेरगांव दीमापुर पाइपलाइन के चालू होने से नागालैंड अब पूर्वोत्तर गैस ग्रिड और राष्ट्रीय गैस ग्रिड से जुड़ गया है। श्री पुरी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये पूर्वोत्तर को भारत का विकास इंजन बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है और इस क्षेत्र को एकीकृत गैस आधारित अर्थव्यवस्था के करीब लाएगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.

0: newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय कर्नाटक लोक सेवा आयोग में कथित प्रश्न पत्र लीक घोटाले से जुड़े मामले में राज्य में कई ठिकानों पर छापेमारी कर रहा है। आयोग के पूर्व अध्यक्ष शिवशंकरप्पा ए साहूकार पर प्रश्न पत्र लीक, ओएमआर शीट में छेड़छाड़ और पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती के लिए प्रति उम्मीदवार 70 से 80 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप हैं। आरोप है कि एक निजी कंपनी ने बिचौलिए के रूप में काम किया। निदेशालय ने शिवशंकरप्पा के आवास, आयोग के कुछ पूर्व सदस्यों के ठिकानों और निजी कंपनी से जुड़े कार्यालयों में तलाशी ली। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर 24 दिन से जारी विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2024 और टीडीपीएल एजेंसी द्वारा संचालित सभी प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल शाम मंत्रिमंडल की विशेष बैठक के बाद ये घोषणा की।
1: पूरे तरीके से इसका ऑपरेशन होनी चाहिए। जो हमें जानकारी सीजीएल को लेकर हम लोग के समक्ष बताया गया और उस तथ्यों को समझ बूझने के बाद कैबिनेट ने सीजीएल को भी रद्द करने का निर्णय लिया।
0: जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आज उधमपुर, रियासी और कठुआ जिलों में संदिग्ध लोगों की आवाजाही की सूचना मिलने के बाद कई जगहों पर तलाश अभियान शुरू किया। रियासी के सदनी जंगलों और कठुआ के हीरा नगर सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास कई गांवों में भी तलाश अभियान चलाया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के प्रमुख साहसिक अभियान अपराजिता परांगला 2026 को रवाना किया। 30 दिन का यह अभियान 250 किलोमीटर लंबे परांगला दर्रे से होकर गुजरेगा, जो हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी को लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र से जोड़ता है। तीनों सेनाओं के महिला अधिकारियों के नेतृत्व में 28 बालिका कैडेटों की टीम इसमें हिस्सा ले रही है। श्री सिंह ने कहा कि ऊंचाई वाले इस अभियान में युवा बालिकाओं की भागीदारी देश की महिलाओं के साहस, दृढ़ संकल्प और बढ़ती क्षमता का प्रमाण है। सेमिकॉन इंडिया 2026 का पांचवां संस्करण अगले महीने की 17 तारीख से नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। 3 दिन के इस सम्मेलन में 40 से अधिक देशों की 500 से अधिक प्रदर्शक और करीब 240 कंपनियां हिस्सा लेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में बताया कि प्रदर्शनी में जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, मलेशिया, जर्मनी और नीदरलैंड्स के 6 अंतर्राष्ट्रीय पवेलियन होंगे। केरलम में विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री बंदरगाह पर आज से सीधे निर्यात और आयात परिचालन शुरू हो गया है। ये इस क्षेत्र के समुद्री व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने विझिंजम से यूरोप के लिए रवाना होने वाले पहले जहाज के 2 कंटेनर को रवाना किया।
2: पिछले साल 2 मई को बंदरगाह को देश को समर्पित किए जाने के बाद अब सीधे आयात निर्यात का काम शुरू हो गया है। इन सेवाओं के शुरू होने से यूरोप जाने वाले शिपमेंट के समय में काफी कमी आएगी। पहले विझिंजम से यूरोप पहुंचने में शिपमेंट को लगभग 2 महीने लगते थे, लेकिन अब इसके सिर्फ 28 दिनों में पहुंचने की उम्मीद है। बंदरगाह अधिकारियों के अनुसार फिलहाल ये सुविधा सिर्फ फुल कंटेनर लोड को ही संभालेगी। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरुति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: सेना उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने कहा है कि युद्ध की बदलती प्रकृति ने सशस्त्र बलों के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों को तेजी से अपनाने और एकीकृत करने को अनिवार्य बना दिया है। नई दिल्ली में आज उन्होंने निगरानी और इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स पर भारतीय सैन्य समीक्षा को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि विशेषकर 2020 के बाद से युद्ध में तीव्र और व्यापक परिवर्तन आया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बढ़ते तनाव के बीच यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी ने क्षेत्र में पाकिस्तानी बलों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन की ओर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है। पार्टी ने नागरिकों की मौत और घायल होने, मनमानी गिरफ्तारियों, जबरन गुमशुदगी और संचार व्यवस्था बंद किए जाने की खबरों पर गंभीर चिंता जताई। संगठन ने शांतिपूर्ण राजनीतिक कार्यकर्ताओं और मानवाधिकार रक्षकों की आवाजाही पर प्रतिबंध और उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर भी चिंता व्यक्त की है। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों के लिए 3 महीने का मुफ्त रिचार्ज

0: घोषित किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये दावा फर्जी है और वायरल वीडियो एआई द्वारा बनाया गया है। प्रधानमंत्री ने ऐसी किसी योजना का समर्थन नहीं किया है। मध्य प्रदेश के भिंड में ग्वालियर भिंड इटावा राजमार्ग पर कल देर रात वैन और ट्रक की टक्कर में 8 लोगों की मौत हो गई और 23 घायल हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर कारणों की जांच शुरू कर दी है। बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के कारण झारखंड और आसपास के राज्यों में मौसम पूरी तरह बदल गया है। राजधानी रांची, जमशेदपुर और पलामू समेत राज्य के बड़े हिस्से में रात से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। एक रिपोर्ट।
1: बंगाल की खाड़ी से उठा गहरा दबाव आज सुबह रांची से महज 100 किलोमीटर उत्तर पूर्व में केंद्रित हो गया है। इसके प्रभाव से झारखंड के उत्तर मध्य और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। मौसम विभाग ने चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, पलामू और गढ़वा जिलों के लिए भारी से अत्यंत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटों में ये डिप्रेशन पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में बिहार की ओर आगे बढ़ेगा, जिसका असर आगामी 2 दिनों तक झारखंड में रहने की उम्मीद है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: इस बीच मौसम विभाग ने बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 दिन में उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और पूर्वोत्तर भारत में भी इसी तरह का मौसम रहेगा। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, केरल और माही में आज तेज वर्षा हो सकती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। सरकार ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा कर दी है। प्रमुख महिला बैडमिंटन डबल्स जोड़ी ट्रिसा जॉली और पुलेला गायत्री गोपीचंद समेत विभिन्न खेलों के 15 अन्य खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। भारतीय फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी इसैया अरुमनैयागम को अर्जुन पुरस्कार लाइफटाइम से सम्मानित किया जाएगा। एथलेटिक्स कोच परवीर सिंह, बॉक्सिंग कोच छोटेलाल यादव और शूटिंग कोच नेहा नंदकुमार चव्हाण को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं पुणे स्थित आर्मी पैरालंपिक नोड को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाएगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हर वर्ष खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन को सम्मानित करने के लिए दिए जाते हैं। BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में म्यांमा की थेत हतार थुजार को सीधे सेटों में हराकर भारत की उन्नति हुड्डा महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में पहुंच गई हैं। अगले दौर में उनका मुकाबला कनाडा की 13वीं वरीयता प्राप्त मिशेल ली से होगा। इस बीच मिक्स डबल्स स्पर्धा में भारतीय जोड़ी आशीष सूर्या और अमृता प्रथमेश तथा तुर्की की जोड़ी एमरे सोनमेज और यासिमेन बेक्टास के बीच मैच जारी है। भारतीय जोड़ी ने पहला गेम 21-16 से जीत लिया है। घरेलू शेयर बाजार के सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.5% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 354 अंक गिरकर 77,374 पर, जबकि निफ्टी 81 अंक की गिरावट के साथ 24,206 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पर्यावरण सहयोग पर आम सहमति बनाने के उद्देश्य से 12वें ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की। प्रवर्तन निदेशालय ने कर्नाटक लोक सेवा आयोग में पेपर लीक घोटाले में कई ठिकानों पर छापेमारी की। झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा। ट्रिशा जॉली और पुलेला गायत्री गोपीचंद सहित 15 अन्य खिलाड़ी अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित। और नई दिल्ली में BWF विश्व चैंपियनशिप में उन्नति हुड्डा महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: जी, आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर और FM 100.3 MHz पर। आइए सुनते हैं NCERT की ओर से प्रायोजित कार्यक्रम।

0: सबदंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश। स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में।
3: नमस्कार श्रोताओं, और मैं हूं अजीत। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जो हमें भेजा है कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है।
2: लिखते हैं, शुद्ध विचार, शुद्ध आचरण और शुद्ध मन ही सच्चे सुख का आधार है। मन की शुद्धता ही जीवन की सबसे बड़ी सुंदरता है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इतने सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है भाटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू।
2: संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
3: और धमधा ग्राम सुखरी कला छत्तीसगढ़ से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषी, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल।
2: एनआर प्रसाद, अखिला प्रसाद, राजाजी नगर बेंगलोर से।
3: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे।
2: सभी श्रोताओं को हमारा आभार संदेश भेजने के लिए।
3: तो श्रोताओं एक बार फिर से आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
2: जी
3: श्रोताओं, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही रोचक विषय पर। तो विमलेश जी, जरा आज का विषय तो बताइए।
2: अजीत जी, आज हम बात करेंगे हमारी भाषा हिंदी के बारे में और जानेंगे कि इसका प्रकाश कैसे जगह जगह फैल रहा है और दुनिया की दूसरी भाषाओं पर किस तरह इसका प्रभाव पड़ रहा है।
3: जी हाँ श्रोताओं, आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह दुनिया की दूसरी भाषाओं में पहुंचे हमारी प्यारी हिंदी भाषा के शब्द।
2: जी,
3: यानी किस तरह दूसरी भाषाओं ने हमारी भाषा के कुछ शब्दों को अपना लिया। तो विमलेश जी, आपसे करें शुरुआत।
2: जी जरूर। तो अजीत जी, पहला शब्द है जंगल। देखिए, जब हम जंगल शब्द सुनते हैं तो हमारी आंखों के सामने घने पेड़, जंगली जानवर और प्रकृति का विशाल संसार नजर आता है, आता है ना?
3: जी।
2: लेकिन क्या आप जानते हैं अंग्रेजी भाषा में इस्तेमाल होने वाला जंगल शब्द भारत की ही देन है।
3: श्रोताओं आपको बता दें कि यह शब्द संस्कृत के जंगल से विकसित होकर हिंदी में आया। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में इसका प्रयोग वन प्रदेश या निर्जन भूभाग के लिए मिलता है।
2: जी।
3: हुआ ये कि जब 17वीं और 18वीं शताब्दी में अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने यहाँ के विशाल वनों के लिए स्थानीय लोगों से यही शब्द सुना।
2: जी।
3: और इसे अंग्रेजी में जंगल के रूप में अपना लिया, है ना मजेदार बात?
2: हाँ बिल्कुल, वही जंगल, JUNGLE।
3: जी।
2: तो अजीत जी, आज दुनिया के किसी भी देश में यदि अमेज़न के वर्षा वनों, अफ्रीका के घने जंगलों या एशिया के वन क्षेत्रों की बात होती है या विशेषकर बच्चों की कहानियों की बात होती है, अजीत जी एक और बात, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसे शब्दकोश भी जंगल शब्द की भारतीय उत्पत्ति को स्वीकार करते हैं।

0: लगाकर मालिश करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है।
1: जी बिल्कुल, 18वीं शताब्दी में अंग्रेज अधिकारी भारत में सिर की मालिश करवाने लगे थे। उन्हें ये अनुभव इतना अच्छा लगा कि वे इस परंपरा को अपने देश ले गए। उन्होंने चांपो शब्द को अंग्रेजी उच्चारण के अनुसार शैम्पू में बदल दिया। श्रोताओ, शुरुआत में शैम्पू का अर्थ विदेश में केवल सिर की मालिश करना ही था,
0: लेकिन बाद में जब बाल साफ करने वाले विशेष द्रव बनने लगे तो धीरे धीरे उनका नाम भी शैम्पू पड़ गया।
1: जी,
0: आज ये शब्द दुनिया की लगभग हर भाषा में प्रचलित है।
1: जी,
0: तो विमलेश जी, ऐसी जानकारी से सचमुच एक सुखद आश्चर्य होता है ना, और ये भी पता चलता है कि भाषाएं किस प्रकार एक दूसरे पर प्रभाव डालती हैं।
1: जी अजीत जी, एक और शब्द है जिसे अंग्रेजी भाषा ने बड़ी खुशी से अपनाया है, वो शब्द है पायजामा। ये शब्द भी भारत की ही देन है। ये हिंदी उर्दू के उपयोग में लाए जाने वाला शब्द पायजामा से आया है। ये शब्द निर्माण की बात करें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, पाय अर्थात पैर और जामा अर्थात वस्त्र, यानी पैरों में पहनने वाला वस्त्र।
0: जी श्रोताओ, ब्रिटिश अधिकारी भारत में रहते समय इस ढीले और आरामदायक पहनावे से बहुत प्रभावित हुए।
1: जी,
0: वे इतने प्रभावित हुए कि वे इसे इंग्लैंड ले गए और अंग्रेजी में इसका उच्चारण पजामाज हो गया। आज दुनिया के लगभग हर देश में रात के आरामदायक वस्त्र के लिए यही शब्द प्रयोग में लाया जाता है।
1: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी कुछ प्रसिद्ध शब्दों के बारे में जो हिंदी, उर्दू या संस्कृत के हैं, लेकिन अब अंग्रेजी के साथ साथ और भी कई विदेशी भाषाओं में घुल मिल गए हैं। अब सुनिए आज का प्रश्न।
0: तो श्रोताओ, आज का प्रश्न है कि किसी दक्षिण भारतीय भाषा का शब्द बताइए जो आज हिंदी और कई भारतीय भाषाओं में बहुत प्रचलित है।
1: जी,
0: इसका हिंट है विमलेश जी, जरा इसका हिंट दे दें।
1: इसका संबंध खानपान से है।
0: प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: किसी दक्षिणी भारतीय भाषा का शब्द बताइए जो आज हिंदी और कई भारतीय भाषाओं में बहुत प्रचलित है। इसका हिंट है,
0: इसका संबंध खानपान से है। श्रोताओ, आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और विचार भेज सकते हैं।
1: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो जरूर करें। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना

0: आज का प्रश्न है कि किसी दक्षिण भारतीय भाषा का शब्द बताइए जो आज हिंदी और कई भारतीय भाषाओं में बहुत प्रचलित है।
1: जी,
0: इसका हिंट है विमलेश जी, जरा इसका हिंट दे दें।
1: इसका संबंध खान पान से है।
0: प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: किसी दक्षिणी भारतीय भाषा का शब्द बताइए जो आज हिंदी और कई भारतीय भाषाओं में बहुत प्रचलित है। इसका हिंट है,
0: इसका संबंध खान पान से है। श्रोताओ, आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और विचार भेज सकते हैं।
1: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो जरूर करें। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप करें NCERT बुक PDF। इस वेबसाइट से आप पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
0: अश्रोताओ, इन्हीं पुस्तकों को अगर आप ऑडियो बुक प्रारूप में भी सुनना चाहते हैं तो आपको जाना पड़ेगा NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर। आप इस चैनल पर जाकर हमारे कार्यक्रमों को या हमारे ऑडियो बुक्स को सुन सकते हैं। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का सबसे पहला कार्यक्रम पंडित बिरजू महाराज।
1: कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में कथक नृत्य सम्राट बिरजू महाराज के जीवन और भारतीय शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में उनके अमूल्य योगदान के बारे में उनके ही साक्षात्कार द्वारा बताया गया है।
0: पंडित बिरजू महाराज।

0: भारत विविधताओं का देश है। यहाँ की भिन्न भिन्न संस्कृति, भाषा, धर्म, कला और रोचक परंपराएं इसे अनूठा और अद्वितीय देश बनाती हैं। जहां तक नृत्य कलाओं की बात है, शायद ही दुनिया में कोई ऐसा देश है जहां इतनी नृत्य कलाएं हैं।
1: भारत के शास्त्रीय नृत्यों में भरतनाट्यम, कथक, कथकली, ओडिशी, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम और सत्रिया नृत्य मुख्य रूप से जाने जाते हैं।
0: आज हम बात करेंगे महान कथक नृत्य सम्राट बिरजू महाराज की। वर्ष था सन 1958, स्थान कलकत्ता का नाट्य रंगमंच। मात्र 20 वर्ष की आयु में ही उन्होंने अपनी विलक्षण नृत्य प्रतिभा का प्रदर्शन कर सबको मानो सम्मोहित सा कर दिया था। बिरजू महाराज का वास्तविक नाम बृजमोहन नाथ मिश्रा था। यही बृजमोहन नाम आगे चलकर बिरजू के जनप्रिय नाम से जाना जाने लगा। 4 फरवरी सन 1938 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में उनका जन्म हुआ था। उनके जन्म के बारे में एक बड़ी दिलचस्प बात कही जाती है।
1: कहते हैं कि जिस दिन उनका जन्म हुआ था, उस दिन अस्पताल में उन्हें छोड़कर सारी कन्याओं का जन्म हुआ था। इसी वजह से उनका नाम बृजमोहन रखा गया था। उनके पिता का नाम जगन्नाथ महाराज था। उन्हें अच्छन महाराज भी कहा जाता था। वो रायगढ़ रजवाड़े में दरबारी नर्तक हुआ करते थे।
0: राज दरबार में नर्तक होने के कारण परिवार में किसी बात की कमी ना थी। बचपन से ही उन्हें कला, संगीत और नृत्य का वातावरण मिला। 5 की आयु में ही उन्होंने तबला और हारमोनियम बजाना सीख लिया था। वो घर और दरबार के नृत्य को देख देख कर 7 की आयु में नृत्य करना भी सीख गए थे।
1: एक दिन जब बिरजू नृत्य का अभ्यास कर रहे थे तो उनके पिताजी कमरे में आए।
2: प्रणाम पिताजी।
3: जीते रहो बेटा बिरजू। बेटा, तुमने नृत्य का बहुत अच्छा अभ्यास कर लिया है। आज तुमने बहुत अच्छा नृत्य किया। लेकिन
2: लेकिन क्या पिताजी?
3: बेटा, कहते हैं ना

0: कोई भी कला तब तक अधूरी ही रहती है जब तक गुरु का आशीर्वाद और तालीम ना हो।
1: जी पिताजी, मेरे गुरु तो आप ही हैं और मेरे चाचा शंभू महाराज और लच्छू महाराज।
0: तो अपनी कला को संपूर्ण कब करोगे, यानी तालीम कब लोगे?
1: जब आप कहें। आपसे दीक्षा ग्रहण करना तो मेरा परम सौभाग्य होगा।
0: लेकिन भेंट लिए बिना गंडा नहीं बांधूंगा।
1: जी, जैसी आपकी आज्ञा।
0: जीते रहो बेटा, सदा सुखी रहो, सदा सुखी रहो।
1: जी पिताजी।
2: कथक नृत्य की प्राचीन परंपरा रही है कि तालीम शुरू करने से पहले गुरु शिष्यों को गंडा बांधते थे और शिष्य गुरु को दक्षिणा या भेंट देते थे। वही परंपरा आज भी चली आ रही है। गंडा गुरु और शिष्य के बीच एक पवित्र रिश्ता होता है। गुरु के बांधे हुए गंडे को शिष्य अक्सर आजीवन धारण करते हैं।
3: तब उन्होंने अपने शिष्य बिरजू को गंडा बांधा। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद घर पर गरीबी छा गई। एक साक्षात्कार में उन्होंने अपने जीवन के कुछ अनुभव साझा किए थे। आइए सुनते हैं।
4: पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम। कृष्ण से जुड़ा नृत्य है कथक, जिसमें आप पारंगत भी हैं और कई दशकों से आप इस नृत्य की खिदमत कर रहे हैं। विरासत में मिला आपको ये नृत्य। अगर हम आपके शुरुआती दिनों की तरफ चलें, बहुत कम लोग आपके उन दिनों के बारे में जानते हैं और ख़ासकर आपके घराने के बारे में। कैसे शुरुआत हुई?
5: हमारे पर बाबा दुर्गा प्रसाद जी, ठाकुर प्रसाद जी, उससे पहले भी नृत्य रहा है और हम लोग हड़िया से निकले हुए लोग, 900 निवासी घर थे वहाँ पर। नवाब वाहिद अली शाह ने जब बुला लिया हम लोगों को वहाँ लखनऊ में, तो राज दरबार में पूरी इज्जत, पालकी भेजना, सिपाही भेजना, बाबा को सवार करके ले जाना, तो ये सब कहानियाँ अम्मा बताती थी। जैसे हमारे अच्छन महाराज मेरे पिताजी रहे, मैं छोटा था तो वो खील बताशा जेब में पड़ा और तालीम खाने में जाके बैठा हूँ, सब लोग रियाज कर रहे हैं, तो मैं देख के तबले पे कभी हाथ मारूँ, कभी वो हारमोनियम पकड़ लूँ। फिर अम्मा को आके मैं रसोई में बताऊँ कि अम्मा मुझे भी आता, तो उस वक्त ये उंगलियाँ भी मुझे नहीं आती थी कहाँ से ये बांध के, तो मैं गिर पड़ता था। तो अम्मा कहें, अभी गिर जाते हो, तुम बड़े हो जाओ तो ठीक से नाचना। तो मेरे दिमाग में ये ज़रूर रहा कि मेरे बाबा पिताजी सबका नाम इतना रहा, तो मैं भी कोशिश करूँगा उस तरह से बढ़ने की कोशिश करूँगा।
4: अगर आपके उन संघर्ष के दिनों की हम बात करें, उस संघर्ष के दिन कैसे थे आपके?
5: मेरे ख्याल से एक समय तो हमारे घर में चार चार घोड़े, बग्घी, टमटम सबके नाम से, चाचा जी के नाम से बाबू, पर धीरे धीरे वो छीन होते होते, कहते ना एक दफ़ा तो आदमी उरूज नाम पकड़ता है, अभी धीरे धीरे सब चीज़ ख़त्म होने लगती है। और यहाँ तक हुआ कि कर्जदार हो गए हम लोग घर में। मैंने कहा अम्मा जो भी दाल रोटियों की खाऊंगा पर मैं रियाज करूंगा। पर अम्मा का आशीर्वाद और पिताजी का आशीर्वाद, तो बचपन में ही उन्होंने एक अम्मा को एक लफ्ज़ कहा था। अम्मा कहती थी बेटे को साथ ले जाओ, थोड़ा देखेगा समझेगा। तो कहे अम्मा ये परेशान करता है, कभी वो गुब्बारे मांगता है, कभी वो चॉकलेट मांगता है, तो बेहतर होगा कि मैं सिखा दूँ घर की विद्या। मैं 7.5 साल की उम्र में मैं उनसे गंडा बंधवाया और वो भी मैंने 500 इकट्ठा किए थे, 25 रुपये 50 रुपये करके इनाम पाके। तो मैंने कहा बाबू, मैं अम्मा ने कहा भाई आज शागिर्द कर लो। अम्मा कह लेगा मुझे मालूम तुम्हारा लड़का अमीर हो गया है, 501 रुपये दे दिए और एक पैसा ना मुझे दिया ना अम्मा को दिया ही नहीं, दिया ही नहीं। तो क्या करें करें, अब इसमें से नहीं दूंगा, ये मेरा नजराना है। मैं बड़ा भाग्यवान हूँ कि मेरे बाबू ने मुझे गंडा बांधा, उनका आशीर्वाद। और मेरे दिमाग में हरदम जैसे ही मैं खड़ा होता हूँ, मेकअप किया, कॉस्ट्यूम पहना, उस वक्त चाचा और बाबू हमारे सामने होते एकदम, और ईश्वर की कृपा होती है। मैं कहता हूँ प्रभु मैं तैयार हो गया हूँ, दुल्हन बन गया हूँ, तुम अब नाचो आके मेरे बदन में तुम्हारे, क्योंकि तुमने मेरे बदन को पसंद किया है, तुम नाचो हम देखेंगे। ये मेरा
4: बहुत सुंदर बात। आपके बारे में हम सभी जानते हैं कि आप शास्त्रीय गीत संगीत में माहिर हैं, वाद्य यंत्रों पर आपकी बहुत अच्छी पकड़ है, और एक ख़ास बात जो ये कि आप छोटे बच्चों को भी आप सिखाते हैं, वो जो बिल्कुल अभी 4 साल 5 साल की उम्र के हैं, उन्हें कैसे समझा पाते हैं इन सब चीज़ों?

0: को
1: आप? अरे उनको बड़े मजे में समझाता हूँ। तो एक मैंने अपने भतीजी को एक तिहाई बताई, तरथेता ऐसे करके, तो कह लिया इसमें तो बहुत सा तरथई है, कैसे याद करूँ। तो मैंने कहा बेटा सब्जी खाते हो? कहना हाँ खाते हैं। पूड़ी खाते हो? हाँ खाते हैं।
2: तो सब्जी पूड़ी, वाह वाह, तो सब्जी तीन मात्रा, पूड़ी दो मात्रा, सब्जी पूड़ी और कचौड़ी, फिर आखिर में तो मीठा चाहिए, हलवा ला दे, हलवा ला दे, हलवा ला दे दे, वाह वाह वाह, तो वाह वाह, सब्जी पूड़ी और कचौड़ी, हलवा ला दे, हलवा ला दे, हलवा ला दे दे।
0: बहुत सुंदर महाराज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।
3: साथियों, बिरजू महाराज ने कथक नृत्य में कई योगदान दिए। उन्होंने लखनऊ घराने की परंपरा को आगे बढ़ाया, नृत्य में नए आयाम जोड़े और देश विदेश में अपने शानदार नृत्य प्रदर्शन के द्वारा भारतीय कला विरासत के प्रति विश्व भर में सम्मान का भाव उत्पन्न किया।
4: बिरजू महाराज को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए कई सम्मानों और पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें पद्म विभूषण, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, कालिदास सम्मान, फिल्म फेयर पुरस्कार और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार शामिल हैं।
3: सत्रह जनवरी 2022 को नई दिल्ली में इस महान कलाकार का देहावसान हो गया। उनकी आयु 83 वर्ष थी। उनके निधन से भारत के कला जगत को एक बड़ी क्षति हुई है, लेकिन उनकी महान विरासत हमेशा जीवित रहेगी और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी।
5: पंडित बिरजू महाराज, कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन मोहम्मद फैजान खान, कलाकार परवेज गौहर, शिमाइला परवेज, बाबला कोचर, अरशद अहमद खान और सुनील लोहिया, नाट्य आलेख अजीत होरो, संपादन जगबंधु जाना, निर्माण विमलेश चौधरी, विशेष आभार राज्यसभा टीवी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत। अभी आपने सुना ये कार्यक्रम बिरजू महाराज।
6: अभी कुछ दिन पहले मेरे मिनी टेम्पो की हेडलाइट बंद हो गई। मैकेनिक बोला, भाई रात को मत चलाना। हमने सोचा यार इतना तो चलता है, रोज का रास्ता है, मैं जानता हूँ।
7: आगे एग्जिट नहीं दिखा और बाइक वाले ने इंडिकेटर भी नहीं दिया।
6: चलता है बोलने से किसी की जिंदगी भी रुक सकती है।
8: वाहन चलाने से पहले हमेशा ये सुनिश्चित करें कि हेडलाइट ठीक से काम कर रही हो। सही रोशनी से रास्ता भी साफ दिखाई देता है और आसपास चल रहे वाहन भी दिखाई देते हैं।
5: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम भगत सिंह।
9: इस कार्यक्रम में महान स्वतंत्रता सेनानी और अमर शहीद भगत सिंह के जीवन और देश की बलिवेदी पर उनकी शहादत के बारे में विस्तार से उल्लेख किया गया है।
5: भगत सिंह,
10: अपने देश के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कुछ नारे बहुत प्रचलित हुए, जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी का वंदे मातरम का नारा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जय हिंद का नारा, लोकमान्य तिलक की ललकार कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और महात्मा गांधी की पुकार अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये सब उन दिनों बच्चे बच्चे की जुबान पर थे। इन सब महान लोगों के दिए हुए इन महामंत्रों के बीच एक 20-22 साल के नौजवान की निडर आवाज भी गूंजी थी।
11: बहरे कानों को सुनाने के लिए जोरदार धमाके की जरूरत होती है।

नई दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में गूंजने वाली ये निर्भीक आवाज थी सरदार भगत सिंह की।

0: का पाठ पढ़ा था। वे अभी 12 वर्ष के ही थे कि अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर के हुक्म से सैकड़ों निहत्थे निर्दोष लोगों को गोलियों से भून डाला गया। भगत सिंह के बालक मन पर इस घटना का बड़ा गहरा असर पड़ा।
1: कौन है?
2: मैं हूं अमरो, भगत सिंह। पर तू इतनी रात को यहां आंगन में बैठी क्या कर रही है?
1: तुम्हारा ही रास्ता देख रही थी भाई। कहां चले गए थे तुम?
2: तीर्थ करने चला गया था, अमृतसर।
1: अमृतसर? अच्छा अच्छा, दरबार साहब में मत्था टेकने गए थे क्या?
2: नहीं बहन, मैं तो जलियांवाला बाग की मिट्टी को मत्था टेकने गया था, जहां त्योहार के दिन सैकड़ों बेकसूर निहत्थे बंदों का खून गिरा था। ये देख,
1: ये इस शीशी में क्या है?
2: इस शीशी में खून से रंगी वही मिट्टी है।
1: हाय रब्बा, इस खून वाली मिट्टी का क्या करोगे वीर जी?
2: मैं इसकी पूजा क्या करूंगा अमरो। ये मिट्टी मुझे देश पर कुर्बान होने वाले शहीदों की याद दिलाएगी। तू देखना बहन, इसी मिट्टी से शहीदों की नई फसल पैदा होगी। अंग्रेज सिर काटते काटते थक जाएंगे, मगर हम सिर कटाते नहीं थकेंगे। और अब उन्हें हमारा देश छोड़कर जाना ही पड़ेगा।
1: धीरे बोलो, किसी ने सुन लिया तो थाने में रपट हो जाएगी।
2: अच्छा ही है, अंग्रेजों की पुलिस जान जाएगी कि एक और दीवाना सिर कटाने को तैयार हो गया है। हाँ, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने पर बता देंगे तुझे ओ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है।
3: स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद भगत सिंह ने लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया। वहां उनकी जान पहचान अपने जैसे कई और आजादी के दीवानों से हुई। इन लोगों ने मिलकर भारत नौजवान सभा का गठन किया। जल्दी ही इनका संपर्क उत्तर प्रदेश, बंगाल, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के क्रांतिकारी संगठनों के साथ हो गया। उत्तरी भारत के प्रमुख क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद भी इनके पास आते जाते रहते थे। ये सब लोग दिन रात देश को स्वतंत्र कराने के लिए प्रयत्नशील रहते।
0: फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। भारत की दशा पर विचार विमर्श करने के लिए बनाए गए इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। भारतीयों ने इस बात का जमकर विरोध किया। हर जगह इस कमीशन का स्वागत काले झंडों और साइमन गो बैक के नारों से किया गया। अक्टूबर में साइमन कमीशन लाहौर आया। इसके विरोध में एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला गया।
4: जिंदाबाद भारत माता की जय, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद।
0: पुलिस ने जुलूस पर अंधाधुंध लाठियां बरसाईं। बुजुर्ग नेता लाला लाजपत राय पूरी तरह जख्मी हुए और कुछ समय बाद इन्हीं चोटों के कारण उनका देहांत हो गया।
2: भगवती भैया, लाला जी की मौत का बदला लेना ही होगा।
5: वो तो ठीक है भगत सिंह, मगर हम बदला किससे लेंगे? लाला जी पर लाठियां बरसाने वाले सिपाही भी तो हमारे हिंदुस्तानी भाई थे।
2: हाँ, मगर उन्हें लाठी चलाने का आदेश देने वाला तो अंग्रेज था, सुप्रिंटेंडेंट स्कॉट। मुझे लाला जी के बदन पर पड़ने वाली एक एक चोट की कसम है, मैं स्कॉट को जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
3: चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने स्कॉट को मारने की योजना बनाई। स्कॉट को पहचानने वाला साथी जयगोपाल अपनी साइकिल ठीक करने के बहाने थाने के ठीक सामने रुका हुआ था। एक अंग्रेज पुलिस अफसर को थाने से निकलते देख उसने इशारा किया। उसका इशारा पाते ही आजाद और भगत सिंह।

0: मोटरसाइकिल पर आगे बढ़े। राजगुरु पैदल थे। इन लोगों ने पलक झपकते ही अंग्रेज अफसर का काम तमाम कर दिया। साथ में एक भारतीय सिपाही चानन सिंह भी मारा गया। ये लोग साइकिलों पर सवार होकर भाग निकले। इन्हें बाद में पता चला कि ये मरने वाला अंग्रेज अफसर स्कॉट नहीं बल्कि उसका सहयोगी सॉन्डर्स था। लगभग उसी समय भगत सिंह ने तय किया कि वे अपनी बात बाहरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए एक धमाका करेंगे। दिल्ली के सेंट्रल असेंबली हॉल में बम फेंकने की योजना बनाई गई। इस बम से जोरदार धमाका हुआ। हॉल में धुआं भर गया लेकिन इससे कोई भी घायल नहीं हुआ। इसके बाद वहां क्रांतिकारी विचारधारा को स्पष्ट करने वाले गुलाबी रंग के पर्चे फेंके गए और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने स्वेच्छा से गिरफ्तारी दी। हालांकि आजाद नहीं चाहते थे कि भगत सिंह गिरफ्तार हों। वे बम वाली घटना के दिन भगत सिंह और दत्त को वहां से हटाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाने का पूरा प्रबंध कर चुके थे लेकिन भगत सिंह ने स्वयं ही गिरफ्तारी, जेल और फांसी का रास्ता चुना।
1: और ऐसा हुआ भी। 28 मार्च सन 1931 को क्रांतिकारी गतिविधियों के फलस्वरूप भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। ये वो लोग हैं जो देश के लिए मरकर अमर हो गए।
2: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ चेतना, जगबंधु
3: और मंजू जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: अभी आप सुन रहे थे NCERT की ओर से प्रायोजित कार्यक्रम।

मीडियम वेव 295.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय 3 बजने को हैं। हमारी आज की ये सभा अब संपन्न होती है। अगली सभा में शाम 5 बजे हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए, हमारे नेशनल नेटवर्क के कार्यक्रम जारी रहेंगे।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बज रहे हैं। हमारी आज की सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। श्रोताओं, सभा के आरंभ में लीजिए सुनिए कार्यक्रम धरती के गीत। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं गुलाब सिंह यादव और साथियों के स्वर में देवी गीत।

0: धरती के गीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे गुलाब सिंह यादव और साथियों की आवाज़ में निर्गुण। इसी के साथ ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन HIV का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
3: HIV को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के ICTC केंद्र पर HIV टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
4: सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा,
5: हमारा हिंदुस्तान जहान में सबसे अच्छा है, क्योंकि यहां है अच्छे लोग, अच्छा सिस्टम और देशवासियों की सेवा व सुरक्षा के लिए UP 112 की अच्छी सेवाएं।
6: पुलिस, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, प्राकृतिक आपदा, साइबर क्राइम, महिला व बाल अपराध जैसी किसी भी आपातकालीन स्थिति में 112 पर कॉल करें।
7: UP 112 की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रथम प्रतिक्रिया के लिए कॉल UP 112, नंबर 1 अनेक।
0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और

FM 100.3 MHz पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। श्रोताओं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम युववाणी। हमारे ये कार्यक्रम आप हमारे मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 MHz पर और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं।

0: गुड इवनिंग दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा रेडियो कार्यक्रम युवाणी। आज के बज चुके शाम के 5:15 और मैं हाजिर हूँ और मेरे साथ साक्षी भी हाजिर है हमारा एक और बैंगर एपिसोड लेकर के, मेरे यानी उन्नति।
1: मेरे यानी साक्षी पांडे के साथ। तो उन्नति, जब मैं आज हम स्टूडियो आ रहे थे तो तुमने देखा कितना बढ़िया मौसम है ना, सुबह
0: बिल्कुल
1: से कितना अच्छा फील हो रहा है। और
0: बिल्कुल
1: ऐसे मौसम में लगता है कि यार कुछ टेस्टी टेस्टी सा हमें खाने को मिले। लेकिन दोस्तों और उन्नति, तुम्हें लगता है कि अगर हम टेस्टी खाने की बात करें तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारी बॉडी को किस चीज़ की ज़रूरत है। हम कुछ ऐसे फूड कंज्यूम करें जो कि हमारे लिए हेल्दी हो, है ना, और हमें उससे एनर्जी मिले, ना कि हमारे लिए वो बीमारी का सोर्स बने।
0: बिल्कुल सही बात है। और हमारा तो टॉपिक भी आज ऐसा ही है, यानी कि मिलेट्स और स्वस्थ भारत। तो जब भी ऐसा मौसम अच्छा होता है ना, तो हम यही सोचते हैं कि हमें कुछ अच्छा खाने को मिल जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं फिर हम अपनी हेल्थ को इग्नोर करते हैं। तो अब जब हम मिलेट्स की बात कर रहे हैं, तो पहले हम अपने श्रोताओं को बता देते हैं कि मिलेट्स क्या है। तो मिलेट्स उन मोटे अनाज को हम कहते हैं जिसमें बाजरा, ज्वार, रागी जैसे अन्य जो
1: पारंपरिक
0: पारंपरिक अनाज है वो उसमें शामिल होते हैं। और सबसे खास बात तो ये है कि ऐसा नहीं कि ये आज की चीज़ है, हमारे दादा दादी, हमारे नाना नानी, और जो हमारी पारंपरिक पीढ़ियाँ थी, ये सारी जो पीढ़ियाँ हैं ये बरसों से ही, ये सालों से इन सारी चीज़ों को कंज्यूम करते हुए आ रही है।
1: और
0: इसलिए तुम देखती हो कि उनकी हेल्थ भी जो है कितनी अच्छी अभी तक भी बनी रहती है।
1: तो दोस्तों, यानी हम अगर बात करें मिलेट्स, मिलेट्स वो मोटे अनाज हैं जो हमारे लिए हेल्दी होते हैं, और उनमें न जाने कितने वाइटमिन्स पाए जाते हैं, फाइबर्स पाए जाते हैं, बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं,
0: बिल्कुल
1: प्रोटीन पाया जाता है, जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है,
0: बिल्कुल।
1: जो
0: और जब
1: हमारे
0: भी
1: हेल्दी
0: हम
1: डाइट को बहुत ही ज़्यादा एनहेंस
0: एनहेंस
1: कर
0: कर देता
1: सकते
0: है,
1: हैं।
0: और जब भी हम किसी डाइट को लेने की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला पॉइंट यही आता है कि उससे हमें न्यूट्रिशन कितना मिलेगा। तो न्यूट्रिशन में जैसा कि तुमने बताया है कि अभी प्रोटीन, विटामिन्स, खनिज और फाइबर जैसे जो न्यूट्रिएंट्स हैं इससे हमें मिलते हैं। और तो और रागी को और बाकी सारे और भी जितने जो सोर्सेज हैं उसमें कैल्शियम का सबसे अच्छा सोर्स जो है रागी को माना जाता है।
1: दोस्तों, साथ में अगर हम बात करें तो बाजरा है, ज्वार है, इनमें भी कई सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं।
0: बिल्कुल
1: तो इसलिए दोस्तों, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप खुद को फिजिकली, मेंटली और इमोशनली हेल्दी रखें, ताकि आप अपने काम को अच्छा रख सकें, क्योंकि
0: बिल्कुल
1: हमारी बॉडी भी उस व्हीकल की तरह होती है जो हमें हमारे गंतव्य तक पहुँचाती है। तो अगर
0: बिल्कुल
1: आप
0: हमारे
1: हेल्दी
0: लक्ष्य
1: नहीं
0: तक
1: रहेंगे,
0: पहुंचाती है।
1: बिल्कुल, तो अगर आप अपनी बॉडी को सही फ्यूल नहीं देंगे तो आपके लिए वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगी और
0: बिल्कुल
1: आप अपने टारगेट को शायद अचीव ना कर पाएँ।
0: बिल्कुल सही कहा। और आज तो इतनी ज़्यादा मॉडर्न कुकिंग हो गई कि हमें ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि हम जो है पुराने पारंपरिक तरीकों से ही जो है उन मिलेट्स को कंज्यूम करें। तो इसीलिए आप उनके कुकीज़ बना सकते हैं, उनका मतलब जैसे रागी डोसा होता
1: यानी
0: है,
1: मॉर्निंग कुकिंग कर
0: हाँ
1: सकते हैं आप।
0: मॉडर्न कुकिंग, उसमें आप अप्लाई करके उसका न्यूट्रिशन भरपूर ले सकते हैं, जिससे कि आपकी लाइफस्टाइल भी अच्छी होगी, आपकी हेल्दी ईटिंग हैबिट्स जो है वो डेवलप होंगी, और आपकी फिजिकल, मेंटल और इमोशनल हेल्थ भी अच्छी होगी।
1: बिल्कुल दोस्तों, तो हमारा चर्चा का विषय था आज मिलेट्स के बारे में। हमने बात किया कि हमारे लिए हेल्थ के लिए कितना इम्पोर्टेंट है और आपको इसको कंज्यूम करना चाहिए।
0: बिल्कुल
1: और आपको बता दें कि जैसा कि उन्नति ने शुरू में भी कहा कि हमारा जो प्रोग्राम है वो इन्फोटेनमेंट प्रोग्राम है, तो इस एंटरटेनमेंट वाले प्रोग्राम में हम म्यूज़िक भी आपके लिए प्ले करते हैं।
0: बिल्कुल
1: तो आपको बता दें कि इसलिए हमारा आज का दिन बहुत खास है, क्योंकि दोस्तों आज उस जादूगर का जन्मदिन है जिसके शब्दों से दिल पिघल जाता है। जी हाँ, आज जन्मदिन है मशहूर शायर और गीतकार गुलजार साहब का।
0: बिल्कुल गुलजार साहब का असली नाम संपूर्ण सिंह कालरा है, लेकिन दुनिया उन्हें प्यार से गुलजार

0: सरकार कहती है। उनकी कलम से जादू निकलता है, उनके लिखे अल्फाज सीधे दिल में उतर जाते हैं। फिर वो चाहे बारिश की बूंदें हो या बचपन की यादें, उन्होंने हर एहसास को बहुत खूबसूरती से लिखा है।
1: दोस्तों, उनकी लिखी कुछ लाइनें हैं जैसे, आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें ज़िंदगी बिता लो। तो दोस्तों देखिए, उन्होंने कितनी बड़ी बात कितनी आसानी से कह दी।
0: बिल्कुल। और इसीलिए जैसे उन्होंने जो मूवीज़ बनाई है, जैसे माचिस हो गया, मौसम हो गया, इसीलिए उन्हें पद्म भूषण और दादा साहब फाल्के पुरस्कार जैसे बड़े सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। लेकिन उनका सबसे बड़ा इनाम जो है वो है हमारा प्यार। आज उनके जन्मदिन पर हम सब मिलकर उन्हें सलाम करते हैं। तो आइए एक बार फिर गुलजार साहब की किसी मीठी धुन में खो जाते हैं।

0: उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कैसे करियर बनाएं, और ये है प्रोफेसर विनीता यादव से अभिनव प्रज्ञ पांडे की बातचीत। तो आइए सुनते हैं ये।
1: दोस्तों नमस्कार। हम सभी जानते हैं कि हम जो कुछ भी हैं या हम जो कुछ भी बनते हैं उसमें जो सबसे बड़ा योगदान होता है माता पिता के बाद, या कई बार यूं कह लें कि माता पिता से ज्यादा, वो होता है शिक्षक। शिक्षक अपने आप में एक निर्माता होता है किसी भी व्यक्ति का, किसी भी व्यक्तित्व का। कोई अगर व्यक्ति शिक्षक बनना चाहे, या आप हमारे जितने भी दोस्त इस वक्त हमको सुन रहे हैं, एजुकेशन के फील्ड में जाना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, कैसे शुरुआत करें, कहाँ से शुरू करें, सही तैयारी का तरीका क्या है, और सबसे बड़ी बात, एक शिक्षक बनने के बाद शिक्षक के असल दायित्व क्या हैं, आपकी समाज के प्रति जिम्मेदारी क्या है, ये कैसे तय करें, ये समझ कहाँ से विकसित करें, इन्हीं सब चीज़ों पर हम आज बात करेंगे। और हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आज मौजूद हैं प्रोफेसर विनीता यादव, जो कि रजिस्ट्रार हैं प्रोफेसर रज्जू भैया विश्वविद्यालय की। आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: शिक्षक बनना कितना कठिन है और कितना महत्वपूर्ण है?
2: महत्वपूर्ण तो बहुत है। जो लोग भी इस फील्ड को चुनते हैं वो इस राष्ट्र के निर्माता होते हैं, क्योंकि हमारा शिक्षक ही इस तरह की एजुकेशन या इस तरह की चीज़ें बच्चों के मन में बचपन से डालता है, चाहे वो प्राइमरी का शिक्षक हो, चाहे वो जूनियर का हो, चाहे वो इंटर कॉलेज में हो, चाहे वो महाविद्यालयों में हो। शिक्षक जो सिखाता है माता पिता के पश्चात छात्र छात्राएं उसी की बात मानते हैं। ये शत प्रतिशत सत्य है, और हमारा इतिहास भी इसका गवाह है कि जब एक शिक्षक ने चंद्रगुप्त मौर्य को पैदा किया तो आज का शिक्षक भी सकारात्मक एनर्जी अगर बच्चों को देता है, सकारात्मक वार्ता करता है और उनको सही डायरेक्शन देता है, तो वो छात्र बहुत आगे निकल जाते हैं। और वही शिक्षक कभी कभी कुछ नकारात्मकता जब छात्रों में भर दे तो छात्र विचलित हो जाते हैं और अपने मुख्य लक्ष्य से भटक जाते हैं। तो शिक्षक की भूमिका तो बहुत अहम है।
1: जो भी युवा साथी हमारे इस वक्त आपको हमारे माध्यम से सुन रहे हैं, उनको ये बताएं कि जब स्नातक के बाद अंधेरा सा आ जाता है कि अब हम आगे क्या करें, क्या हम नौकरी के लिए जाएं या फिर उच्च शिक्षा के लिए जाएं, खासकर तब जब उनके पास संसाधन सीमित होते हैं। ऐसे में अगर कोई वास्तव में उच्च शिक्षा की तरफ जाना चाहता है, प्रोफेसर बनना चाहता है, लेक्चरर बनना चाहता है, तो क्या कैसे वो निर्धारित करे?
2: देखिए, स्नातक जब बच्चा करता है तो उसको अपनी स्ट्रीम का पता होता है कि उसने वो स्नातक साइंस विज्ञान स्ट्रीम में किया है कि कला में किया है या वाणिज्य में किया है या एग्रीकल्चर में किया है या उसने टेक्नोलॉजी में किया है। बहुत सारे स्नातक पर लेवल हैं, और आपका लॉ का स्टूडेंट है तो उसको उस वक्त कम से कम स्नातक स्तर पर ये उसका मन पहले से डिसाइड होता है कि इस फील्ड में हमें आगे जाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम साइंस का ही नाम लें कि बच्चे ने साइंस विज्ञान स्ट्रीम में स्नातक किया है तो उसको पता है कि वो मैथ्स ग्रुप का है या बायो ग्रुप का है, यानी कि वो विज्ञान की जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री कॉम्बिनेशन का है या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का है। तो वहाँ उसके मन में एक चीज आएगी कि या तो मुझे उच्च शिक्षा में आगे बढ़ना है, या वो ये सोचेगा कि हम कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव करना चाहते हैं, प्रशासनिक सेवाओं में जाना चाहते हैं। तो प्रशासनिक सेवाओं के लिए जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन ही होती है, स्नातक ही सफिशियंट है। तो उस केस में बच्चा ये डिसाइड करे, और अगर उसको उच्च शिक्षा में ही अपना कैरियर बनाना है तो वो किसी भी एक विषय को चूज करके, जो उसके स्नातक के विषय हैं, बेहतर वही होता है कि उसी में से कोई विषय में वो पोस्ट ग्रेजुएट करे, परा स्नातक करे, और परा स्नातक के साथ ही साथ शुरू से, मतलब एंट्री पॉइंट से ही उसको थॉरोली बहुत गंभीरता से गहराई से पढ़ना पड़ेगा वो विषय, क्योंकि यूजीसी नेट जो आपकी परीक्षाएं हैं और साइंस में सीएसआईआर, ये जो एजेंसी परीक्षाएं कराती है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है या काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की, जो ये परीक्षाएं होती हैं ये हर 6 माह में होती हैं, और 6 माह के बाद बच्चा अपना फर्स्ट और सेकेंड टर्म के बाद ही इसको देने लगता है। तो ऐसा नहीं है कि परास्नातक कंप्लीट हो तब आप तैयारी करें, उसकी तैयारी आप परास्नातक में एंट्री करते वक्त ही शुरू करें, और उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसका सिलेबस दिया हुआ है, जैसे आपका PCS का सिलेबस है, IAS का सिलेबस, इसी तरह UGC का भी सिलेबस अवेलेबल है, तो वहां से आप स्टार्ट करिए। और इतना तय है, मैं लगभग 20 साल उच्च शिक्षा में ही थी तो ये मैं मानती हूँ कि ठीक है बहुत कोचिंग सेंटर्स हैं, पर जो आपका शिक्षक अगर योग्य है,

0: आपका गुरु अगर योग्य है तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। और दूसरी चीज़, बच्चों के अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो खुद से पढ़ना सीखें, क्योंकि सेल्फ स्टडी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। आप सिर्फ गूगल से नहीं पढ़ सकते हैं, आपको अच्छी टेक्स्ट बुक भी पढ़नी पड़ेगी, और अगर कहीं आपको कोई दिक्कत आती है तो आप दूसरे शिक्षकों से भी संपर्क करके, जो आपके रूटीन के शिक्षक नहीं है, आपको कहीं से पता चलता है कि फलाना शिक्षक अच्छा है, तो आप वहां से गाइडेंस ले सकते हैं और इसमें आगे बढ़ सकते हैं।
1: मैम, अभी आपने नेट परीक्षा का नाम लिया, नेट, JRF, PhD, ये शब्द सुने तो सबने हैं, लेकिन जिसको इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, संक्षेप में बताएंगी क्या इसके बारे में कि ये क्या है?
0: देखिए, JRF एक्चुअली जूनियर रिसर्च फेलोशिप है, जो UGC नाम की संस्था है, जो हमारे
1: जी
0: देश की यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उसके थ्रू जो बच्चे JRF क्वालिफाई होते हैं उनको एक स्कॉलरशिप मिलती है PhD के दौरान।
1: जी
0: और PhD एक आपकी डिग्री है, जिसको
1: जी
0: बोलते हैं डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी। जैसे
1: जी
0: आपने एक परास्नातक में एक डिग्री ली है, उसी तरह आप एक डॉक्टरेट कर रहे हैं उसी सब्जेक्ट, उसको बोलते हैं डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी। कहीं कहीं
1: जी
0: इसको DPhil भी कहते हैं PhD को।
1: जी
0: बेसिकली जो एंट्रेंस एग्जाम है UGC का, वो UGC का जो एंट्रेंस है उसमें दो कट ऑफ बनते हैं। जो उनका हाईएस्ट कट ऑफ होता है, मान लीजिए उनको 10,000 बच्चे ऑल ओवर इंडिया में लेने हैं, तो उनको टॉप 2,000, मान लीजिए उनको इस बार JRF, जिनको फॉल मैं आपको कहना चाहिए, जिसको कि इनको फेलोशिप देनी है,
1: जी
0: वो टॉप के 2,000 होंगे। एंड उनको टोटल रिजल्ट में मान लीजिए 10 लाख बच्चे बैठे, बट 10,000 ही उनको क्वालिफाई करना है, तो उस सेंस में वो 10,000 को क्वालिफाई तो कराएंगे, वो 8,000 एलिजिबल फॉर दी डिग्री प्रोग्राम, मतलब डिग्री कॉलेजेस में जाने के लिए, कंपटीशन देने के लिए उनकी एलिजिबिलिटी तो बन जाएगी,
1: जी
0: बट वो फेलोशिप नहीं प्राप्त करेंगे। तो फेलोशिप का जो JRF का वो जो बच्चा सेलेक्ट होता है कि दिस इज फॉर JRF, उसने क्वालिफाई किया, बट नेट क्वालिफाई करने के बाद वो JRF के लिए गया, तो उसका मतलब उसको फेलोशिप मिलेगी
1: जी
0: सरकारी। और अगर वो सिर्फ एलिजिबिलिटी टेस्ट है तो एलिजिबिलिटी एक कट ऑफ पे जाके रुकेगी, तो एलिजिबल फॉर द एंट्रेंस एग्जाम्स, जैसे डिग्री कॉलेज के एग्जाम्स होते हैं, जैसे आपका शिक्षा आयोग है या आपका लोक सेवा आयोग है, जो राजकीय डिग्री कॉलेजेस में जाते हैं। उत्तर प्रदेश के इत्तेफाक से दोनों ही आपके प्रयागराज में मौजूद हैं दोनों संस्थाएं। तो वहां पर जो नेट क्वालिफाइड है,
1: जी
0: UGC की जब एंट्रेंस दिया और ओनली नेट, तो एलिजिबल है, पर वो रिसर्च के लिए फेलोशिप नहीं प्राप्त करेगा। ऐसा नहीं है कि वो रिसर्च नहीं कर सकता, वो
1: जी
0: रिसर्च अपने पैसे से कर सकता है, अगर उसके पास पैसा है वो अपने पैसे
1: फेलोशिप
0: से,
1: नहीं
0: पर
1: मिलेगी।
0: फेलोशिप जो गवर्नमेंट की मिलती है वो सिर्फ JRF को मिलती है। ये दोनों में अंतर है।
1: एक प्रश्न बहुत ज़रूरी आता है मैम, कि जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अपनी रुचि के अनुरूप विषय का चयन कैसे करें। कई बार हमको कई सारे विषय अच्छे लगते हैं, कई बार कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। दूसरा प्रश्न इसमें मैं ये भी जोड़ना चाहूँगा कि जो एक स्किल बेस्ड एजुकेशन है, इसे आप कितना महत्वपूर्ण मानती हैं? क्या केवल डिग्री ही पर्याप्त है? कोई अगर शिक्षक नहीं बन पाया, उसकी बहुत इच्छा थी कि मैं प्रोफेसर बनूंगा, मैं कुछ बनूंगा, क्या अगर वो नहीं बन पाया तो दुनिया खत्म हो जाती है क्या?
0: नहीं, बिल्कुल, दुनिया कभी भी ख़त्म नहीं होती है, दुनिया हमेशा चलती है। और कोई भी छात्र छात्रा अगर किसी हायर एजुकेशन में अपना कैरियर नहीं बना सकता, तो स्किल बेस्ड बहुत सारे प्रोग्राम हैं। आज सरकार ने बहुत सारे प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं, अभी उन्होंने इंटर्नशिप बेस्ड प्रोग्राम भी शुरू किए हैं, जिसमें इंटर्नशिप लगी हुई है, यानी कि आप किसी फील्ड में, किसी फैक्ट्री में, कहीं भी जाके अपनी स्किल को
1: जी
0: आप अपलिफ्ट कर सकते हैं, आप अपनी स्किल बढ़ा सकते हैं। बेसिकली बच्चों के सामने प्रॉब्लम क्या है कि वो चूज़ क्या करें। उनका, जैसे आपने कहा, कि उनका मन ऐसा होता है कि हमें पढ़ना ये और पढ़ कुछ और रहे हैं, तो इस चीज़ को मदद करने के लिए वो अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं, अपने काउंसलर, अपने टीचर से बात कर सकते हैं। पर अपनी चॉइस सबसे सर्वोपरि होती है, कि उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, कोई ना कोई विषय जरूर होगा
1: बिल्कुल
0: ऐसा, कि जिसमें उसका इंटरेस्ट हो। तो कोशिश वही करनी चाहिए कि 12th के बाद ही आप वो स्ट्रीम चुने। ऐसा नहीं हो कि आप MSc MA कर लिया आपने और उसके बाद आप सोच रहे हैं कि अब हमें स्किल्ड इसमें जाना है। तो अगर आप शुरू से वैसा सोचेंगे, आप देखिए बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो 10th और 12th ही कर पाते हैं, वो स्नातक एंड परास्नातक नहीं सोचते, उन्हें पता है कि उनके खानदान में ये काम है, हमारे पास पहले से एक बिजनेस है, तो वो बच्चों को वहीं से लगाते हैं कि आपको इसी में उनको परफेक्ट बनाना है। तो ऐसे बहुत सारे जिनके ऑलरेडी फैमिली में कोई ना कोई बिजनेस है, तो वो बच्चों को ही डिग्री

खाली है कि स्नातक होना है तो आपने एक डिग्री ले ली, वो एक अलग इशू है। स्नातक या परा स्नातक अगर आप हायर लेवल की सिचुएशंस में जाना चाहते हैं जहाँ पे एजुकेशन का बहुत इम्पोर्टेंस है, तो वहाँ पर आप आगे लाइन लेके जाइए अपनी। आपको एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है तो आप 12th के बाद ही डिसाइड करिए कि हमें आगे एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है तो हमारे लिए सोशियोलॉजी अच्छी होगी या केमिस्ट्री अच्छी होगी, वो पहले से सोचना है। क्योंकि आप देखिए 12th के बाद बच्चा सोचता है कि हमको IIT बनना है, डॉक्टर बनना है, ये पहले से बच्चों के माइंड में होता है, पर सबका बैकग्राउंड एक सा नहीं होता।

0: प्रॉब्लम है। वो हमेशा ऐसा होता है कि बच्चे के मन में बहुत सारे भाव आते हैं, पर उस वक्त उसको उन टीचर की ज़रूरत होती है, अपने पेरेंट्स की ज़रूरत होती है, तो वो सलाह ले प्रॉपरली, अपनी चॉइस के लिए अपना टाइम ले और तब डिसाइड करे कि करना क्या है।
1: आज के दौर की अगर बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस या रोबोटिक्स, ये किस तरह से अवसरों को प्रभावित कर रहे हैं?
0: देखिए, दोनों चीज़ें हैं इसमें। मैंने अब भी सोचा इसको कि देखिए, रोबोटिक्स हो या आपका डेटा साइंस हो या एआई हो, आज हम जितना प्रोग्राम इन सब डिसिप्लिन में भी प्रोग्राम ला रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमें बच्चों की स्किल बढ़ानी है। देखिए, पहले कैलकुलेटर नहीं था, लोग खुद ही गुणा भाग करते थे, अपने दिमाग का इस्तेमाल करते थे। एआई ने चीज़ों को इजी किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने चीज़ों को बहुत इजी किया है। अब हमें किसी टीचर की ज़रूरत नहीं, हम 2 से 3 मिनट के अंदर सारे 100 क्वेश्चन बना सकते हैं, ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। बट हर जगह हमें एआई का इस्तेमाल नहीं करना है। हर चीज़ में अगर हम एआई को लगाएंगे तो मनुष्य का दिमाग ही शून्य हो जाएगा। तो इसकी एक लिमिट क्रॉस वाली सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, और हमें लिमिट निर्धारित करनी पड़ेगी इसकी, कि हम कहाँ तक एआई पे डिपेंडेंट हो सकते हैं। अदरवाइज ये होगा एक दिन कि बच्चे जो भी उनको पढ़ना लिखना है वो एआई में ही ढूंढेंगे। आज आप देखिए, मोस्टली स्टूडेंट्स टेक्स्ट बुक नहीं रखते, सब तो गूगल के पास है, एआई के पास है, क्वेश्चन का आंसर वो इसी से ढूंढ रहे हैं।
1: मतलब आप ये कह रही हैं कि ये क्रिएटिविटी खत्म कर सकता है?
0: क्रिएटिविटी खत्म कर रहा है। मैं लगातार इसको देख रही हूँ कि आपकी अपनी माइंड की जो क्रिएटिविटी है वो इस पे पूरा, आप डिपेंडेंट मत होइए। जहाँ जरूरत है उसका जरूर इस्तेमाल करिए, पर पूरी तरह से आप ये मत भूलिए कि आपकी टेबल क्या है, आप प्लस माइनस मत भूलिए। माइंड एक्टिव कब रहेगा आपका? अगर आपने सिर्फ इसी पे डिपेंडेंट हो गए तो धीरे धीरे आपका मस्तिष्क जो है ना, जो उसकी सोचने समझने की शक्ति है, भूलने लगेगा सब, और जब वो भूल जाएगा तो आप किस सेंस के रह जाएंगे?
1: सही बात है।
0: तो इसलिए इन चीजों को समझते हुए, इसका गिरफ्त में ना आए आप बुरी तरह से, बट उसका सही इस्तेमाल करें तो जरूरी भी है। बहुत सी चीजें हैं, आप देखिए एआई का इस्तेमाल आप उस टेक्नोलॉजी में कर सकते हैं, मेडिकल फील्ड में इतना, इसका मतलब क्या बोलूं, इसका असर इतना लाजवाब होगा, बीमारियों के लिए कितना लाजवाब होगा,
1: मेडिकल में, एग्रीकल्चर
0: में, बहुत सारे फील्ड्स में। पर अब आप इसमें क्वेश्चन आंसर ढूंढ रहे हैं, आप इसमें क्वेश्चन बना रहे हैं, क्वेश्चन पेपर आ रहा है,
1: जो आप खुद से भी सोच करके कर सकते हैं काम, वो आप
0: उसमें आप मत करो। इतना इस्तेमाल नहीं होना चाहिए कि आपका दिमाग ही खत्म हो जाए।
1: दो टर्म्स आते हैं, अप्रेंटिसशिप और इंटर्नशिप, इनका क्या महत्व है अगर हम हायर एजुकेशन की बात करें तो?
0: देखिए, हायर एजुकेशन में अभी क्या है कि ये जो आपने दोनों वर्ड्स बोले हैं, अप्रेंटिसशिप एंड आपकी इंटर्नशिप, ये मोस्टली बच्चों को स्किल्ड बनाने के लिए इस्तेमाल हुआ है, कि ऐसी एजुकेशन देनी चाहिए बच्चों को कि अगर उनका फील्ड, जैसे अभी हम प्रशासनिक सेवा या हायर एजुकेशन में कहीं प्रोफेसर बनने की बात कर रहे हैं, अगर बच्चे को उस लेवल तक वो ना पहुँचे तो कम से कम उसके पास एक स्किल्ड बेस्ड प्रोग्राम ऐसा हो। तो हमारे बहुत सारे यूजी प्रोग्राम में इन दोनों चीज़ों को समाहित किया गया है, और ये कंटिन्यूस सरकार, हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस पर प्रयास कर रही हैं कि ऐसे प्रोग्राम्स शुरू किए जाएं जिससे कि बच्चा ग्रेजुएशन के साथ साथ एक स्किल्ड उसके पास हो। तो इत्तेफाक से हमारे विश्वविद्यालय ने ऐसे प्रोग्राम शुरू किए हैं, इसी सत्र से कुछ कॉलेजेस को दिए हैं कि वो इसमें आगे बढ़ें। तो बच्चों को एक स्किल हाथ में होगी तो, जैसे कहते हैं ना, आप देखिए उत्तर प्रदेश में अभी भी बहुत सारी ऐसी बड़ी आबादी है जो ग्रेजुएट तो है बट वो स्किल्ड नहीं है
1: जी।
0: तो उसी की कमी को दूर करने के लिए ऐसे प्रोग्राम्स लाए गए हैं कि वो कुछ सीखें, जैसे कौशल विकास या आप हिंदी में कहिए, सब प्रोग्राम्स लगातार हमारे माननीय लोग इस पर चर्चा करते हैं, और लगातार हम लोगों को भी ऐसे गाइडलाइन दी जाती है कि इस टाइप का प्रोग्राम बच्चों के लिए आप अपने सिलेबस में लगाइए, और इस तरह पूरा, जैसे 6 सेमेस्टर है अगर ग्रेजुएशन में, तो 1 सेमेस्टर या 2 सेमेस्टर तक आपकी इंटर्नशिप चले, जैसे आप किसी जगह जाके उस पर्टिकुलर चीज को सीख पाएं, सिर्फ सिलेबस या थ्योरी ना पढ़े।
1: एक प्रश्न मैम और आता है, शिक्षा महंगी होती जा रही है, क्या जो ग्रामीण युवा हैं या जो छोटे शहरों के युवा हैं या जो आर्थिक रूप से अपेक्षाकृत कमजोर युवा हैं, उनके लिए

0: पर्याप्त अवसर हैं क्या उनकी तुलना में जो आर्थिक रूप से सक्षम है, या इस तरह की कोई
1: अवसर,
0: स्कॉलरशिप
1: हाँ
0: सरकार की तरफ से?
1: स्कॉलरशिप्स हैं, सरकार की बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि स्नातक की पूरी एजुकेशन फ्री है।
0: अच्छा,
1: लोगों को शायद पता नहीं, स्नातक स्तर पर सभी कैटेगरी के बच्चों को 100% सरकार स्कॉलरशिप देती है। आपने एडमिशन लिया और उसके बाद आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो गए स्नातक में, तो कोई ये कहे कि हमें पैसे की वजह से पढ़ने का अवसर नहीं मिल रहा है
0: जी
1: तो ये गलत है, क्योंकि जब सरकार आपको फ्री पढ़ा रही है, आप पता ही है बीएड में जो फीस होती है काफ़ी हायर होती है, सरकार उतना स्कॉलरशिप देती है बच्चे को हर साल, जितना उसका साल भर का फीस है उसको पैसा वापस मिलता है। तो ये ग्रामीण अंचल के बच्चे अगर ये सोच रहे हैं कि पैसा नहीं है, अभाव में नहीं पढ़ रहे, मेरा सिर्फ ये अपील है कि आप एक अच्छा इंस्टीट्यूट ढूंढिए जहाँ पर आपको पढ़ना है, वो महाविद्यालय, वो यूनिवर्सिटी किस लेवल की है, वहाँ शिक्षक कैसे हैं, पहले आप शिक्षकों का चयन करें और ये देखें कि कहाँ वास्तव में पढ़ाई हो रही है, उन महाविद्यालयों को, उन यूनिवर्सिटीज को चुने। आप आए गांव से सिर्फ कोचिंग करने, पर कोचिंग से काम नहीं चलेगा। आप में से 100 युवा में से 2, 4, 6, 10 उसमें से शायद अपनी ही काबिलियत के बूते आगे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने क्या किया है कि अगर कोचिंग में कुछ पढ़ाया गया तो उससे ज्यादा मेहनत उन्होंने अपने घर में की है।
0: बिल्कुल
1: पर स्नातक स्तर पे अगर आप अच्छे शिक्षक वाला अच्छा महाविद्यालय चुनेंगे, अच्छी यूनिवर्सिटी चुनते हैं, तो वहां आपको सारी गाइडेंस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही
0: यहाँ
1: है।
0: पर एक प्रश्न प्रोफेसर विनीता और आता है कि सरकारी महाविद्यालय या प्राइवेट महाविद्यालय, क्या केवल फीस को आधार बनाना ठीक है?
1: नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं खुद राजकीय महाविद्यालय में रही हूँ। मुझे बड़ा इत्तेफाक है कि आज मैं आपके सामने बैठी हूँ और मुझे कहते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है कि हमारे पास पूरे चारों जिले में 700 के करीब महाविद्यालय हैं जिसमें 90% स्ववित्त पोषित हैं, और हमारे कुल 700 में से 25 महाविद्यालय एडेड एंड गवर्नमेंट हैं, और एडेड और गवर्नमेंट में बच्चा जाना नहीं चाहता, जहाँ फीस नहीं है, जहाँ पूरा फ्री है और पूरा शिक्षक अच्छे योग्य विद्वान शिक्षकों से भरा हुआ,
0: जी
1: वहां बच्चा नहीं जा रहा है एडमिशन लेने, बच्चा उन सेल्फ फाइनेंस कॉलेज में जा रहा है।
0: बिल्कुल सही
1: तो
0: बात।
1: ये स्टूडेंट्स को थॉरली सोचना पड़ेगा।
0: एक और समस्या आती है, अगर हम यूथ की बात करें, खासकर अगर ग्रामीण यूथ की बात करें, भाषा की, अंग्रेजी की। क्या अंग्रेजी में उस तरह से निष्णात ना होना, पारंगत ना होना, स्किल्ड होना, ये किसी तरह से आपको कमतर करता है क्या?
1: बिल्कुल नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। आप जो बोले, हिंदी बोले, संस्कृत बोले, कॉन्फिडेंस के साथ बोले।
0: क्या
1: आप
0: बात
1: घबराते क्यों हैं भाई? घबराने की बात ही नहीं है इसमें, आपको कॉन्फिडेंस होना
0: है।
1: चाहिए।
0: लेकिन कई बार मैम ऐसा भी होता है कि मटेरियल आपको उस स्तर का नहीं मिल पाता है जब तक आप अंग्रेजी में नहीं जाते हैं, ये समस्या आती है।
1: ऐसा तो हमने तो नहीं देखा। मैं साइंस की विद्यार्थी थी, हमने हिंदी में भी पढ़ी है साइंस और इंग्लिश में भी पढ़ी। पहले हिंदी में पढ़ते थे, बाद में इंग्लिश में भी चेंज किया। आपको अगर ये लगता है कि कुछ किताबें हमको हिंदी में अवेलेबल नहीं होंगी और इंग्लिश में अच्छी बुक्स हैं, तो आपको मात्र 1 महीना मेहनत करनी है, आप अपने आप को चेंज कर लीजिए। पर सीरियसली इसके बारे में सोचेंगे तब कर पाएंगे ना।
0: बिल्कुल
1: ऐसा तो है नहीं कि आप अगर एक स्नातक या परास्नातक के विद्यार्थी हैं तो आपके पास इतना माइंड है ना कि आप हिंदी से इंग्लिश की ओर जा सकते हैं ना, तो आप अपने आप को चेंज करिए। फिर टीचर नहीं चेंज करेगा, आपको खुद के अंदर इच्छा शक्ति होगी तो आप कुछ भी कर सकते हो।
0: इच्छा शक्ति की बात आई मैम, तो एक प्रश्न और भी आता है कि जब आप उच्च शिक्षा के दौरान, कई बार ऐसा होता है कि आप पर अलग अलग दबाव होते हैं, रिश्तेदारों के होते हैं, घर वालों का होता है, दबाव नहीं भी होते हैं तो वो कुछ एक साइलेंट अपेक्षाएं होती हैं, एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि अब तो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति या ये लड़का या ये लड़की परिवार संभालेगा। उस समय जो आपकी डिग्री की पढ़ाई है और जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की पढ़ाई है, उसके बीच में संतुलन कैसे स्थापित करें?
1: देखिए, फिर मैं दो चार अगर आपको एग्जाम्पल दूँ
0: जी
1: तो आपके पीसीएस टॉपर्स में जो लड़कियाँ निकली,
0: जी
1: पता चला उनके दो बच्चे भी थे, फैमिली को भी संभाला और पीसीएस भी क्वालिफाई किया, तो वो तो टफ है ना,
0: बिल्कुल
1: कितना टफ है। तो ये क्वेश्चन संतुलन सिर्फ माइंड को सकारात्मक ऊर्जा के साथ आप फिल करें, अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस रखें, तो आप कुछ भी बैलेंस कर सकते हैं, असंतुलन का प्रश्न नहीं होता फिर, क्योंकि आपको लोग कंफ्यूज कर रहे हैं और आप कंफ्यूज

0: हो रहे हैं,
1: इच्छा शक्ति होनी चाहिए।
0: आपकी दिमाग की स्थिरता आपके ऊपर निर्भर करती है। आप अगली की बातों से कितना कन्विंस हो रहे हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। पर ये एक दिन की बात नहीं है, जो हमारा युवा है अभी टीनेजर से यंग की ओर जा रहा है वो बहुत जल्दी भटक जा रहा है, लोगों की बातों में आ जाता है। इवन ये हालत है कि चार लोग इस कोचिंग में जा रहे हैं और वो किसी और में जा रहा है तो उसको खींच के उधर ले जाएंगे, क्योंकि वो क्या है उसको पता नहीं कि अगले का सजेशन सही है कि गलत है, क्योंकि वो माइंड से स्थिर नहीं कर पाया अपने को, सोच नहीं पा रहा है। तो यहीं पे असमंजस की स्थिति में ही उल्टे सीधे निर्णय कर लेते हैं बच्चे। बट ये मेरा ये है कि अगर आपकी इच्छा शक्ति सही है, सही डायरेक्शन में आप सोच रहे हैं, तो 100% आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा ही होगा।
1: अभी हाल ही में नई शिक्षा नीति आई, इसने उच्च शिक्षा में करियर को युवाओं के लिए किस तरह से प्रभावित किया, आप इसे कैसे देखती हैं?
0: देखिए, अगर हम पर्सनली इसकी बात करें तो साल में दो परीक्षाएं बच्चों पर दबाव डाल रही हैं। दबाव इसलिए डाल रही हैं कि एक एग्जाम के लिए हमारे पास 90 देने पढ़ने के लिए, सिलेबस अच्छा खासा है, तो बच्चा उसको बहुत प्रॉपरली अभी पकड़ नहीं पाया। 3 से 4-5 साल हो गए इसको लागू हुए, नई शिक्षा नीति 2020 में आई, बट ये अभी भी मैं देख रही हूँ कि बच्चे इसको प्रॉपरली समझ नहीं पा रहे। देखिए, जो प्रोफेशनल कोर्सेज के बच्चे थे, जो IITs में गए, जो मेडिकल में गए, वो मेडिकल में देखिए साल में एक ही परीक्षा होती है, बीच में नहीं होती, थोड़ी बहुत छोटी मोटी होती हैं, पर मेन परीक्षा एक ही होती है साल में, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर भी अगर उस सिलेबस को बहुत शॉर्ट किया जाए कि 90 दिन के हिसाब से सिलेबस हो तो बच्चा अच्छे से उसको समझ पाए, क्योंकि साल में दो बार आप एग्जाम दे रहे हो तो ये प्रेशर तो है ही, और दोनों का परसेंटेज और CGPA SGPA जुड़ने वाला है। तो नई शिक्षा नीति कुछ मायनों में बहुत अच्छी है, क्योंकि अब हम इंटरनेशनली अपने बच्चों को कहीं भी एक्सचेंज प्रोग्राम में भेज सकते हैं, बच्चे हायर स्टडीज में बाहर जा सकते हैं, और काफी अच्छे बच्चे, मतलब 20 से 25% बच्चा हमारा बहुत ही तेज है। बट ये बहुत सारी अभी भी ऐसी आबादी है जो हम 50 से 60% बच्चों को अभी ऐसा मान रहे हैं जो इसको समझ नहीं पाए हैं, और वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इसको कैसे इसमें आगे बढ़े, क्योंकि कंफ्यूजन है एकदम, क्योंकि इसमें क्या है, मल्टी डिसिप्लिनरी लेटरल एंट्रीज, बहुत सारी चीजें हैं जो बच्चों को पता ही नहीं उसके बारे में। हम लोग नॉन स्टॉप बच्चों को यही समझाते रहते हैं, हमारे पास एज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हूं मैं, बट कि मैं कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन भी हूं, तो मेरे पास बच्चे रिजल्ट ही लेके आते हैं, उनको रिजल्ट ही नहीं पता कि रिजल्ट में है क्या, बहुत सारी समस्याएं हैं छोटी छोटी। तो मैं बच्चों की कमी नहीं मानती, बच्चे सही जगह पहुंच के उसका आंसर नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, भटक रहे हैं। जिन कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं वो कॉलेज वाले उनको प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाते चीज़ों को, कि आपको करना क्या है, आपको पढ़ना क्या है, आपके इस रिजल्ट का मतलब क्या है, वो चीज़ों को समझाने के लिए पहले गुरुओं को ट्रेंड होना पड़ेगा।
1: बिल्कुल, समय हमारे पास लगभग खत्म होने को है प्रोफेसर। अंत में छोटे छोटे दो प्रश्न, और पहला ये कि हम बात कर रहे हैं नौकरी प्राप्त करने की, आपको क्या लगता है, आपने जेन ज़ीज़ की बात की, आज क्या वो समय आ गया है कि हमको नौकरी पाने के बजाय नौकरी देने वाला बनने के बारे में सोचना होगा?
0: बिल्कुल बिल्कुल, स्किल्ड बेस की जो बात हो रही है, अगर हम स्किल्ड बेस कोर्स करेंगे, बच्चा छोटी सी बेकरी खोलेगा तो उसमें 25 लोगों को नौकरी देगा।
1: बिल्कुल,
0: तो अब स्वरोजगार का तो जरूरत है, क्योंकि हमारी आबादी बहुत बड़ी है और हमारे पास सरकारी नौकरियों की एक लिमिट है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि स्वरोजगार की ओर बच्चे जाएं, और इसीलिए स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स की शुरुआत उसी सेंस में हुई भी है।
1: एक सफल करियर के लिए डिग्री, कौशल, अनुभव या फिर पर्सनालिटी, इनमें से आप किसे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानती हैं, और अपने आप को प्रदर्शित करने की क्षमता है जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल है, कितना महत्वपूर्ण?
0: कम्युनिकेशन स्किल तो बहुत अच्छी होनी ही चाहिए, अनुभव भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, कौशल तो आपको इसमें परफेक्शन चाहिए ही चाहिए। डिग्री मेरे हिसाब से पैसा कमाने के लिए उतना मायने नहीं रखती जितना कि ये सब चीज़ें मायने रखती हैं। डिग्री की एक अलग इम्पोर्टेंस है, आपको कहा जाएगा कि आप ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, पर आज का जो दौर है इसमें आपको बाकी चीज़ों में भी बराबर स्मार्ट बनना पड़ेगा, तभी आप सफल होंगे।
1: जिस शैक्षिक विवेक की हम बात करते थे पहले, ऐसा कहा जाता था कि पुराने समय में जो शिक्षक होते थे, अभी भी हैं, वो एक तरह से बच्चे को न सिर्फ शिक्षा प्रदान करते थे बल्कि उसके लिए एक अम्ब्रेला का काम करते थे।
0: जी
1: वो हर उस क्षण में उस

0: के साथ होते थे, जब वो परेशान होता था, उनको पता होता था कि कब इसको हमारी ज़रूरत है। तो आपने बहुत ही अच्छी बातें बताई हैं। तो मैं चलते चलते अगर हमसे कुछ पूछना बचा रह गया हो, या आप हमारे माध्यम से हमारे जो युवा साथी हैं उनको कुछ संदेश देना चाहें या कुछ अपील करना चाहें।
1: युवा साथियों को मेरा बस यही है कि अपनी एनर्जी को संजो कर रखें और सकारात्मक ऊर्जा से भर कर अपने कैरियर को डिसाइड करें। आपको कोई नहीं हरा सकता, आप बहुत एनर्जेटिक हैं, बहुत ऊर्जा से भरपूर हैं। तो बस अपनी ऊर्जा की दिशा को सही रखें, सकारात्मक रखें। निगेटिविटी, नकारात्मकता का लाइफ में कोई स्थान नहीं होना चाहिए।
0: बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और बहुत ही सकारात्मक बातें आपने की प्रोफेसर विनीता यादव। तो दोस्तों, ये थी प्रोफेसर विनीता यादव, और जैसा कि उन्होंने कहा कि आपके अंदर जो ऊर्जा है उसको संजो कर रखें और सकारात्मक रूप से प्रयोग करें। और जैसा कि दिनकर साहब ने कहा था कि खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है।
1: बिल्कुल
0: आपके अंदर वो ऊर्जा है, आपके अंदर वो शक्ति है, उसको संजो कर रखें और सकारात्मक रूप से प्रयोग करें। अभी हम बात कर रहे थे उच्च शिक्षा में कैसे युवा बनाएं अपना करियर, और इस पर हमें जानकारी दे रही थी प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय की रजिस्ट्रार प्रोफेसर विनीता यादव। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगली बार फिर किसी हस्ती के साथ आपकी सेवा में आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मुझे
1: धन्यवाद
0: यानी अभिनव
1: धन्यवाद।
0: प्रज्ञ पांडे को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
2: तो दोस्तों, अभी हमने सुनी बातचीत। बातचीत का विषय था उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कैसे बनाएं करियर, और बातचीत थी अभिनव प्रज्ञ पांडे की प्रोफेसर विनीता यादव से। दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं और हम सुनते हैं एक संदेश।
3: हेलो
4: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
3: फिर से
4: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
5: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
3: सर इतने कहाँ से?
5: एक लिंक भेजा है अभी प्रोसेसिंग के लिए।
4: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
3: 2 लाख
6: क्या हुआ पापा?
3: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
4: अरे
3: काट दिया।
6: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
3: फ्रॉड?
6: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
3: तो पैसे गवाओगे।
7: RBI कहता है,
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
9: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: वेलकम बैक दोस्तों, अब अपने अगले सेगमेंट में हम बात करेंगे हमारे आज के प्रेरणा पुंज, जो कि है मराठा शासक बाजीराव प्रथम।
10: दोस्तों, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही दुनिया दुश्मनों के घोड़ों की टापें कांपने लगती थी। एक ऐसा योद्धा जिसने अपनी ज़िंदगी में महज 40 साल बिताए, लेकिन 400 साल आगे तक का इतिहास लिख दिया।
2: चीते की चाल, बाज की नज़र और पेशवा बाजीराव की तलवार, कभी हार न मानने का जिगर। दोस्तों, आज भारत के सबसे खूंखार और अजय रणनीतिकार यानी श्रीमंत पेशा राव बाजीराव प्रथम की जयंती है।
10: दोस्तों, उनका सबसे बड़ा सपना था हिंदवी स्वराज्य। छत्रपति शिवाजी महाराज के उस सपने को पूरे भारत तक फैलाने का बेड़ा बाजीराव ने उठाया था। उनका नारक था अटक से कटक तक, यानी पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक मराठा परचम लहराना।
2: और उन्होंने मालवा जीता, गुजरात जीता, बुंदेलखंड में अंग्रेजों और मुगलों के छक्के छुड़ाए और दिल्ली के तख्त तक थर्रा थर्रा रख दिया।
10: दोस्तों, उनके मिलिट्री स्ट्रेटजी यानी युद्ध की रणनीति को आज भी दुनिया भर की बड़ी बड़ी सेनाओं और डिफेंस एकेडमीज में पढ़ाया जाता है। दुश्मन को सोचने का मौका तक नहीं मिलता था कि वार किधर से हुआ है।
2: बिल्कुल, और सिर्फ जंग के मैदान तक ही सीमित नहीं थे वो। बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल पर जब संकट आया तो भोजन की थाली वो वही छोड़कर सिर्फ चंद सैनिकों के साथ घोड़ा दौड़ा दिया गया था।
10: तो दोस्तों, ये तो रहे हमारे आज के प्रेरणा पुंज, और हमारा आज का प्रोग्राम आप

0: को कैसा लगा, आप हमें फीडबैक दे सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पर जो
1: जो
0: कि
1: कि
0: है
1: है yuvvanialdi@gmail.com। और आप अपने फीडबैक्स और अपने सजेशंस हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 8004926250 पर।
0: तो दोस्तों अब वक्त हो गया है कि हम आपसे विदा लें, लेकिन उससे पहले हम आपसे उम्मीद करेंगे कि जैसे हम इंतज़ार करते हैं हर शाम का कि हम आपके लिए प्रोग्राम लेकर आएं और आपको एंटरटेनमेंट प्रोग्राम दे सकें, वैसे ही हम उम्मीद करते हैं कि आप भी हमें सुनने के लिए बेताब रहते होंगे।
1: बिल्कुल। और हमें उम्मीद है कि आपको हमारी जो आज की इन्फॉर्मेशन है, जो हमारी आज की चर्चा है, उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और आप काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं, जो भी हमने आपको मिलेट्स के बारे में बताया, जो बाजीराव के बारे में बताया, आप उससे अपनी लाइफ में ज़रूर डालेंगे। तो इसी के साथ मुझे यानी उन्नति
0: और मुझे यानी साक्षी को
1: दीजिए इजाज़त।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: युवा श्रोता सुन रहे थे अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए समाचार जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों का 12वां सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में सदस्य देशों के मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों ने पर्यावरण सहयोग को मजबूत करने के उपायों पर विचार विमर्श किया। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सम्मेलन की अध्यक्षता की। भारत के ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 का विषय है समायोजन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। बैठक में श्री यादव ने मानवता को प्राथमिकता देते हुए एक सतत पृथ्वी के निर्माण की दिशा में नीति, प्रौद्योगिकी और जनभागीदारी को समन्वित करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2005 और 2022 के बीच भारत में प्रदूषण उत्सर्जन में 37% से अधिक की कमी आई है। श्री यादव ने कहा कि अध्यक्ष के रूप में भारत एक खुले, रचनात्मक और सर्वसम्मति आधारित संवाद को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और सभी सदस्य देशों के दृष्टिकोण और योगदान को महत्व देता है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए प्रदेश प्रभारी नियुक्त किए हैं। विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी और जगदीश ईश्वर भाई पटेल को सह प्रभारी बनाया गया है। डॉक्टर सतीश पूनिया को पंजाब का प्रभारी और तरुण चुग को गुजरात का प्रभारी नियुक्त किया गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों पर विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक को लेकर वोट बैंक की राजनीति के लिए गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया है। एक निजी समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि विपक्ष ने बहुत झूठ फैलाया है और इस तरह की झूठी बातें फैलाकर राजनीति करना गलत है।
2: पूरा झूठ फैलाया देश भर में है कि FCRA जो है क्रिश्चियन मिशनरी को टारगेट किया जा रहा है, जबकि क्रिश्चियन मिशनरी का टोटल इंडिया का जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन आते हैं वो 16% है, बाकी तो सब हिंदू का है। तो प्रोटेस्ट ज्यादा करना है तो हिंदू लोग करना चाहिए क्योंकि सबसे ज्यादा तो हिंदू का है। देखिए, इस तरह का झूठे बातें फैला करके राजनीति करना बिल्कुल ठीक नहीं है।
1: श्री रिजिजू ने कहा कि विधेयक विदेशी धन प्रवाह में पारदर्शिता लाएगा। उन्होंने कहा कि विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजना सही निर्णय है। हरियाणा पुलिस ने अंतर्राज्यीय बाल तस्कर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस गिरोह के सरगना पंजाब के मुक्तसर निवासी परगट सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार अब तक मिली जानकारी के आधार पर गिरोह ने देशभर में करीब 50 शिशुओं को बेचा है। इसका नेटवर्क पंजाब से महाराष्ट्र, गुजरात और सिलीगुड़ी समेत 10 से अधिक राज्यों तक फैला हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और शिशुओं के जैविक माता पिता का पता लगाने का भी प्रयास किया।

0: जा रहा है। झारखंड में गुमला जिले के डुमरी थाना क्षेत्र में पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन जनमुक्ति परिषद JJMP के 4 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। इनमें 5,00,000 रुपए का इनामी सब जोनल कमांडर रामदेव लोहरा भी शामिल है। पुलिस महानिरीक्षक अभियान नरेंद्र सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से एक AK-56, एक SLR, एक सेमी ऑटोमेटिक राइफल, 146 जिंदा कारतूस, एक वॉकी टॉकी, 8 मोबाइल फोन, एक वाईफाई डोंगल और नक्सली पर्चे बरामद किए गए हैं। केरलम में विजयनगरम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री बंदरगाह पर आज से सीधा निर्यात और आयात परिचालन शुरू हो गया है, जो इस क्षेत्र के समुद्री व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मुख्यमंत्री VD सतीशन ने विजयनगरम से यूरोप के लिए पहले जहाज को 2 कंटेनरों के साथ रवाना किया। महाराष्ट्र में विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत मतदाता गणना प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि कल समाप्त हो गई। इसके साथ ही राज्य में करीब 21.16% मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने की आशंका है। नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में उन्नति हुडा महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में पहुंच गई हैं। उन्नति ने म्यांमार की थेत हतार थुजार को हराया। महिला डबल्स में सिमरन सिंह और कविप्रिया सेल्वम, वहीं मिक्स डबल्स में आशीष सूर्या और अमृता प्रमुदेश तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गड्डे की जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा। भारत ने श्रीलंका को गोल में पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में जीत के लिए 372 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में श्रीलंका ने चौथे दिन ताजा समाचार मिलने तक 4 विकेट पर 79 रन बना लिए हैं। इससे पहले आज भारत की दूसरी पारी 193 रन पर सिमट गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए आज के शेष और कल के कार्यक्रमों का विवरण। पहले सुनिए आज के शेष कार्यक्रमों का विवरण। रात 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम खेल दर्पण। ये कार्यक्रम हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। शाम 6:30 बजे पंचायत घर कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सुनेंगे कमलेश कुमार यादव और साथियों से लोकगीत और डॉक्टर मनोज कुमार सिंह से अरविंद कुमार की बातचीत जैविक और प्राकृतिक खेती। 6:50 पर सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाड़ी लखनऊ केंद्र से। 7:31 पर संस्कृत कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे आरुणेय मिश्र की वार्ता लोक मंगलस्य महाकवि गोस्वामी तुलसीदास। 7:45 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगी श्रेया श्रीवास्तव। रात 8:30 सबरस। 9:30 पर सुनिएगा गजलों पर आधारित कार्यक्रम कहकशा। 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में पंडित नारायण राव व्यास का ख्याल गायन सुनिएगा। ये थी आज के शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा।

अब एक नजर कल के कार्यक्रमों पर। कल सुबह 6:35 पर कृषि जगत कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे अनु नेहवाल से चंद्रजीत यादव की बातचीत। विषय होगा प्राकृतिक खेती द्वारा उत्पादन कैसे बढ़ाएं। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत 6:45 पर डॉक्टर गुलाब सोनी की वार्ता होगी। पेरिफेरल न्यूरोपैथी एक जानकारी। कल सुबह 7:00 आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा सुबह 7:30 पर प्रियंका मलिक का उपशास्त्रीय गायन और दिन में 12:15 पर रात 10:30 पर प्रियंका मलिक का ख्याल गायन। सुबह 8:45 पर नमस्कार प्रयागराज, प्रस्तुति अभय कांत तिवारी की। सुगम संगीत के कार्यक्रम में कल आप सुनेंगे 9:50 पर अरुण गुलवाड़ी के स्वर में भजन। 10:05 पर वॉइस ऑफ प्रयागराज, प्रस्तुति अभय कांत तिवारी की। 12:30 पर

सुनिएगा हेलो फरमाइश, प्रस्तुति मधु कुमार की। 10:30 पर रायचंद्रपाल और साथियों से लोकगीत सुनिएगा। कल दिन में 1:15 पर गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में बहनें सुनेंगी हैंडमेड राखी, मेरा हुनर मेरा व्यवसाय। साथ ही गृहलक्ष्मी टिप्स में जानेंगी बारिश में मक्खी मच्छर से बचाव के घरेलू उपाय। 2:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। कल शाम 5:15 युवाणी कार्यक्रम में युवा श्रोता सुनेंगे विवेक सिंह की वार्ता, फोटोग्राफी एक शौक एक जुनून एक करियर आखिर क्या। 6:30 पर पंचायत घर कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सुनेंगे रायचंद्रपाल और साथियों से लोकगीत और प्रोफेसर मिथिलेश त्रिपाठी से नीति वचन। 7:31 पर सुनिएगा किस्सा गोई, स्वर नेहा गुप्ता और वंदना राठौर का। कल रात 8:30 सबरस, 10:00 फिल्म संगीत। ये थी कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। श्रोताओं, अब हम आपको खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना दे दें। श्रीमती छठी कुमारी, निवासी मालियन टोला, थाना कोतवाली, जनपद इटावा, उत्तर प्रदेश, सूचित करती हैं कि इनकी छोटी बहन सुमित्री, पुत्री मुकेश राम, उम्र 10 वर्ष, रंग गेहुआ, लंबाई 3.5 फीट, चेहरा गोल, आंखें सामान्य और बाल काले हैं। ये 4 मई 2025 से रात 11:30 बजे से मलियन टोला थाना कोतवाली जनपद इटावा से लापता हैं। लापता होने के दिन इन्होंने पीली टी शर्ट व लाल पैजामा पहन रखा था। इनसे संबंधित कोई भी सूचना मिलने पर कृपया इस नंबर पर संपर्क करें 9997449568। नंबर एक बार फिर से सुन लें 9997449568। एक और सूचना सुनिए। मेहताब अली पुत्र मेबिन अली, सूचित करते हैं कि इनकी पत्नी रिया बानो, उम्र 24 वर्ष, लंबाई 4.5 फीट, एक अहरा बदन, नाक कान कद औसत, रंग गोरा, ये 10 मई 2026 से ग्राम रायगढ़ थाना पट्टी प्रतापगढ़ से लापता हैं। लापता होने के दिन इन्होंने लाल रंग का सूट, पैर में चप्पल पहन रखा था। इनके साथ इनके घर से 50,000 नगद और जेवरात भी लापता हैं। इनसे संबंधित कोई भी सूचना मिलने पर कृपया इस नंबर पर संपर्क करें 9838810789। नंबर एक बार फिर से सुन लें 9838810789। सूचना समाप्त हुई।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, एक सूचना सुनिए। गुरुवार दिनांक 20 अगस्त 2026 को प्रसारित होने वाले सजीव हेलो पनघट कार्यक्रम में महिलाओं के कानूनी अधिकार विषय पर आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए स्टूडियो में उपस्थित होंगी एडवोकेट नाजिया नफीस। आप अपने प्रश्न दोपहर 1:15 से 2 बजे तक फोन नंबर 0532 2

9970462 और 0532-242-3649 पर पूछ सकते हैं। नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए, 0532-2970468 और 0532-242-3649। आप अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 8004926250 पर भी भेज सकते हैं। सूचना समाप्त हुई।

श्रोताओं, आप हमारे कार्यक्रम मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर और न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। लीजिए सुनिए देश गान।

0: अभी आप सुन रहे थे देशगान, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए संस्कृत में समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: इयम् आकाशवाणी, सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचिका निधिः झाः। आदौ मुख्याः वार्ताः। अद्य नवदेहल्यां समनुष्ठिते द्वादश

पर और FM 100.3 MHz पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। श्रोताओं, हमारा प्रोग्राम आप न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। ग्रामीण भाई सुने अपना पसंदीदा कार्यक्रम पंचायत घर।

पंचो राम राम। किसान भैया, अरे देखा ऐ समय भैया, देखा बरसात के समय बाटे और भैया देखा हम कहीं अपन खेत की मेड़बंदी जरूर कर लें भैया। कैसे अगर जर को तेज़ बारिश भय भैया, तो भैया खेत में पानी के साथ साथ जो आपके जो खाद डाले बाटा वह बह जाए भैया, और साथ साथ जो खेत के जो उत्पादन क्षमता वाली जो मिट्टी बाटे वह बह जाए। तो हम कही भैया देखा समय से अपन मेड़बंदी कर लें ताकि जो है खेत के पानी खेते में रहे भैया और खाद पानी भी खेते में रहे। साथ ही साथ भैया देखा सरकार समय समय पर तमाम तरह की योजना चलावा थी। ऐसा एक योजना बाटे नमो द्रोण दीदी योजना। ये सरकार की योजना जो है ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनावे और कृषि में नई तकनीक को बढ़ावा दे खातिर ये केंद्रीय योजना बाटे। इसके तहत भैया देश भर में 15,000 महिलाएं स्वयं सहायता समूह SHG को खेती में छिड़काव के लिए सब्सिडी पर ड्रोन दिए जाते हैं। इसके भैया मुख्य लाभ और विशेषताएँ बाटे वित्तीय सहायता। ड्रोन की कुल कीमत का 80% या अधिकतम 8 लाख रुपए तक की सब्सिडी महिलाओं को दी जाती भैया, और कम ब्याज पर लोन। शेष राशि के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड AIF से 3% की रियायत दर पर ऋण सुविधा मिलती है। और साथ में भैया निःशुल्क प्रशिक्षण भी जो है महिलाओं को ड्रोन उड़ावे और कृषि कार्यों के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। अतिरिक्त आमदनी भैया महिलाएँ जो हैं किसानों को किराए पर ड्रोन से नैनो यूरिया और कीटनाशकों का छिड़काव करने के लिए सालाना कम से कम 1 लाख रुपए तक की आर्थिक राशि जो है कमाई कर सकते हैं भैया। भैया देखा बात बतकई तो होत रही मुला अपन पंचायती में का बा आवाज़ जान लीन जाए भैया। तो भैया देखा आज जो है एक तो बातचीत बाटे जैविक और प्राकृतिक खेती, डॉक्टर मनोज कुमार सिंह से अरविंद उपाध्याय की बातचीत बाटे सुना जाए। मुला भैया देखा परम्परा बाटे अपन पंचायती में ढोलक मंजीरा कुछ बाज जाए। तो भैया देखा एक ठो गीत बाटे कमलेश कुमार यादव और साथी के, एक ठो विकास गीत बाटे हमके तू सुना हमो सुनिए।

0: हाँ भैया देखा, लोक गीत सुनेगा कमलेश कुमार यादव और साथी के, बड़ा निक रहा भैया। अब ये देखा बातचीत तो होत रही, बोला देखा एक बातचीत भी बाटे, जैविक और प्राकृतिक खेती, डॉक्टर मनोज कुमार सिंह से अरविंद उपाध्याय की बातचीत बाटे। हम कहीं तू सुना किसान भैया सुने।
1: किसान भैया, आज के युग में भागम दौड़ वाली दुनिया चल रही बाटे। डिब्बा बंद खाना के देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। माई बाबू कामकाजी हैं तो चाहे ग्रामीण क्षेत्र में चाहे शहरी क्षेत्र में, लेकिन यही बीच में प्राकृतिक खेती और जैविक खेती का भी युग बहुत तेजी से चल रहा बाटे। आज अधिकांश लोग, चाहे जौन भी कारण हो, अधिकांश किसान भाई और ज़्यादा से ज़्यादा ओकर उपयोग करे वाले भैया, उपभोग करे वाले भैया लोग, उनका संख्या बढ़ रही बाटे। तो प्राकृतिक खेती और जैविक खेती का है, एक एक कैसे समझा जाए और कैसे ये खेती में हमारे सभी आगे बढ़ा जाए, इस सबकर जानकारी देवे के खातिर आज अपने बीच में डॉक्टर मनोज कुमार सिंह जी, मृदा वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र कौशाम्बी से पधारे हैं। आपका स्वागत है भैया। सबसे पहले तो हम किसान भाई आपसे ही जानना चाहे कि भारत जौन है बहुत बड़ी आबादी वाला एक देश है, रासायनिक उर्वरक खाद का प्रयोग करके अधिक से अधिक अंधाधुंध पैदावार लीन जात है, तो हमारे सभी अब ये समय पर आए के प्राकृतिक खेती और जैविक खेती का कैसे उपयोग उपभोग किए जाए कि हमारे सभी के जनसंख्या के भरपूर खाद्यान्न भी मिल जाए और 4 पैसा हाथ में भी मिले, बताओ भैया।
2: देखिए, हरित क्रांति के पहले जब हमारे देश में अनाज के पर्याप्त भंडार नहीं थे, तब हमारी आपकी आवश्यकता थी कि रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करके हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लें, और वो मुकाम हमने हासिल कर लिया है किसान भाइयों की सहायता से। लेकिन उसके साथ ही साथ जो रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध प्रयोग शुरू हुआ, उसकी वजह से हमारी जो माटी है, हमारी जो मृदा है, उसका स्वास्थ्य धीरे धीरे खराब होने लगा।
1: जी
2: और इसके साथ ही साथ जब हम उसमें उत्पादित अनाज फल सब्जियों का सेवन करते हैं, तो मानव का स्वास्थ्य भी धीरे धीरे खराब होने लगा। इसलिए देखिए, आवश्यकता ये है कि हमको अपनी माटी का स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए, शरीर का सेहत अच्छी रखने के लिए प्राकृतिक और जैविक खेती को अपनाने की आवश्यकता आ गई है। क्योंकि जो हम रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग लगातार कर रहे हैं, उसकी वजह से हमारी जो मिट्टी है, उसमें जो सूक्ष्म जीवाणु हैं, वो धीरे धीरे हमारी मिट्टी से गायब हो रहे हैं। और उन सूक्ष्म जीवाणुओं की अनुपलब्धता के कारण हमारा जो भी उत्पाद निकलता है, वो पोषक तत्वों से विहीन हो रहा है, यानी उसमें कोई पोषक तत्व नहीं है। उत्पादन तो हम ज्यादा ले रहे हैं, लेकिन पोषक तत्व उसमें नहीं है, जिसकी वजह से मिट्टी का स्वास्थ्य और शरीर का स्वास्थ्य दोनों खराब हो रहा है। इसलिए प्राकृतिक खेती को अपनाने की आवश्यकता है।
1: अब एक दूसर बात आवत है कि जैसे देखा जाता है कि हरित क्रांति के बाद से, कमोबेश 5 दशक के बाद से भी हमारे सभी रासायनिक खाद का प्रयोग किया जाता है, तो आप बतावें कि क्या प्राकृतिक उर्वरक जोन है एक हमारे सभी प्रयोग में लिया है कि प्राकृतिक खेती के उपयोग में लिया।

0: हमारे सभी रासायनिक खाद का प्रयोग किया जाता है। तो आप बतावे कि क्या प्राकृतिक उर्वरक जोन है इके हमारे सभी प्रयोग में लिया आए के प्राकृतिक खेती के उपयोग में लिया आए के जैविक खेती के उपयोग में लिया के का जितना पैदावार आवश्यकता है जनसंख्या के ओके हमारे सभी पूरा किया जा सकत है।
1: देखिए, प्राकृतिक खेती और जैविक खेती को यदि हम अपनाते हैं तो पहली वर्ष और दूसरे वर्ष हमारा उत्पादन प्रभावित हो सकता है, लेकिन हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा होगा और उसमें जो भी उत्पाद होगा वो पोषक तत्वों से परिपूर्ण होगा। और जब पोषक तत्वों से परिपूर्ण होगा तो जो भी हमारा उत्पाद है वो उसकी MSP या उसका बाजार मूल्य हमको ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि आज हमारे जो जागरूक लोग हैं वो जान गए हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो भी उत्पाद हो रहा है उसमें गुणवत्ता ज़्यादा है, न कि उसका अगर हम सेवन करते हैं गुणवत्ता युक्त भोजन का तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो इसलिए प्राकृतिक खेती और जैविक खेती बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है, और हम उत्पादन के क्षेत्र में भी धीरे धीरे अगर हम लगातार प्रयोग कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उस मुकाम को भी हम हासिल कर सकते हैं, उसमें कोई देर नहीं है।
0: जी डॉक्टर साहब, एक सामान्य कृषक के समझे के खातिर ये जरूरी है कि आपसे हमारे सभी ये जाना जाए कि प्राकृतिक खेती या जैविक खेती का अवयव क्या काम है।
1: देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्राकृतिक खेती से तात्पर्य यह है कि अगर हमारे पास एक देशी गाय है तो हम उस देशी गाय के गोबर और गौमूत्र से 30 एकड़ की खेती आराम से कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि जो लगातार हम रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं उससे हमारी खेती की लागत भी निरंतर बढ़ रही है और उसका मिट्टी का स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है। तो हमारी प्राकृतिक खेती के जो अवयव की अगर हम बात करते हैं तो जैसे हम रासायनिक खेती में बीज का शोधन हम कार्बेंडाजिम, थिरम और बावेस्टीन से करते हैं, उसी तरह प्राकृतिक खेती में बीज का शोधन करने के लिए बीजामृत को बनाने की आवश्यकता पड़ती है, और बीजामृत बनाने के लिए हमको 5 किलो गोबर, 5 लीटर गौमूत्र, 1 किलो कोई दाल वाला बेसन और इसके साथ साथ 1 किलो गुड़, इतना हमको चाहिए और 20 लीटर पानी चाहिए, जो कि हमारे 100 किलो बीज के लिए पर्याप्त होता है। इनका घोल बनाकर हम उसको तैयार कर ले, और जब भी कोई बीज बोने जा रहे हैं तो 100 किलोग्राम बीज के लिए ये जो उपयुक्त दरें हैं ये पर्याप्त हैं, और इसको उसके ऊपर छिड़क कर छाए में सुखाने के बाद बीज को बो दें। इसके बाद जीवामृत की अगर हम बात करते हैं तो जीवामृत हमारा जैसे रासायनिक खेती में हमको यूरिया, DAP, पोटास इन सब का प्रयोग करना पड़ता है, उसकी जगह हम जीवामृत का प्रयोग कर सकते हैं। और जीवामृत बनाने के लिए हमको 10 किलोग्राम गोबर, 10 लीटर गौमूत्र, 2 किलो गुड़ और 2 किलो कोई दाल वाला बेसन, और इसके साथ साथ पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे की एक मुट्ठी मिट्टी हमको चाहिए, जिसका कि हम घोल 100 लीटर पानी में ड्रम में तैयार कर लेते हैं और उसको 3 दिन तक घड़ी की सुई की दिशा में बराबर चलाते हैं, और उसको जूट के बोरे से ढककर रख देते हैं, और 3 दिन बाद हम सिंचाई के साथ अपने खेतों में प्रयोग करेंगे। तो निश्चित रूप से हम जो रासायनिक खाद के रूप में यूरिया, DAP डालते हैं वो उसकी पूर्ति जीवामृत हमारे खेत में प्राकृतिक खेती में करेगा, और उसमें जो भी उत्पाद होगा वो पोषक तत्वों से परिपूर्ण होगा। तीसरा, घन जीवामृत जो अवयव है वो भी हमको बनाकर प्रयोग करने के लिए प्राकृतिक खेती में प्रयोग कर सकते हैं। उसके लिए हमको 100 किलोग्राम गोबर चाहिए, 2 किलोग्राम गुड़ चाहिए, 2 किलोग्राम दाल वाला बेसन और इसके साथ साथ गौमूत्र चाहिए। गौमूत्र और इन सब चीज़ों को हम मिलाकर प्लास्टिक की शीट पर या कहीं छायेदार स्थान पर उसको हम फैला देते हैं। फैलाने के बाद उसको सूखने दें, छाए में सुखाएं, न कि तेज धूप में। अगर हम तेज धूप में सुखाते हैं तो उसके जीवाणु मर जाएंगे और वो हमारे किसी काम का नहीं होगा। उसके बाद हम उसको जब वो थोड़ा नमी हट जाए उसमें से तो गोबर के उपले की तरह उसके गोल गोल हम बना लेते हैं, और उसके बाद खेत में जगह जगह बिखेर देते हैं, जो कि हमारी नाइट्रोजन और फास्फोरस की पूर्ति हमारे खेत में करता है, और प्राकृतिक विधि से हमारे जो उत्पाद हैं वो निकलेंगे।
0: अब एक दूसर बात आवत है कि कमोबेश प्राकृतिक खेती और जैविक खेती सुने में कहे में तो एक जैसे लगत है। आप ही बतावें, क्योंकि आप मृदा वैज्ञानिक हैं, कि प्राकृतिक खेती और जैविक खेती में क्या मूलभूत अंतर है।
1: देखिए, जहां तक प्राकृतिक खेती की बात है तो वो देशी गाय पर आधारित है, और अगर हम जैविक खेती की

0: बात करते हैं तो जैविक खेती में हमको गोबर तो चाहिए चाहिए, लेकिन ताजे गोबर को हम कहीं किसी गड्ढा जो एक तैयार कर लेते हैं, तैयार करने के बाद उसमें 10 से 15 दिन का ताजा गोबर इकट्ठा करके वहां पर भर देते हैं, और उसमें जो केचुआ है, जो केचुआ लाकर हम उसमें डालते हैं, और केचुआ डालने के बाद उसको 90 दिन तक वो केचुआ हमारे उसमें धीरे धीरे धीरे धीरे उस गोबर को खाएगा, और खाकर एक चाय की पत्ती की तरह सुगंधित खाद तैयार कर देगा, जिसमें सारे 17 पोषक तत्व, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, सभी पर्याप्त मात्रा में उसमें पाए जाते हैं, और 90 दिन तक जो उसमें बनने के बाद जो उस खाद को अगर हम अपने खेतों में प्रयोग करते हैं तो वो निश्चित रूप से हमारा जैविक उत्पाद होगा और उसमें सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाएंगे।
1: एक बात और आवत है डॉक्टर साहब कि जब हम किसान भाई पूरे देश के किसान की बात हो रही बाटे कि रासायनिक खाद से रासायनिक उर्वरक से अपने खेती किसानी में अधिक से अधिक पैदावार लीन जात है तो फिर प्राकृतिक खेती या जैविक खेती का आवश्यकता ही काहे पड़त है, एक बारे में थोड़ा बताऊँ।
0: देखिए, सरकार की चिंता थी कि जो धीरे धीरे हमारे मानव शरीर में भयंकर से भयंकर बीमारियां कैंसर के रूप में परिवर्तित हो रही हैं, और इसके साथ ही साथ अगर देखेंगे तो सामान्य भाषा में पेट की बीमारियों से हर घर में आदमी ग्रसित है। उससे बचाव के लिए सरकार ने प्राकृतिक खेती को अपनाने पर बल दिया, और प्राकृतिक खेती में चूंकि हमारी रासायनिक खेती में खेती की लागत भी बढ़ रही है, मिट्टी का स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है और मानव स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे कि हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य भी अच्छा हो और मानव का स्वास्थ्य भी अच्छा हो।
1: एक सामान्य बात आवत है डॉक्टर साहब, आप तो मृदा वैज्ञानिक हैं, खेती किसानी के बहुत जानकार हैं। जौन अपने भारत का युवा है 25-30 साल जौन किसान भाइयों की उम्र है, कोई खेती में अब ज्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहा बाटे। आदमी चाहता है कि शहर की ओर जाएं और खेती किसानी छोड़ के छोटा मोटा ही रोजगार करें, तो कौन ऐसा उपाय है और का कारण है कि अपन युवा जो है खेती से दूर जा रहा है? कौन उपाय है कि हमारे सभी उनके फिर से खेती किसानी की ओर आकर्षित कर दिया जाए?
0: देखिए, जहाँ तक युवाओं के पलायन का संबंध है, वो हमने जो उनको विरासत में खेत दिए हैं, खेत की मिट्टी दी है, वो रासायनिक खादों का ज़्यादा प्रयोग करने की वजह से वो धीरे धीरे ऊसर और बंजर की ओर परिवर्तित हो रही है, जिस कारण युवा खेती के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, क्योंकि उसमें चाहे वो कितना भी अच्छा बीज लाकर डाल दे, कितनी खाद डाल दे, लेकिन गुणवत्ता युक्त उत्पाद उसमें नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से जब मन माना अगर उत्पादन हमको नहीं मिलेगा और हमारे दैनिक आवश्यकता की पूर्ति भी नहीं होगी, तो हम जरूर धीरे धीरे पलायन करेंगे कि हम कहीं लेबर गिरी करें और उससे हम रोज के रोज पैसा लाएं। तो युवाओं को प्रेरित करने के लिए प्राकृतिक खेती और जैविक खेती एक ऐसा व्यवसाय है जिससे कि गुणवत्ता युक्त उत्पाद मिलेगा, जिसका बाजार मूल्य सामान्य जो केमिकल फर्टिलाइजर द्वारा उत्पादित अनाज, फल, सब्जी हैं, उनसे ज्यादा हमको मिलेगा, और वो ज्यादा दिन तक ड्यूरेबिलिटी भी उसकी है। उनसे हम तरह तरह के बाई प्रोडक्ट भी बना सकते हैं जो कि हमारे मानव शरीर के लिए अच्छे होंगे और इसके साथ साथ हमारे खेत की मिट्टी के लिए भी अच्छे होंगे।
1: जी, अब चलत चलावत एक बात और आपसे बस ये जानना चाहे कि आप ये बता दें कि ये तरह की खेती किसानी में जैसे प्राकृतिक खेती या जैविक खेती जो उन किसान भाई कीन चाहते हैं, का कोनो शासकीय अनुदान भी मिले थे खेती किसानी में, एकरे बारे में थोड़ा बताऊँ।
0: देखिए, केंद्र और राज्य सरकार प्राकृतिक और जैविक खेती को लगातार प्रोत्साहित कर रही है। प्राकृतिक खेती में युवाओं को प्रेरित करने के लिए कस्टम हायरिंग सेंटर दिए जा रहे हैं, जिसमें कि प्राकृतिक खेती के अवयव जैसे बीजामृत, जीवामृत और घन जीवामृत वो प्रशिक्षण प्राप्त करके तैयार करके किसानों के बीच में जो भी उसके निर्धारित मूल्य है उसके आधार पर वो बेच सकते हैं, क्योंकि हर किसान अभी बनाने में सक्षम नहीं है। जब तक तकनीकी रूप से युवा हमारे सशक्त नहीं होंगे, वो इन उत्पादों को तैयार करके जब बेचेंगे तकनीकी रूप से सशक्त होके, तो उनकी इनकम भी बढ़ेगी और इसके साथ साथ किसानों को आसानी से वो सुविधा अनुसार गांव में ही उपलब्ध हो जाएंगे।
1: जी, कहे का मतलब शासकीय अनुदान भी है और हर किसान भाई के अब प्राकृतिक खेती और जैविक खेती की ओर आगे बढ़े का जरूरत है। डॉक्टर मनोज कुमार सिंह जी, आप स्टूडियो में आयन और हम किसान भाइयों के बहुत बढ़िया जानकारी दिहन, ये जानकारी से हमारे सभी जरूर लाभ उठावा जाए। जानकारी देवे के खातिर आपके बहुत बहुत धन्यवाद।

हाँ भैया, देखा, बातचीत रही जैविक और प्राकृतिक खेती। डॉक्टर मनोज कुमार सिंह से अरविंद उपाध्याय की बातचीत रही भैया। बड़ी नीक बातचीत रही, बड़ा फरिया फरिया डॉक्टर साहब बताएं और फरिया फरिया अरविंद भैया पूछिन भी। भैया देखा, जो है किसान भैया आ रहे हैं कि हमारा प्रोग्राम कैसा लगा है पंचायत घर, उनके का प्रतिक्रिया है। तो के बारे हमारा व्हाट्सएप नंबर बांटे भैया, नोट कर लें, 8004926250। भैया आ रहे नंबर एक बार फिर से नोट कर लें, 8004926250। भैया आ रहे पर अपन प्रतिक्रिया दें। अब भैया देखा चले चले कि बेला बाटे तो पंचो आज्ञा दें, पंचो राम राम।

0: ग्रामीण भाई सुन रहे थे अपना पसंदीदा कार्यक्रम पंचायत घर, मीडियम वेव 292।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: पंचो जय हिंद।
1: सौरभ भैया,
0: हाँ सरला बहनी,
1: देखो अपन खेती पाती जो है ना वो बहुत मेहनत मांगत है, और हम पंच दिन रात अपने खेत में मेहनत भी करत हन, और यही समय देख लो अपने खेत में धान के फसल लगी है, और अपन फसल जो है पूरी देख रेख मांगत है ताकि अपने कोनो तरह के खर पतवार ना पन पाए।
0: बिल्कुल सरला बहनी, और देखो बारिश का मौसम है, अपने खेतन में पानी जो है बहुत भर जात है, और इस समय ज्यादातर खर पतवार है या कीट पतंगा है, इनका आवे की संभावना बहुत जो है अधिक रहते है, तो जरूरी है कि समेकित नाशी जीव प्रबंधन क्या
1: बिल्कुल सौरभ भैया। और देखो हम सब अपने खेती से संबंधित उपाय भी अपना लिए थे, जैसे कि बुआई फसल चक्र अपनाव चाहिए, स्वस्थ और रोग मुक्त बीज के चुनाव करे चाहिए, और खेत के साफ सफाई करके नाशी जीव के प्रकोप कम कर सका थे हम।
0: बिल्कुल, और प्रतिरोधी किस्में होती हैं उनका चयन करे चाहिए, है ना, और जो उर्वरक है उनका संतुलित प्रयोग करे चाहिए, और विशेषकर नाइट्रोजन का जो अनियंत्रित उपयोग है उकर रोके चाहिए, और साथ में जो है सहली खेती है, ट्रैप क्रॉप है, तो इस सब चीजन का प्रयोग करे चाहिए।
1: और सौरभ भैया देखो खेती से संबंधित तमाम खबर अगर पहले से पता चल जाए तो कितनी नीक बात है, तो आओ जान लें जाए आज की खबरें।
2: आम के पुराने और घने बागों में कम पैदावार की समस्या से जूझ रहे किसानों के लिए विंडो ओपनिंग तकनीक फायदेमंद साबित हो सकती है। इस तकनीक में पेड़ की जरूरत से ज्यादा घनी और आपस में उलझी शाखाओं की वैज्ञानिक तरीके से छटाई कर पेड़ के बीच में विंडो यानी खुला स्थान बनाया जाता है, जिससे सूर्य की रोशनी और हवा पेड़ के अंदर तक पहुंचती है, जिससे धूप से भोजन बनाने की प्रक्रिया बेहतर होती है और फलदार शाखाओं का विकास बढ़ता है। विशेषज्ञों के अनुसार विंडो ओपनिंग आम की तुड़ाई के बाद करना बेहतर रहता है। हालांकि एक बार में पेड़ की 15-20% से अधिक हरियाली नहीं कटनी चाहिए, क्योंकि अत्यधिक छटाई से पेड़ पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। बड़ी शाखाओं की कटाई भी सावधानी से करनी चाहिए ताकि छाल न फटे। छटाई के बाद कटे हिस्से पर बोर्डो पेस्ट लगाने और काटी गई शाखाओं को बाग से बाहर हटाने की सलाह दी जाती है। सही समय और वैज्ञानिक तरीके से की गई यह तकनीक पुराने आम के पेड़ों में नई शाखाओं के विकास, बेहतर फल फूल और अच्छी गुणवत्ता वाली पैदावार में मदद कर सकती है।
1: सौरभ भैया देखो ये जो बरसात के मौसम है ना, ये मौसम में हम सब कई तरह फसल लगाए हैं, और वही देखो अपन गन्ना की फसल भी बढ़वार हो रही है, और जरूरी है क्योंकि देख रेख भी करी, और देख रेख के भाई बात आवत है तो हम सब पूरी मेहनत और लगन के साथ ही लग जाते हैं। और यही क्रम में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर दिनेश सिंह भैया, बताए रहे हैं गन्ने की फसल में कीट रोग प्रबंधन के बारे में, तो आओ हम सब जाना जाए।
0: बिल्कुल जाना जाए और ध्यान से सुना जाए, कोनो जरूरत की बात हो तो कल लिख लीन जाए।
3: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, इस समय जहां मिठास की फसल आपके खेत में खड़ी है तो उसमें हानिकारक कीट और बीमारियों का प्रबंधन कैसे करें, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ से डॉक्टर दिनेश सिंह साहब, स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब ये बताएं कि जहां गन्ने

0: की फसल इस समय खेत में है, तो हानिकारक कीट और बीमारियों का प्रबंधन कैसे करें किसान भाई बहन?
1: नमस्कार किसान पंचों, गन्ना इस समय अपने बढ़वार की स्थिति में चल रहा है और ये एक दो महीने और इसका बढ़वार होना है। इस अवस्था में अगर गन्ने में कीट या बीमारी लगती है जिससे किसान का भारी भरकम नुकसान होता है और चीनी मिल की पेराई सत्र में भी जो है वो काफी गिरावट हो जाती है। जहां तक बीमारियों की बात करें तो लाल सड़न रोग गन्ने की महामारी के नाम से, कैंसर के नाम से जाने जाने वाली बीमारी है और आप लोग खुद भी ये अनुभव कर रहे हैं कि 0238 एक प्रजाति थी जो से ज्यादा क्षेत्रफल में उगाई जाती थी, 7-8 साल से उसकी रोग रोधक क्षमता घटने की वजह से वो बहुत प्रभावित हो रही है लाल सड़न से। तो उस प्रजाति के लिए मेरा एक निवेदन ये है कि किसान भाइयों उसका बावक फसल ही लें और बावक फसल का जो बीज लें उस बीज को देख लें, उस गन्ने में किसी भी तरह का लाल काटने पे नजर आ रहा हो तो निकाल दें। 0.1% के घोल बना के बेवेस्टिन नामक एक फफूंद आती है, कार्बेंडाजिम, 1 ग्राम प्रति लीटर के पानी के हिसाब से उसमें डुबो दें। डुबोने के बाद कम से कम उसमें 20-20 मिनट आधा घंटा अगर उसमें रहने देंगे तो उत्तम होगा। और मिट्टी में ट्राइकोडर्मा का प्रयोग अवश्य करें। ट्राइकोडर्मा बीमारी तो कम करता ही है और उसके साथ साथ वो एक तरीके का टॉनिक भी है और जैसे हमें आपको वैक्सीन लगती उसी तरीके से बीज शोधन आवश्यक है।
0: इसके अलावा पक्का बोइंग की भी समस्या आ रही है डॉक्टर साहब?
1: जो प्रजातियां प्रचलन में है जिसकी खेती हो रही है उसमें उकठा रोग एक आ रहा है, पक्का बोइंग आ रहा है और कंडुआ रोग आ रहा है। ये चार बीमारियां गन्ने में ऐसी हैं जो बहुत ही ज्यादा किसानों के लिए नुकसानदेह हैं।
0: इनकी पहचान क्या है?
1: देखिए, लाल सड़न गन्ने में ऊपर से तीसरी पत्ती पीली पड़ती है और करीब 10 से 15 दिन में पूरा अगोला सूख जाता है और पत्तियां वैसे खड़ी रहती है जैसे नीचे से काट के चपका दिया गया हो। लेकिन जब पक्का बोइंग आता है तो ऊपर से नई पत्तियों निकलने वाली जगह में हरियाली की कमी हो जाती है, उसको हरिमाहीनता कहते हैं और वो पत्तियां मुड़ जाती हैं, मरोड़ उठती हैं और उसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, भोजन नहीं बना पाता। तीसरी बीमारी जो बिल्ट है, बिल्ट में गन्ना लगभग 2 महीने में सूखता है इसलिए पत्तियां धीरे धीरे नीचे की तरफ आ जाती हैं और हल्की भूरी हो जाती हैं। और कंडुआ बीमारी में गन्ने के जो अगोला है वहां से नई पत्तियों के बनने के बजाय एक काला रंग का चाबुक नुमा एक फफूंद निकलता है जो रोग को लाने में काम करते हैं। वो फफूंद जो है हवा से टहलता है और कई किलोमीटर तक वो जाके गन्ने को प्रभावित कर देता है और जिस गन्ने पे गिरता है उसमें उस सीजन में वो बीमारी का लक्षण नहीं आता, वो अगले साल का बैना दे जाता है। तो ये जानकारी नहीं होती कि गन्ना स्वस्थ है जिसका बीज उपयोग कर रहे हैं। अब जो मैंने बताया कार्बेंडाजिम से बीज शोधन जब करेंगे तो लगभग सभी बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगी।
0: सब इस समय जब खेत में फसल है तो कुछ उपाय कर सकते हैं प्रबंधन में किसान भाई बहन?
1: निश्चित रूप से इस समय थायोफिनेट मिथाइल एक फफूंद नाशक है, उसका 0.01% का घोल बनाना है
0: 1 ml प्रति लीटर पानी
1: के। जी जी, 1 ml प्रति लीटर पानी में और उसका छिड़काव कर दे। उसके छिड़काव से आपका पक्का बोइंग पे भी नियंत्रण होता है और बाकी की बीमारियां भी उससे नियंत्रित होती हैं।
0: कुछ जैविक उपाय भी है डॉक्टर साहब?
1: जैविक उपाय में देखिए, हम किसान को सलाह देते हैं कि बीज को ठोक बजा के ले और स्वस्थ होना चाहिए। दूसरा, उसमें ट्राइकोडर्मा का उपयोग अवश्य करे,
0: बीज शोधन और भूमि शोधन दोनों में
1: करे।
0: डॉक्टर साहब, कुछ हानिकारक कीट भी इस समय लग रहे हैं, बेधक कीट?
1: जी हाँ, कीट एक बहुत बड़ी समस्या है और गन्ने में बेधक कीट और गन्ने का रस चूसने वाले कीट, ये दो तरीके के कीट ऐसे हैं जो गन्ने को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। बेधक कीटों में आप जानिए कि चोटी बेधक सबसे ज्यादा खतरनाक है, उसके बाद तना बेधक आता है और फिर जड़ बेधक आता है।
0: डॉक्टर साहब, इनका प्रबंधन हो कैसे?
1: एक कीटनाशक आता है जो क्लोरेंट्रानिलीपोर, वो 150 ml की 1 cc आती है, उसको 1 एकड़ के गन्ने में उसको जमीन के पास छिड़काव कर दे, ट्रेंचिंग करना है और वो गर्मी के महीने में करना है, मई जून में करना है, तो वो अपने आप फसल को 3 महीने तक के लिए किसी भी बेधक कीटों से वो मुक्ति दिलाता है। दूसरा एक बहुत बड़ा गन्ने में समस्या है इस समय जो वातावरण में परिवर्तन हो रहा है उसपे मिली बग नाम का एक कीट

0: आता है,
1: गन्ने को भी नुकसान पहुंचा रहा है,
0: बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। किसान को जल्दी समझ में नहीं आता, क्योंकि ये नई पत्तियां जो निकलती हैं वहां नहीं होता, पुरानी पत्तियों में सबसे पहले घुसता है, गन्ने से चिपक के अंदर चला जाता है और वो दिखाई नहीं देता है, तो वहां से वो रस चूसता है और ऊपर की सारी गोला पीला हो जाता है। उसके नियंत्रण के लिए एक तो पत्ती निकालना पड़ेगा, उसको छील के बाहर फेंकना पड़ेगा, और उस पर जो है एक कीटनाशक आता है इमिडाक्लोरपिड, उसका 3 ml 5 लीटर पानी के अनुपात में उसको मिला के उस पर छिड़काव करना है। और इसके लिए एक और किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि ये छिड़काव कम से कम 45 दिन बाद दोबारा अवश्य करें, क्योंकि उसके अंडे जमीन में होते हैं, मेड़ पे होते हैं, एक बार मरने के बाद वो दोबारा फिर से आके गन्ने को प्रभावित करता है।
1: डॉक्टर साहब, कहीं कहीं पायरिला की भी, रस चूसक कीटों की भी समस्या है।
0: पायरिला की समस्या तब आती है जब गन्ने में चीनी बनने लगता है, और गर्मी की अवस्था में भी कभी कभी आती है, लेकिन पायरिला के लिए एक अपने आप प्रकृति के नियम के अनुसार एक कीट है जो उसको खाता है,
1: यानी पीछे पीछे आता है मित्र कीट,
0: पीछे पीछे मित्र कीट आता है, और जहां बहुत ज्यादा पायरिला हो जाता है वहां हम उस मित्र कीट के अंडे को रिलीज भी करते हैं।
1: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे गन्ने की फसल में कीट रोग प्रबंधन के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या आपके संस्थान आना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: 94-52-65-53-52 9452655532 94-52-65-53-52।
1: चलते चलते और क्या आह्वान करना चाहते हैं किसान भाइयों बहनों का गन्ने की फसल में कीट रोग प्रबंधन के बारे में? डॉक्टर साहब,
0: जितना बच सके 238 प्रजाति का खाली आप बावक फसल लें और बीज शोधित करके बोएं, बाकी अभी और जो प्रजातियां हैं उनमें 14-201, 15-201, CO 15-023 ये कुछ प्रजातियां हैं, और इनके चयन में आप कोई भी प्रजाति को अगर बढ़ाते हैं तो 30-40% के क्षेत्रफल में ही ले जाएं।
1: डॉक्टर दिनेश सिंह साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और गन्ने की फसल में कीट रोग प्रबंधन कैसे करें किसान भाई बहन, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: भैया देखो, सावन का महीना चल रहा है और भाई देखो, बाजा पे तो हम आपका झूला नहीं झुला सकते, मुला की देखो कजरी के माध्यम से हम आपका झुमा जरूर सकते हैं। तो आवाज सुना जाए यू कजरी पूजा तोमर बहनी के स्वर माँ, तो हम सब झुमा जाए और पंच भैया भी झूमे।

0: देखो सलाह बहनी, किसान वाड़ी प्रोग्राम में अपने साथ जोन है कोई ना कोई पंच भाई जुड़त हैं, जोन अपनी फसल का लगा रहे हैं उसके बारे में बतावत हैं। तो वह क्रम में आज हमारे साथ जुड़े हैं दिलजिंदर सिंह भैया, जोन जानकारी दे रहे हैं वर्टिकल सिंगल वर्ड से गन्ना के उत्पादन कैसे की जाए, तो इसका सुना जाए और भैया के अनुभव जाने जाए।
1: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, आज हमारे साथ हैं लखीमपुर खीरी जनपद के नकहा ब्लॉक के शीतलापुर गाँव के गन्ना उत्पादन से जुड़े दिलजिंदर सिंह भैया, स्वागत है कार्यक्रम में। भैया, आप गन्ना उत्पादन के लिए जाने जाते हैं, ये बताएं कि कुल खेती की जमीन है कितनी आपके पास?
2: डॉक्टर साहब, आपको नमस्कार और हमारे सुनने वाले किसान भाइयों को भी नमस्कार। मैं करीब 20 एकड़ जमीन के ऊपर खेती करता हूं।
1: पूरे परिवार की सम्मिलित जमीन?
2: परिवार की 20 एकड़ जमीन पर हम खेती करते।
1: तो इस समय कौन कौन सी फसल आपके खेत में है?
2: प्रमुखता से हम गन्ने की खेती करते हैं और गन्ने के बीज का उत्पादन करते हैं। तो 75% खेत यानी कि करीब 15 एकड़ के करीब हमारे पास गन्ने के बीज लगे हुए हैं।
1: कुछ खास तरीका अपनाते हैं गन्ने के बीज उत्पादन में?
2: गन्ने के बीज, क्योंकि कुछ वैरायटियों के जाने के बाद गन्ने के बीज में बहुत भारी कमी आई, तो हमने वर्टिकल सिंगल बड विधि से गन्ने की बुआई करनी शुरू की। इसमें हम कम बीज में और कम लागत में अधिक गन्ने की पैदावार कर पा रहे हैं।
1: तो जो सिंगल बड है और ये वर्टिकल सिंगल बड, इसमें क्या फर्क है?
2: जो सिंगल बड विधि है वो बहुत समय से कई सारे किसान भाई करते आ रहे हैं। सिंगल बड को वर्टिकल बोने का अर्थ यह है कि पारंपरिक तरीके में गन्ने की जो बड होती है उसको जमीन पे लटाया जाता है, और जो सिंगल बड वर्टिकल विधि है, वर्टिकल अंग्रेजी में कहा जाता है कि जब हम गुल्ली या गन्ने की बड को खड़ी करके बुआई करते हैं,
1: यानी ऊपर की तरफ,
2: उसको हम ऊपर की तरफ खड़ी करके मेड़ के किनारे उसकी बुआई की जाती है।
1: तो क्या पहले आप किसी पॉलिथीन में इसको जमाते हैं?
2: इसकी बुआई डायरेक्ट होती है खेत में।
1: अच्छा,
2: इसकी नर्सरी तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। नर्सरी तैयार करने में भी अतिरिक्त खर्चा लगता है, लेबर लगती है। हम इसकी बुआई सही समय पे डायरेक्टली खेत में ही करते हैं।
1: यानी सिंगल बड गन्ने के जो बीज है उससे निकाल लेते हैं और उसकी सीधी बुआई करते हैं?
2: जी, इसकी कटाई भी एक विशेष रूप से की जाती है। ये गन्ने की कटाई जड़ की तरफ से शुरू करते हैं काटना, और ऊपर जो उसके पलई की तरफ हम गन्ने की कटाई करते हुए चलते हैं,
1: ऊपरी हिस्से
2: की तरफ चलते हैं, तो जो गांठ के नीचे का हिस्सा होता है उसको थोड़ा कम काटा जाता है, और गांठ के ऊपर, आंख के ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा सा लंबा रखा जाता है। ग्रेविटी की वजह से जब हम बड को लगाते हैं जमीन पे
1: जी,
2: तो उसका जो भोजन होता है उसकी ऊपर वाली इंटरनोड में होता है, और वो ग्रेविटी की वजह से वो नीचे जब तक बड अपनी जड़ें नहीं बना लेती है तब तक उसको भोजन उसी बड की इंटरनोड से मिलता रहता है। उसके बाद जब बड चल जाती है, उसकी अपनी जड़ें होती हैं, तो वो अपना पोषण जो है वो जमीन से लेना शुरू करती है।
1: तो इस साल आपका कितना रकबा है बीज उत्पादन का?
2: हमने करीब इस समय 12 एकड़ जमीन पे बीज उत्पादन वाला गन्ना बोया हुआ है, और बाकी जो है वो फैक्ट्री में सप्लाई के लिए चला जाता है।
1: तो इसमें कुछ शरदकालीन होगा, कुछ बसंतकालीन होगा?
2: जो वर्टिकल सिंगल बड विधि से हम गन्ना बोते हैं, ये वो वाले गन्ने बोए जाते हैं जो नए बीज इस समय रिलीज होके आते हैं।
1: अच्छा।
2: और जिनकी मात्रा बहुत कम गिनती है,
1: उसको बढ़ाते हैं।
2: उसको बढ़ाने के लिए सबसे उत्तम तरीका जो है वो वर्टिकल सिंगल बड विधि से है। अगर हम इसको 4.5x2 फुट पे 1 एकड़ खेत में लगाते हैं तो हमारे सिर्फ 4750 बड 1 एकड़ खेत में लगते हैं, जो करीब करीब हमें 4 क्विंटल गन्ने से मिल जाते हैं।
1: और जबकि पूरा

0: गन्ना का टुकड़ा बोने पर उसके बीज की मात्रा काफी?
1: उस समय जब हम पूरे गन्ने से बीज बना के बोते हैं तो हमारे पारंपरिक तरीके में करीब 25 से 35 क्विंटल तक का बीज लग जाता है
0: प्रति एकड़।
1: प्रति एकड़
0: तो कौन कौन सी वैरायटी का गन्ना बीज आपके पास है?
1: हमारे पास वो बीज हैं जो रिलीज हो चुकी वैरायटीज हैं,
0: जैसे
1: IISR लखनऊ से 16202, हमारे शाहजहानपुर इंस्टीट्यूट से जो हमें बीज मिलते हैं 17231 है, 18231 है। इन वैरायटियों का हमने इनको मल्टीप्लाई किया है और ये हमारे किसान भाइयों के लिए उपलब्ध हैं।
0: तो इनकी खासियत क्या महसूस कर रहे हैं जो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ या उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर की जो नई वैरायटी है उनकी खासियत क्या महसूस कर रहे हैं अपने खेत?
1: इस समय ये वैरायटियां बिल्कुल नई निकली हैं और इनका उत्पादन तो समय के साथ धीरे धीरे जब ये हमारी जमीनों में अडाप्ट करेंगी 2-3 साल बाद ये अपने चरम पे पहुंचेंगी जिसमें ये अपना पूरा उत्पादन देंगी। अभी इस समय ये रिकवरी के पक्ष से बहुत बढ़िया वैरायटियां हैं और ये अभी रोग से लड़ने की जो शक्तियां हैं वो अच्छी हैं,
0: यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता इनकी अच्छी है और चीनी मिल के लिए रिकवरी भी अच्छी है।
1: चीनी मिल
0: तो
1: के लिए
0: चीनी मिल के डिमांड भी होगी
1: जी, उनकी डिमांड की वैरायटी है। उत्पादन के लिए अभी किसान भाइयों को थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा सा समय लेती है, हर वैरायटी जलवायु के हिसाब से जब अडाप्ट करती है तो 1 से 2 साल के बाद ये अपना पूरा उत्पादन देने लग जाती है।
0: तो इस साल शरदकालीन गन्ने की बुआई का रकबा कितना होगा?
1: इस समय हम शरदकालीन गन्ने की बुआई की हमने शुरुआत कर दी है।
0: अच्छा, अभी से
1: वर्टिकल सिंगल बड का सबसे उत्तम समय जो है वो ये समय है,
0: अगस्त
1: के महीने से इसकी बुआई शुरू हो जाती है और आप सितंबर के आखिर तक इसकी बुआई अच्छे तरीके से कर सकते हैं कम बीज में। उससे बाद जब हम और आगे लेट करते हैं तो हमें बीज की जो दर है वो बढ़ानी पड़ती है।
0: तो कौन कौन सी खास बातें ध्यान में रखते हैं बुआई के पहले खेत की तैयारी से लेकर के बुआई और खड़ी फसल की देखभाल?
1: तो वर्टिकल सिंगल बड विधि जो है, जैसे हमने पहले चर्चा की कि सिंगल बड तो काफी सालों से किसान भाई करते आ रहे हैं, वर्टिकल सिंगल बड में हम लोगों ने जो गन्ने का उत्तम समय है बुआई का कुदरत की तरफ से जो निर्धारित है वो अगस्त के महीने से शुरू हो जाता है और आप सितंबर के महीने तक बुआई कर सकते हैं। दूसरी बात इसमें यह है कि इसमें आप कुदरत के अटल नियमों के हिसाब से गन्ने की बुआई करते हैं जिसमें जो दिशा है वो सबसे महत्वपूर्ण है।
0: जैसे
1: आप पूर्व पश्चिम की कूड बनाए जाते हैं या बेड बनाए जाते हैं और जो दक्षिण की तरफ बेड की ढलान होती है उसके ऊपर गन्ने का बीज लगाया जाता है, जिसका एक विशेष कारण है कि आगे आने वाले समय में सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला है और सर्दी में धूप, क्योंकि गन्ने की जो फसल है वो धूप बहुत पसंद करती है, उसको बहुत लंबे समय के लिए धूप चाहिए होती है और क्योंकि हमारे क्षेत्र में हमारे प्रदेश में सर्दियों का समय जो होता है वो बहुत लंबा होता है, तो उस समय के लिए हम जब दक्षिण वाली बाही पे जब इस पे लगाते हैं गन्ना तो इसको सर्दियों में सबसे ज्यादा धूप मिलती है, तो इससे गन्ने की जो बढ़वार है वो निरंतर चलती रहती है। दूसरी चीज इसमें महत्वपूर्ण यह है कि हमको इसको जमीन के अंदर नाली के अंदर लटा के नहीं लगाना, हम इसको थोड़ा सा गन्ने की मेड़ के बेड के किनारे उठा के गन्ने को लगाते हैं ऊंची जगह पे, जिसमें कि कुदरती तौर पे पानी जो है वो गन्ने की फसल के नीचे रहता है और गन्ना अपनी जरूरत के अनुसार पानी या नमी को लेता रहता है,
0: यानी अपनी प्यास बुझा लेता है,
1: बुझाता है और वो कभी भी पानी की वजह से स्ट्रेस में नहीं आता।
0: और फसल की भूख कैसे मिटाते हैं?
1: जब हम उसको कम पानी देते हैं या पानी की जो स्ट्रेस से उसको बचा लेते हैं गन्ने को, तो उसकी जो भूख है वो अपने आप मिट्टी से पूरी करता है।
0: आप प्रति एकड़ कितनी कार्बनिक खादें देते हैं, कितनी रासायनिक और जीवाणु खादों का प्रयोग करते हैं वर्टिकल सिंगल बड से गन्ना बीज उत्पादन में?
1: हम इसको सुनिश्चित करते हैं कि हमारे खेत में कोई भी फसल अवशेष जो है वो खेत से बाहर नहीं जाता, ना ही जलाया जाता है, हर फसल अवशेष को हम खेत में ही जोत के उसकी मिट्टी में मिलाते हैं। इसके अतिरिक्त हम हरी खाद की बिजाई हर साल करते हैं जिससे कि हमारे कार्बनिक जीवांश जो है वो खेत में भरपूर रहे, जिसकी वजह से हमें रासायनिक खादों पे हमारी निर्भरता जो है वो कम होती जा रही है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि आपकी जो मिट्टी की सेहत है वो तंदुरुस्त रहती है, रोग कम लगते हैं और आपका जो खादों पे हमारा निर्भरता है वो कम हो जाती है।
0: जो अब तक का आपका तजुर्बा है वर्टिकल सिंगल बड से गन्ना बीज उत्पादन का या गन्ना उत्पादन का, उसके आधार पर और किसान भाइयों बहनों को क्या सलाह देना चाहेंगे जो मिठास की फसल की खेती करना चाहते हैं?
1: देखिए, आज तक के जितने भी मेथड हैं गन्ने की बुआई के सभी कामयाब हैं, हर एक की अपनी विशेषताएं हैं। सिंगल बड वर्टिकल मेथड जो है वो किसान भाइयों को अभी उनके लिए नया है, तो उनसे सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि पहले इस विधि को समझें, कम रकबे में अपने खेत में इसकी शुरुआत करें, और इसके बाद जब एक बार उसको समझ

0: लेंगे तो उसके बाद इसको वो बढ़ा सकें।
1: बहुत सारे किसान भाई बहन उत्सुक होंगे आपसे मिलने के लिए या आपसे बात करने के लिए, तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: 88 40 30 32 58 88 40 30 32 58 88 40 30 32 58।
1: चलते चलते और क्या कुछ कहना चाहते हैं अपनी कहानी के बारे में?
0: चलते चलते सभी किसान भाइयों से यही कहना चाहेंगे कि ये एक नई विधि है, इसको अपनाइए, कम रकबे पे इसको करिए, इसको समझिए और इससे लाभ उठाने की कोशिश करिए, जैसे कि हम अपने खेतों में कर रहे हैं।
1: दिलजिंदर सिंह भैया, आज आप कार्यक्रम में आए और मिठास की फसल उगा रहे हैं जिसमें ज्यादातर रकबे में वर्टिकल सिंगल बड से गन्ना बीज उत्पादन कर रहे हैं, जिसमें आपकी लागत भी कम हो रही है, आपका उत्पादन अधिक मिल रहा है और आपको मुनाफा भी अधिक मिल रहा है। आज कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
3: पुतला बोल रहे?
2: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
3: मतलब?
2: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ,
3: परम तो सभी डाले हैं।
2: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
3: सच है?
2: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
3: ठीक है भाई, मैं भी आज तो जैविक खेती शुरू करूंगा।
4: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
5: सरला बहनी।
6: हाँ सर भैया।
5: देखो अपन पंच भाई जौन है, मौसम की जानकारी के बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं, कहे कि समय मौसम ऐसा चल रहा है, पता नहीं कब पानी बरसा लगे, पता नहीं कब धूप निकल आवे, तो इसलिए जरूरी है कि अपने पंच भाई के यहाँ मौसम की जानकारी आप उपलब्ध करा दो।
6: बिल्कुल भैया, भारत सरकार पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत मौसम विज्ञान विभाग, प्रादेशिक मौसम केंद्र लखनऊ से प्राप्त जानकारी के अनुसार अगले 7 दिनों के बरसात के पूर्वानुमान यह प्रकार से है। आज यानी 18 तारीख से लेके 24 तारीख तक संभाग में अनेक स्थानों पर वर्षा गरज चमक के साथ बौछार पड़े की संभावना है। यू भैया रही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाद, और पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहाँ भी संभाग में अनेक स्थानों पर वर्षा गरज चमक के साथ ही बौछार पड़े की संभावना है और कुछ स्थानों पर तेज बौछार पड़े की संभावना है।
5: सरला बहनी, देखो हम उनके यू प्रोग्राम तो अपन पंच भाई सुनत हैं, लेकिन साथ में अगर कोई सुझाव देवैया हैं, कोई विशेष विषय पर जानकारी लेवैया हैं, तो ये अपना पत्र हम लोगन के यहाँ लिख सकते हैं ताकि उनकी पार्टी के माध्यम से ने जो बात है वह हम लोगों तक पहुंच जाए।
6: और भैया चिट्ठी पाती लिखे खातिर हमारा पता है कार्यक्रम किसानवाड़ी, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी 18 विधानसभा मार्ग लखनऊ, पिन कोड है भैया 226001, और यह पता पर चिट्ठी पाती जरूर लिखें।
5: और अगर ईमेल करिया हो तो हमारी ईमेल आईडी का है, वह अपने पंचवाइन क्या बता दो।
6: और भैया मेल करा चाहत है तो हमारा पता है farmandhomeairlko@gmail.com, यह पता पर मेल जरूर करें। और सौरभ भैया अब बैठके के समय हो रहा है समाप्त, तो पंच से लीन जाए आज्ञा।
7: जय हिंद।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मैं 15-20 वर्षों से खेती कर रहा हूँ, मेरे पास 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है। समय 23-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान है मैं उनको समझाऊंगा बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है ऐसे अन्य लोगों को भी हो।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
6: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
5: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रांतीय रक्षक दल जवानों के लिए 5 लाख रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा का किया शुभारंभ। 600 रुपए प्रतिदिन किया ड्यूटी भत्ता। उत्तर प्रदेश जापान निवेश सम्मेलन आज से हुआ शुरू। 200 से ज्यादा जापानी उद्योगपतियों के साथ बनेगी निवेश की रूपरेखा। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा। वाराणसी के छोटे लाल यादव को द्रोणाचार्य, गाजीपुर के राजकुमार पाल, मेरठ की प्रियंका गोस्वामी और बागपत के अखिल श्योराण को मिलेगा अर्जुन पुरस्कार। और प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए अगले 2 दिनों तक भारी बारिश का जारी किया अलर्ट। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में पीआरडी जवानों को सपरिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने का ऐलान किया। श्री योगी ने प्रांतीय रक्षक दल के सम्मेलन में जवानों का दैनिक ड्यूटी भत्ता 600 रुपए करने की घोषणा भी की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने लखनऊ में लगभग 23 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले बहुमंजिला पीआरडी बैरक का शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने में और विपरीत परिस्थिति में पुलिस प्रशासन का सहयोग करने वाले प्रांतीय रक्षक दल के सभी स्वयंसेवकों का सेवा भाव और अनुशासन प्रदेश की प्रगति तथा सुरक्षा का मजबूत स्तंभ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीआरडी के स्वयंसेवकों के लिए प्रदेश में अवस्थापना सुविधाओं का विकास हुआ है।
1: अच्छी सरकारें आती हैं तो सबके अच्छे दिन भी लाती है। पहले पुलिस के अधिकारियों और जवानों के लिए भी अच्छी बैरिक की सुविधा नहीं हुआ करती थी। प्रदेश के अंदर 56 जनपद ऐसे हैं जिन जनपदों में उस जनपद की सबसे ऊंची बिल्डिंग अगर किसी की होगी तो पुलिस कार्मिकों के बैरक की होगी। होमगार्ड के स्वयंसेवकों के लिए भी अब अच्छी अवस्थापना सुविधाओं का विकास हुआ है। अब प्रांतीय रक्षक दल के लिए भी अब हाईराइज बैरक के निर्माण का कार्य लखनऊ में संपन्न हुआ है।
0: पीआरडी जवानों के सम्मेलन में राज्य मंत्री, राजनीतिक पेंशन, सैनिक कल्याण और प्रांतीय रक्षक दल डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने कहा कि पीआरडी जवान के सैनिक शांति, सुरक्षा और जनसेवा के मजबूत आधार हैं। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण भूमिका के बावजूद 2017 से पहले पीआरडी का बजट मात्र 2300 रुपये था, जिसे प्रदेश की भाजपा सरकार ने अब कई गुना बढ़ा दिया है।

दिल्ली और उत्तर प्रदेश में यूपी जापान निवेश सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। उद्घाटन सत्र में कल सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भाग लेंगे। 5 दिवसीय इस निवेश सम्मेलन के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार का उद्देश्य जापानी कंपनियों की व्यावसायिक रुचि को ठोस निवेश, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, संयुक्त परियोजनाओं और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन में परिवर्तित करना है। इस सम्मेलन में 200 से अधिक प्रमुख जापानी उद्योगपति, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, व्यावसायिक प्रतिनिधि और नीति निर्माता भाग ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश और जापान प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन, विनिर्माण, स्टार्टअप, कौशल विकास, AI, सेमीकंडक्टर और अन्य क्षेत्रों में नए आयाम तलाशने के लिए एकजुट हो रहे हैं। गृह विभाग ने श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में पहली गठित विशेष जांच दल SIT की फाइनल रिपोर्ट को आगे की कार्रवाई के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंप दी है। SIT ने यह रिपोर्ट शासन को सौंपी थी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध पर पहली SIT का गठन गत 13 जून को राज्य सरकार ने किया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद गठित दूसरी जांच टीम की जांच अभी जारी है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी और जगदीश ईश्वर भाई पटेल को सह प्रभारी बनाया है। श्री तावड़े को प्रदेश प्रभारी बनाए जाने पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने कहा कि उनकी शैली सबको साथ लेकर चलने की है और वे संगठन को मजबूत करने तथा पार्टी की योजनाओं को लागू करने में अहम भूमिका निभाएंगे। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेन्द्र प्रसाद ने आज पीलीभीत के जिला अस्पताल में प्रधानमंत्री दिव्याशा वयोश्री केंद्र का वर्चुअल उद्घाटन किया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित यह देश का 109वां PM दिव्याशा वयोश्री केंद्र होगा, जिसमें दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को कृत्रिम अंग व सहायक उपकरण प्रदान किए जाएंगे। उद्घाटन समारोह में 18 दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड ट्राई साइकिलों का वितरण किया गया। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा कर दी है। बॉक्सिंग कोच छोटेलाल यादव, एथलेटिक्स कोच परवीर सिंह और शूटिंग कोच नेहा नंद कुमार चहवाड़ को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाएगा। बॉक्सिंग कोच छोटेलाल यादव उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद के रहने वाले हैं। वह पूर्व राष्ट्रीय चैंपियन और भारतीय महिला बॉक्सिंग टीम के कोच रह चुके हैं। उधर महिला बैडमिंटन डबल्स जोड़ी त्रिशा जौली और गायत्री गोपी चंद समेत विभिन्न खेलों के 15 अन्य खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वालों में प्रदेश के गाजीपुर जनपद के हॉकी खिलाड़ी राजकुमार पाल, बागपत के निशानेबाज अखिल चौराण और मेरठ की एथलीट प्रियंका गोस्वामी का नाम भी शामिल है। भारतीय फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी इसायाह अरु मैनायागम को अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम से सम्मानित किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने राज्य परिवहन निगम में कार्यरत आउटसोर्स कार्मिकों के मानदेय में जुलाई से 5% की वृद्धि की है। परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि कंप्यूटर ऑपरेटर, लेखाकार कम टेली ऑपरेटर और प्रोग्रामर के मानदेय में यह बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने बताया कि परिवहन निगम में कार्यरत आउटसोर्स कार्मिकों के मानदेय में प्रतिवर्ष 10% वृद्धि का प्रावधान है। इसके तहत जनवरी में 5% और जुलाई में 5% की बढ़ोतरी की जाती है। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में कल देर रात हुए भीषण सड़क हादसे में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के 8 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 22 मजदूर घायल हो गए। हादसा नेशनल हाईवे 719 पर गोहद क्षेत्र के छीमका गांव के पास हुआ। हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताते हुए उत्तर प्रदेश के मृतक मजदूरों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। प्रदेश में राजधानी लखनऊ सहित कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिनों तक

0: भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण राज्य में कई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अमरोहा में गंगा का जलस्तर बढ़ने पर जिला प्रशासन द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है। उधर वाराणसी में गंगा नदी के लगातार बढ़ रहे जलस्तर को देखते हुए श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए एहतियाती कदम उठाए गए हैं। एसीपी अतुल अंजान ने बताया कि गंगा में नावों का संचालन फिलहाल अग्रिम आदेशों तक बंद किया गया है। जल पुलिस और एनडीआरएफ की टीम अनाउंसमेंट के माध्यम से लोगों को सचेत कर रही है।
1: गंगा के जल स्तर में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। आज 66.90 मीटर लेवल है और अभी भी 4 सेंटीमीटर पर आवर की रेट से लगातार बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि यहां पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं। श्रावण मास भी चल रहा है, उनकी सुरक्षा को देखते हुए प्रिकॉशनरी नावों का संचालन अग्रिम आदेशों तक बंद किया गया है। भविष्य में जैसे ही जल स्तर सामान्य होगा और जो बहाव है उसकी गति सामान्य होगी, आगे के निर्णय लिए जाएंगे। नाविकों को भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ साथ में पूरे घाटों पर डीप वाटर बैरिकेटिंग की गई है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रांतीय रक्षक दल जवानों के लिए 5 लाख रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा का किया शुभारंभ। 600 रुपए प्रतिदिन किया ड्यूटी भत्ता। उत्तर प्रदेश जापान निवेश सम्मेलन आज से हुआ शुरू। 200 से ज्यादा जापानी उद्योगपतियों के साथ बनेगी निवेश की रूपरेखा। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा। वाराणसी के छोटे लाल यादव को द्रोणाचार्य, गाजीपुर के राजकुमार पाल, मेरठ की प्रियंका गोस्वामी और बागपत के अखिल श्योराण को मिलेगा अर्जुन पुरस्कार। और प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए अगले 2 दिनों तक भारी बारिश का जारी किया अलर्ट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। श्रोताओं, हमारे कार्यक्रम आप न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। लीजिए सुनिए संस्कृत कार्यक्रम। संस्कृत कार्यक्रम के अंतर्गत लीजिए सुनिए आरुणेय मिश्र की वार्ता लोकमंगलस्य महाकवि गोस्वामी तुलसीदास।
3: गोस्वामी तुलसीदासः हिंदी साहित्यस्य संस्कृतस्य च महान विभूति आसीत। सः भक्तिकालस्य श्रेष्ठतम राम भक्त कवि आसीत। अस्य जन्म उत्तर प्रदेशस्य बांदा जनपदे राजापुर ग्रामे अभवत। अस्य पितुः नाम आत्माराम दुबे, मातुः नाम च हुलसी देवी आस्ताम। तुलसीदासेन विरचितं रामचरितमानसं जगति सर्वत्र प्रसिद्धम् अस्ति। अयं महाकाव्यः जनमानसे भक्तिभावनां सिञ्चति। अन्य प्रमुख ग्रन्थाः सन्ति गीतावली, विनयपत्रिका, जानकी मंगलम्, हनुमान चालीसा च। गोस्वामी तुलसीदासस्य काव्यस्य प्राथमिकम् उद्देश्यं सामान्यजनस्य कल्याणं, समाजे नैतिक मूल्यानां स्थापनं च आसीत्। आचार्य रामचंद्र शुक्लः तुलसीदासस्य जनहिताय दृष्टिः प्रकाशयन् लिखितवान् तस्य काव्यस्य महत्तमं लक्षणं जनकल्याणस्य, ब्रह्माण्डीय सौहार्दस्य च भावना इति कथ्यते। यस्य केन्द्रे मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीरामस्य आदर्शचरित्रं वर्तते। अस्य काव्येषु भक्तिभावस्य, करुणायाः, मर्यादायाः च अद्भुतं समन्वयः प्राप्यते। अयं समाजस्य उद्धाराय रामस्य आदर्शचरितं जनसमक्षं प्रस्तुतवान्। भारतीय संस्कृतौ अस्य स्थानम् अद्वितीयम् अस्ति। गोस्वामी तुलसीदासः केवलं कविः नासीत्, सः युगद्रष्टा, समाजसुधारकः, लोकमङ्गलस्य च महान् संवाहकः च आसीत्। गोस्वामी तुलसीदासस्य काव्यस्य मूल उद्देश्यं जनकल्याणस्य व्यवस्थापनम् अस्ति। यस्य मुख्यधाराः रामराज्यस्य स्थापना, समन्वयस्य भावना, करुणाधारितस्य रक्षणस्य प्रयासः च सन्ति। आचार्य रामचंद्र शुक्लः तुलसीदासः जनकल्याणस्य साधनास्थस्य कविम् इति मन्यते। लोकमंगलम् इति अर्थः जनानां कल्याणम्। तुलसीदासः स्वकीयं सम्पूर्णं जीवनम् एतस्मिन् एव कार्ये अर्पितवान्। तुलसीदासस्य

आप अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 8004926250 पर भी भेज सकते हैं। सूचना समाप्त हुई।

श्रोताओं एक सूचना सुनिए। गुरुवार दिनांक 20 अगस्त 2026 को प्रसारित होने वाले सजीव हेलो पनघट कार्यक्रम में महिलाओं के कानूनी अधिकार विषय पर आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए स्टूडियो में उपस्थित होंगी एडवोकेट नाजिया नफीस। आप अपने प्रश्न दोपहर 1:15 से 2 बजे तक फोन नंबर 0532-297-0462 और 0532-242-3649 पर पूछ सकते हैं। फोन नंबर पुनः सुन लीजिए 0532-297-0462 और 0532-242-3649।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। सुगम संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए श्रेया श्रीवास्तव के स्वर में भजन।

श्रेया श्रीवास्तव के स्वर में अभी आपने सुना ये भजन। इसी के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। श्रोताओं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत। आप हमारा ये कार्यक्रम न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। फिल्म संगीत के कार्यक्रम का पहला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं शेरशाह मूवी से, तनिष्क बागची और जुबिन नौटियाल की आवाज में। संगीत और बोल तनिष्क बागची के।

कभी कभी दिल की अपनी ही एक दुनिया होती है, जहां तर्क नहीं सिर्फ एहसास चलते हैं। दिल किसी को चाहने लगे तो फिर उसे समझाना आसान नहीं होता। कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं धड़कनों से जुड़ते हैं, और शायद इसीलिए कहा गया है

एक बेहद खूबसूरत नगमा जिसमें प्यार की मासूमियत भी है और दिल की बेचैनी भी। ये गाना आपने सुना कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में, साजन फिल्म से। बोल थे समीर के, संगीत दिया था नदीम श्रवण ने। दोस्तों, माँ के आंचल में जहाँ ममता मिलती है, वहीं पिता के साए में हौसला और सुरक्षा का एहसास मिलता है। पिता शायद अपने प्यार का इजहार कम करते हैं, लेकिन उनकी हर कोशिश में बच्चों की खुशियां छिपी होती हैं। एक पिता जिसकी उंगली पकड़कर चलने से लेकर जिंदगी की हर राह पर अपने पैरों पर खड़े होने तक उनका साथ हमेशा हमारे साथ रहता है। इसी खूबसूरत रिश्ते को समर्पित है अगला गीत।

दोस्तों, ये गाना आपने सुना सोनू निगम की आवाज़ में एनिमल मूवी से। संगीत था हर्षवर्धन रमेश का और बोल राजशेखर की। दोस्तों, बारिश का मौसम है और ऐसा हो नहीं सकता कि बारिश का गाना ना हो। काली घटाएं, ठंडी हवाएं और बूंदों की रिमझिम, सावन आते ही जैसे प्रकृति भी प्रेम का गीत गाने लगती है। सावन सिर्फ मौसम नहीं बल्कि यादों का मौसम है। कभी किसी की याद दिलाता है, कभी मन में प्रेम जगाता है और कभी बचपन की उन बारिशों में ले जाता है जहां भीगने के लिए किसी बहाने की ज़रूरत नहीं होती थी। इन्हीं खूबसूरत एहसासों को सुरों में पिरोता हुआ अगला गीत है।

अरिजीत सिंह की आवाज़ में क्रिचर 3D फिल्म से ये गाना आपने सुना। संगीत था टोनी कक्कर का, शब्द रचना टेनी कक्कर की। श्रोताओं, इसी गाने के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत यही समाप्त होता है।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सबरस। इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं नितिन मुकेश की आवाज में ये भजन।

सब्र इस कार्यक्रम के अंतर्गत नितिन मुकेश की आवाज में ये आपने भजन सुना। अगला हम आपको सुनवा रहे हैं गीत तलत अजीज की आवाज में।

तलत अजीज की आवाज में ये गीत आपने सुना। इसी के साथ सबरस कार्यक्रम यही समाप्त होता है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। ब्रिक्स देशों ने पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। भारत ने कहा, पर्यावरण संबंधी कार्रवाई विकासशील देशों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हो। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की चुनाव प्रणाली की प्रशंसा पर विदेश मंत्रालय ने कहा, देश की चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता सर्वविदित है। सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिस कर्मियों के विरुद्ध हिंसा के आरोपों की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करेगा। पाकिस्तान के शीर्ष न्यायालय ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को चिकित्सा जांच के लिए अस्पताल भेजने का आदेश दिया। ईरान ने दोहराया, होर्मुज जलडमरू मध्य तब तक बंद रहेगा जब तक अमेरिका के साथ हस्ताक्षरित सभी शर्तें पूरी नहीं हो जाती। गोल में भारत ने श्रीलंका को पहले टेस्ट क्रिकेट मैच में 372 रन का लक्ष्य दिया। मेजबान टीम ने दिन का खेल समाप्त होने तक 4 विकेट पर 84 रन बनाए और भारत की महिला डबल्स जोड़ी त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि पर्यावरण से जुड़े प्रयास लोगों पर केंद्रित, टिकाऊ और विकासशील देशों की वास्तविकताओं के अनुरूप होने चाहिए। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक में कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान भारत का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से प्रेरित है। इसमें ग्लोबल साउथ की चिंताओं को एजेंडे में सबसे ऊपर रखा गया है और ब्रिक्स को सहयोग तथा स्थिरता के लिए समायोजन तथा नवाचार को बढ़ावा देने वाले मंच के तौर पर फिर से परिभाषित किया गया है। श्री भूपेंद्र यादव ने जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के नुकसान, प्रदूषण और आपदा के खतरों जैसी बढ़ती वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों पर प्रकाश डाला।
1: जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का नुकसान और प्रदूषण, ये तीनों मिलकर एक बड़ा संकट पैदा कर रहे हैं। आपदाओं का बढ़ता खतरा भी दुनिया भर में पारिस्थितिकी तंत्रों को प्रभावित कर रहा है। ये चुनौतियाँ विकासशील देशों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा और समावेशी विकास जैसी व्यापक विकास प्राथमिकताओं से जुड़ी होती हैं।
2: फूड सिक्योरिटी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ।
0: श्री भूपेंद्र यादव ने भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की 4 प्राथमिकताओं को रेखांकित किया। टिकाऊ जीवन शैली को बढ़ावा देना, वनीकरण, जंगल की आग का प्रबंधन तथा आपदा से उबरने की क्षमता विकसित करना, सर्कुलर इकोनॉमी और अनुकूलन। बैठक का समापन संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान की स्वीकृति के साथ हुआ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने घोषणा की है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 2 अक्टूबर से 1 महीने का अभियान बैंकिंग फॉर यूथ शुरू करेंगे। आज शाम नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सम्मेलन के समापन भाषण में उन्होंने कहा कि इस अभियान का प्राथमिक उद्देश्य युवाओं को वित्तीय क्षेत्र से जोड़ना और उनकी वित्तीय यात्रा में मार्गदर्शन करना होगा। उन्होंने बताया कि अभियान का लक्षित समूह 16 वर्ष और उससे अधिक आयु के युवा पेशेवर होंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि ये अभियान युवा ग्राहकों के साथ निरंतर जुड़ाव के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगा, जिससे उनकी भावी उद्यमशीलता की यात्रा सुगम होगी। आज समाप्त हुए 2 दिन के सम्मेलन में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं के नेतृत्वकर्ता एक साथ आए। इस कार्यक्रम के दौरान प्रमुख प्राथमिकताओं, उभरते अवसरों और बैंकिंग तथा वित्तीय क्षेत्र के बदलते परिदृश्य पर विचार विमर्श किया गया। इस बीच क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों RRB ने पिछले 1 साल के दौरान ऋण वितरण में काफी बढ़ोतरी दर्ज की है। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि वर्ष 2025-26 के दौरान कुल बकाया ऋण में 10.3% की वृद्धि हुई है। छोटे शहरों और गांवों का कुल बकाया ऋण 2024-25 में लगभग 5,24,000 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2025-26 में 5,78,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। मंत्रालय ने बताया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों

0: ने ऋण वितरण सुविधा का विस्तार करके और जरूरतमंद तबकों पर अधिक ध्यान केंद्रित करके ग्रामीण आर्थिक विकास तथा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना जारी रखा है। भारत ने इंडोनेशिया में आए भीषण भूकंप से हुई जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि भारत इस त्रासदी से बेहद दुखी है। भारत इंडोनेशिया को राहत और बचाव कार्यों में हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की चुनाव प्रणाली की प्रशंसा करने और अमेरिकी चुनावों में मतदाता पहचान पत्रों की कमी पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के टिप्पणी का जिक्र करने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत की चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता सर्वविदित तथ्य है। बांग्लादेश से ऊर्जा संबंधी अनुरोध प्राप्त होने की खबरों पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत का बांग्लादेश के साथ ऊर्जा सहयोग जारी है। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त अनुरोध के संबंध में भारत अपनी आवश्यकताओं, शोधन क्षमता और उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए इसकी जांच कर रहा है। शहजाद भट्टी आतंकी नेटवर्क को लेकर भारत के दावों पर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत सरकार अपने इस रुख पर कायम है। श्री जायसवाल ने कहा कि आतंकवाद से निपटने के लिए भारत का संघर्ष जारी रहेगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस क्षेत्र में स्थानीय आबादी को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सहानुभूति और एकजुटता की जरूरत है।
1: जैसा कि हमने बताया कि बहुत सारे लोगों की जाने गई हैं वहाँ, और साथ ही साथ बहुत सारे लोग वहाँ हताहत हुए, उसके अलावा बहुत लोगों को इंजरीज भी आई हैं, और कि वहाँ पर जो एसेंशियल कमोडिटीज है, जो आम चीजें हैं, आम वस्तुएं हैं रोजमर्रा के, उस पर भी काफी रोक लगाया गया है। और हालात ऐसी है कि जो वहाँ पर लोग हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सिंपैथी की, सॉलिडेरिटी की जरूरत है और वो उनको मिलना चाहिए।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली में हाल में छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिस कर्मियों के विरुद्ध हिंसा के आरोपों की जांच के लिए उच्चस्तरीय समिति गठित की जाएगी। एक रिपोर्ट।
2: समिति में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, पूर्व पुलिस महानिदेशक और सीबीआई के पूर्व निदेशक शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि समिति के अन्य सदस्यों के नाम पर विभिन्न पक्षों से सुझाव मिलने के बाद कल आदेश जारी किया जाएगा। न्यायालय ने कहा कि समिति महिला प्रदर्शनकारियों से जुड़े यौन उत्पीड़न और ऑनलाइन उत्पीड़न के आरोपों तथा सोशल मीडिया के जरिए अन्य संवेदनशील लोगों को निशाना बनाए जाने के मामलों की भी जाँच करेगी। अदालत ने कहा कि 20 जुलाई को दिल्ली में संसद मार्च के दौरान हुए हिंसा से संबंधित वीडियो फुटेज और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग समिति को सौंपी जाएगी। शीर्ष अदालत कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिस कर्मियों के खिलाफ हिंसा के आरोपों से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: प्रवर्तन निदेशालय कर्नाटक लोक सेवा आयोग परीक्षा में कथित प्रश्न पत्र लीक मामले में राज्य में कई ठिकानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। आयोग के पूर्व अध्यक्ष शिवशंकरप्पा एस साहूकार पर प्रश्न पत्र लीक, ओएमआर शीट में छेड़छाड़ और सरकारी पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती के लिए प्रति उम्मीदवार 70 से 80 लाख रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप हैं। महाराष्ट्र में विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत मतदाता गणना प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि कल समाप्त हो गई। इसके साथ ही राज्य में करीब 21.16% मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने की आशंका है। मतदाता सूची का मसौदा 24 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा। मतदाताओं के पास दावे और आपत्तियां दर्ज करने के लिए एक महीने का समय होगा। अंतिम मतदाता सूची 27 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित की जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने कार्यकाल के पहले 100 दिन की उपलब्धियों पर एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में उद्योग, निवेश, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुशासन, सुरक्षा और जन कल्याण के क्षेत्र में किए गए कार्यों का उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार राज्य में नए औद्योगिक निवेश और रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी परियोजनाओं में भी तेजी आई है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि कम समय में पश्चिम बंगाल के विकास की नई नींव रखी गई है। उन्होंने कहा कि सरकार के कामकाज का आकलन जनता करेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: आकाशवाणी है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने आज अधिकारियों को आदेश दिया है कि जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अगले कुछ दिनों के भीतर व्यापक चिकित्सा जांच के लिए इस्लामाबाद के शिफा अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल में स्थानांतरित किया जाए। खबरों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय पीठ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के संस्थापक इमरान खान को अस्पताल में भर्ती कराने और उनके परिवार से मिलवाने की मांग वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। ईरान ने दोहराया है कि होर्मुज जलडमरू मध्य समुद्र यातायात के लिए तब तक बंद रहेगा जब तक अमेरिका के साथ हस्ताक्षरित 14 सूत्री समझौता ज्ञापन के तहत ईरान की सभी शर्तें पूरी नहीं हो जाती। एक रिपोर्ट।
1: ईरान का कहना है कि विदेशी प्रतिबंधों को पूरी तरह हटाए जाने और सैन्य अभियानों को समाप्त किए जाने के बाद ही इस महत्वपूर्ण जलमार्ग को खोला जा सकता है। मोहम्मद बागेर गलिबफ ने चेतावनी देते हुए कहा कि उनका देश दुश्मन को उसके कार्यों और आक्रामकता के लिए करारा जवाब देने के लिए तैयार है। मोहम्मद बागेर गलिबफ ने राजनयिक प्रक्रिया का बचाव करते हुए कहा कि सैन्य शत्रुता को रोकने के लिए समझौता ज्ञापन में दी गई 60 दिनों की समय सीमा ने ईरान की राष्ट्रीय रक्षा और घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया है। 60 दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद भी ये मुख्य मतभेद अनसुलझे हैं। ईरान के लिए होर्मुज के माध्यम से यातायात को सामान्य बनाना नाकेबंदी की समाप्ति, सैनिकों की वापसी और मुआवजे पर निर्भर करता है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका की ईरान के साथ कोई वार्ता नियोजित नहीं है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य में अमेरिकी नाकाबंदी पूरी तरह से लागू है। विदेश मंत्रालय में सचिव श्रीप्रिया रंगनाथन ने फलस्तीन के विदेश मंत्री और प्रवासी मामलों के मंत्री वासिन अघा बेकियन शाहीन से मुलाकात की। फलस्तीन में भारत के प्रतिनिधि कार्यालय ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने भारत फलस्तीन द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। इनमें विकास सहयोग से जुड़ी विभिन्न परियोजनाएं भी शामिल हैं। गोल में पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत के 372 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका ने चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक 4 विकेट पर 84 रन बना लिए थे। यहां से भारत को जीत के लिए 6 विकेट की जरूरत है, जबकि श्रीलंकाई टीम जीत से अभी भी 288 रन दूर है। नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी महिला डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। वहीं लक्ष्य सेन और उन्नति हुडा ने सिंगल्स के दूसरे दौर में जगह बना ली है। FIH हॉकी विश्वकप में आज भारतीय महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 6-1 के बड़े अंतर से हरा दिया। नीदरलैंड्स के अम्स्टरडैम में भारत के लिए नवनीत कौर, सुनेलिता तोपो, सुशीला चानू, दीपिका लाल रिमस्यामी और साक्षी राणा ने गोल दागे। अब भारतीय महिला टीम का अगला मुकाबला बृहस्पतिवार को इंग्लैंड से होगा। वहीं एक बहुप्रतीक्षित मुकाबले में कल अम्स्टरडैम में भारतीय पुरुष टीम का सामना चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से होगा। अरब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
2: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 0.63% यानी 493 अंक नीचे आकर 77,235 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 0.55% यानी 133 अंक लुढ़क कर 24,155 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 7 पैसे कमजोर हुआ और 95.68 रुपए पर बंद हुआ।
0: मौसम विभाग ने कल पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। पूर्वोत्तर भारत, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरलम और माहे, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम के कुछ हिस्सों में भी कल मध्यम से तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने उत्तरी आंध्रीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और कारैक्काल में कल बादल गरजने तथा बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की है। आंध्र प्रदेश, बिहार, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, दक्षिणी आंध्र कर्नाटक, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी इसी तरह का मौसम रहने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों ने पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। भारत ने कहा, पर्यावरण संबंधी कार्रवाई विकासशील देशों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हो। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की चुनाव प्रणाली की प्रशंसा पर विदेश मंत्रालय ने कहा, देश की चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता सर्वविदित है। सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिस कर्मियों के विरुद्ध हिंसा के आरोपों की जांच के लिए उच्चस्तरीय समिति गठित करेगा। पाकिस्तान के शीर्ष न्यायालय ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान

0: resolution. Iran reiterates Strait of Hormuz to remain closed till all its conditions agreed with the US are fully met. In men's cricket, India tightened grip on Gall Test against Sri Lanka on day 4. And Indian women's doubles pair of Teresa Jolly and Gayatri Gopichand advanced to pre-quarterfinals in Badminton World Championships. That's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शमीम अहमद। ब्रिक्स मुल्कों ने माहौलियाती तहफ्फुज़ और पायदार तरक्की के अपने अज़्म की तौसीख की है। भारत ने ज़ोर देकर कहा है कि माहौलियात से मुतालिक कार्रवाई में तरक्की पज़ीर मुल्कों की ज़रूरियात को पूरा करना लाजमी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भारत के इंतखाबी निज़ाम की सताइश के ताल्लुक से भारत ने कहा है कि उसकी इंतखाबी मशीनरी की भरोसेमंदी आलमी सतह पर पूरी तरह अपनी शनाख्त रखती है। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में तलबा के एहतजाज के दौरान पुलिस कार्रवाई के इल्ज़ाम और सिक्योरिटी एहलकारों के ख़िलाफ़ तशद्दुद के इल्ज़ाम की छानबीन के लिए एक आला इख्तियाराती कमेटी तश्कील देगी। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद साबिक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को तिब्बी जाँच के लिए अस्पताल मुंतकिल करने की हिदायत दी है। ईरान ने एक बार फिर कहा है कि आबनाए हुरमुज़ उस वक्त तक बंद रहेगी जब तक कि अमरीका के साथ तयशुदा उसकी तमाम शराइत पूरी नहीं हो जाती। मर्दों के क्रिकेट में चौथे दिन श्रीलंका के खिलाफ गाले टेस्ट क्रिकेट में भारत की गिरफ्त मजबूत हो गई है। मेज़बान टीम 372 रन के जीत के निशाने के लिए खेलते हुए 84 रन पर 4 विकेट खो चुकी है और ट्रेसा जॉली और गायत्री गोपीचंद पर मुश्तमिल भारत की ख्वातीन की डबल्स की जोड़ी नई दिल्ली में बैडमिंटन आलमी चैम्पियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुँच गई है। अब खबरें तफसील से। ब्रिक्स मुल्कों ने माहौलियाती तहफ्फुज़ और पायदार तरक्की के लिए अपनी शराकत दारी को मुस्तहकम करने के अज़्म का आज एक बार फिर इआदा किया। नई दिल्ली में ब्रिक्स मुल्कों के माहौलियात से मुतालिक वुज़रा की 12वीं मीटिंग के इख्तिताम के मौके पर एक मुश्तरका वजारती बयानिए में आज कहा गया है कि ब्रिक्स ममालिक पायदार तरक्की के लिए 2030 के एजेंडे की मुकम्मल और मौसर अमल आवरी में पेशरफ्त आबोहवा की तब्दीली से मुतालिक अक्वाम मुत्तहिदा फ्रेमवर्क कन्वेंशन और उसके पेरिस माहदे के तहत अपने अज़्म को एक बार फिर दोहराते हैं। मेंबर मुल्कों ने इस बात पर भी जोर दिया कि तरक्की याफ्ता मुल्कों की जानिब से फाइनेंस की दस्तियाबी समेत बैनुल अक्वामी तआवुन में इजाफा लाजमी है ताकि तरक्की पज़ीर ममालिक माहौलियाती और आबोहवा से मुतालिक चैलेंजों से मौसर तौर पर निमटने के अहल हो सकें और साथ ही पायदार तरक्की और गुरबत को जड़ से ख़त्म करने के मामले में पेशरफ्त कर सकें। ब्रिक्स ममालिक ये मानते हैं कि ब्रिक्स मुल्कों के माबैन और उनके बाहर भी जिसमें जुनूब जुनूब तआवुन के ज़रिए भी तआवुन और शराकत दारी शामिल है से अवाम मरकूज अंदाज नज़र के साथ पायदार तरक्की की राह हमवार होगी। इस बरस भारत ब्रिक्स की सदारत कर रहा है जिसका मौजू है मज़ाहिमत इख्तिराआत तआवुन और पायदारियत के लिए तामीर। ब्रिक्स वुज़रा ने पायदार तरक्की का अहल होने की हैसियत से सर्कुलर मईशत में पेशरफ्त के ताल्लुक से भारत की क़ियादत के लिए अपनी सताइश का इजहार किया। इससे कल मीटिंग से खिताब करते हुए माहौलियात जंगलात और आबोहवा की तब्दीली के मरकज़ी वज़ीर भूपेंद्र यादव ने ज़ोर देकर कहा कि माहौलियाती कार्रवाई अवाम मरकूज पायदार और तरक्की पज़ीर ममालिक के हकाइक के तईं ज़िम्मेदार होनी ज़रूरी है। वज़ीर मौसूफ़ ने उभरते हुए आलमी माहौलियाती चैलेंजेस को उजागर किया और उनसे निमटने के लिए ब्रिक्स के मजबूत तआवुन की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। उन्होंने भारत की ब्रिक्स सदारत के लिए 4 तरजीहात पायदार तर्ज ज़िंदगी का फ़रोग, शजरकारी, जंगलात में आग का बंदोबस्त और कुदरती आफत की सूरत में मज़ाहिमत, सर्कुलर मईशत और तताबुख का खसूसी तौर पर ज़िक्र किया। भारत ने आज कहा है कि उसकी इंतखाबी मशीनरी की भरोसेमंदी और वसत आलमी सतह पर पूरी तरह अपनी शनाख्त रखती है। वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने आज शाम नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए ये बात कही। जनाब जायसवाल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भारत के इंतखाबी निज़ाम की सताइश और आला इंतखाबी कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के अमरीकी इंतखाबात में वोटरों की शिनाख्त की कमी के मुतालिक

श्रोताओं, कहकशा कार्यक्रम की अगली गजल हम आपको सुनवा रहे हैं असलम साबरी की आवाज में। संगीत है नायाब राजा का, शब्द रचना सनी असलम की।

0: गजल हम आपको सुनवा रहे हैं भूपेंद्र सिंह की आवाज़ में, बोल हैं सरदार अंजुम के, संगीत भूपेंद्र सिंह का।
1: आज जाने

भूपिंदर सिंह की आवाज़ में ये गज़ल आपने सुनी। इसी के साथ कहकशा कार्यक्रम यही समाप्त होता है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण लखनऊ केंद्र से होगा, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: खेल दर्पण, खेल दर्पण, दर्पण।
1: श्रोताओं नमस्कार, खेल दर्पण के इस अंक में आपका स्वागत है। इस बार मैं सुंदरम तिवारी। आज के अंक में आप सुनेंगे खेलो इंडिया कार्यक्रम और उत्तर प्रदेश की खेल नीति से बदलता खेल परिदृश्य विषय पर उप क्रीड़ा अधिकारी देवी प्रसाद से की गई बातचीत, और प्रयागराज के उभरते प्रतिभावान पोलवार्ड खिलाड़ी आर्यदेव तथा शॉटपुट खिलाड़ी

0: नवीन यादव से भेंट वार्ता। एक बड़ी आम चर्चित या यूं कहे कि लोग कोकती है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, लेकिन आज के दौर में ये कहावत उतनी समीचीन नहीं बैठती क्योंकि खेल की दुनिया में आजकल सफलता के मायने अलग ही हो गए हैं। भारत में क्रिकेट के साथ साथ अन्य खेल जो हैं उनकी क्षेत्र में खिलाड़ियों की और उन तमाम निवेशकों की सफलताओं के मायने बदले हैं और भारत के साथ साथ पूरा विश्व इस समय खेल के प्रति जागरूक हुआ है और न केवल आर्थिक बल्कि भावनात्मक रूप से भी लोगों का बहुत बड़े पैमाने पर जुड़ाव हुआ है। भारत सरकार ने भारत में खेल की स्थिति सुधारने के लिए खेलो इंडिया कार्यक्रम जैसे कार्यक्रम का निर्माण किया। 2017-18 में ये कार्यक्रम शुरू किया गया हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा और इसका उद्देश्य ये रहा कि ग्रामीण स्तर पर और जो निचले तबके के लोगों को खेल से जोड़ना और उसके प्रति जागरूक करना। भारत सरकार के साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अभी हाल ही में 2023-24 या यूं कहें कि 2022-23 में अपनी एक खेल नीति जारी की और खेलों को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल की है। अब प्रश्न ये उठता है कि इन खेलों का निचले स्तर पे या यूं कहें कि ग्रास रूट लेवल पे क्या परफॉर्मेंस है या इससे कितना प्रभाव बढ़ा है, खेलों की दशा कैसी हुई है या उनमें किन चीज़ों की किन सुधारों की आवश्यकता है या उनको किस तरह के दिशा निर्देश की आवश्यकता है, इन तमाम विषयों पर इन तमाम प्रश्नों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ इलाहाबाद के उप क्रीड़ाधिकारी श्री देवी प्रसाद जी हैं। देवी प्रसाद जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद सर।
0: तो देवी प्रसाद जी आप उप क्रीड़ाधिकारी हैं और यहाँ पे मदन मोहन मालवीय स्टेडियम में पोस्टेड हैं, किस तरह देखते हैं आप खेलो इंडिया कार्यक्रम को, किस तरह से इसने खेल की दशा ग्राउंड लेवल पे बदली है?
1: जब से खेलो इंडिया कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्टार्ट किया 2017 और 18 से
0: जी,
1: तब से फर्स्ट टाइम था, उतना जागरूकता नहीं था खिलाड़ियों को, लेकिन हमारे जो खिलाड़ी है उस कार्यक्रम के बाद फर्स्ट टाइम 14 गेमों को स्टार्ट किया था, उस समय स्कूल गेम्स के नाम से उन्होंने स्टार्ट किया था।
0: अच्छा।
1: उसके बाद जब कार्यक्रम स्टार्ट किया गया तो उसके बाद ग्रामीण अंचलों से लड़कों ने उस कार्यक्रम में जो जो लड़कों ने मेडल किया उसको 1000 पूरे देश से लड़कों को चयन किया गया।
0: अच्छा।
1: और 10,000 पर मंथ स्टार्ट किया गया था कि लड़के आगे चल के अच्छे से अच्छे परफॉर्मेंस करें और देश के लिए मेडल दें।
0: 10,000 रुपए पर मंथ की स्कॉलरशिप दी गई।
1: स्कॉलरशिप। अच्छा। उसमें हमारे प्रयागराज से कई लड़कों, विपिन कुमार सिंह थे और थे, दो तीन लड़के थे जो उनको स्टार्ट हुआ था।
0: स्टार्ट हुआ जी।
1: आज प्रेजेंट टाइम में सब नौकरी में है।
0: अच्छा।
1: खेलो इंडिया की देन है और उसी से फिर बाद में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुआ। अभी फिलहाल प्रेजेंट टाइम में दिव्यांग पैरा ओलंपिक भी खेलो इंडिया में शामिल हो गया, जिसका इस समय 20 मार्च से 27 मार्च तक नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है
0: जी।
1: उसमें हमारे प्रदेश से भी लड़के प्रतिभाग किए हैं और खेलो इंडिया स्कीम को देश के प्रत्येक जनपद में
0: जी,
1: हमारे यहाँ भी उसी तरह उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में खेलो इंडिया के तहत एक एक खेल को विकसित करने के लिए भारत सरकार के जो खेलो इंडिया स्कीम के तहत से उत्तर प्रदेश सरकार उस पर काम कर रही है। इसे हमारे प्रयागराज में खेलो इंडिया के तहत लॉन टेनिस का कैंप चल रहा है जिसमें हम लोग 12 वर्ष से लेके 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को उसमें हम लोग चयन करते हैं, जिससे कि हम उन बच्चों का चयन करके स्पोर्ट्स कॉलेज, जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट की जो नियम है, जो खेला स्थापनाएं हैं, जिसे स्पोर्ट्स कॉलेज एक स्पोर्ट्स छात्रावास जिसमें हम लोग चयन कर सकते हैं।
0: देवी प्रसाद जी ये बताइए कि आपके मदन मोहन मालवीय स्टेडियम में जो छात्र आते हैं ना, तो क्या प्रक्रिया है? सबसे पहले कोई छात्र अगर या कोई सामान्य एक लड़का इच्छुक है किसी खेल में जाने के लिए तो कैसे वो एडमिशन पा सकता है आपके कॉलेज में?
1: हम लोग का नया सत्र प्रत्येक वर्ष अप्रैल के फर्स्ट वीक से स्टार्ट होता है।
0: अच्छा।
1: और एक साल के लिए उसका चलता है
0: जी,
1: फिर नेक्स्ट ईयर फिर वही प्रक्रिया होती है।
0: अच्छा।
1: उसमें हम लोग कम एज के बच्चे, जैसे जिम्नास्टिक है 7-8 वर्ष के बच्चे
0: जी,
1: ताइकांडो है या इस तरह के जो छोटे बच्चों के गेम है जिसमें 6-7 वर्ष, ताइकांडो हो गया, जूडो हो गया, जिसमें वो सब बच्चे को हम लोग एडमिशन लेते हैं। और इससे एथलेटिक्स हो गया, कुश्ती हो गया, फुटबॉल हो गया, उसमें 9-10 साल के बच्चे, उन नए बच्चों का हम लोग चयन करते हैं। हमारा काम है कि एक तो आवासीय छात्रावास के लिए, एक स्पोर्ट्स कॉलेज जो हमारा मेन है।
0: अच्छा।
1: स्पोर्ट्स जो यूपी का अपना जो मेन है, स्पोर्ट्स कॉलेज में हम लोग कक्षा 6 में एडमिशन लेते हैं।
0: अच्छा।
1: जिसमें खिलाड़ियों की आयु 9 से 12 वर्ष के बीच होनी चाहिए, वो कक्षा 6 के लिए होता है। तो उसमें जो हमारी सुविधाएं हैं, बच्चे का एडमिशन होने के बाद फीस, पूरा उनका ड्रेस, स्पोर्ट्स किट, पढ़ाई लिखाई सब आवासीय कैंपस के अंदर होता है,
0: ठीक है,
1: उनको कहीं बाहर जाना नहीं है। और एक हमारा आवासीय छात्रावास व्यवस्था है जो 12 वर्ष के ऊपर, मतलब अंडर 15, 15 वर्ष से कम आयु के जो कक्षा 9 में एडमिशन होता है, तो उसका चयन प्रणाली में यह सिस्टम कि बच्चा अभी अब ऑनलाइन सिस्टम हो गया, सब खेल साथी पोर्टल पर बच्चा फार्म भर

0: अप्लाई कर सकता
1: ऑनलाइन अप्लाई करें और फिर
0: है।
1: चयन किया। तो जब किसी बच्चे को आप चयन करते
0: जी
1: हैं तो किन किन चीजों का ध्यान रखते हैं, कि क्या कोई लिखित परीक्षा होती है या सिर्फ आप ग्राउंड पे उसका टेस्ट लेते हैं उस
0: नहीं, हम लोग
1: संबंधित खेल से?
0: फिजिकली सर ग्राउंड पर ही लेते हैं, ओवरऑल
1: अच्छा
0: कुछ उनका देखते हैं कि आईक्यू क्या है। किसी चीज़ को अगर टेक्निक को पकड़ाएं तो कितना जल्दी पकड़ सकता है, आईक्यू उसकी जैसे है तो उसको उस गेम के हिसाब से प्रोग्रेस करते हैं। दूसरी चीज़, हम लोग उनका एक बैटरी टेस्ट रखते हैं।
1: अच्छा बैटरी टेस्ट क्या होता है?
0: बैटरी टेस्ट में उसमें हम लोगों ने जैसे 100 मीटर है,
1: अच्छा
0: शटल रन है, मेडिसिन बॉल थ्रो है, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप है और 800 मीटर है। उसमें
1: अच्छा
0: हम लोग इसलिए टेस्ट लेते हैं कि जिसे उसका 100 मीटर स्पीड चेक करते हैं,
1: अच्छा
0: क्योंकि स्प्रिंटर बाई बर्न होता है। अगर वो अगर मान लीजिए ऑलरेडी अच्छा भाग रहा था, इसका मतलब उसको लोग स्प्रिंट इवेंट में ला लेते हैं।
1: अच्छा
0: एक एजिलिटी टेस्ट है जिसको शटर रन कहते हैं, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप है लेग स्ट्रेंथ के लिए, मेडिसिन बॉल थ्रो है आर्म स्ट्रेंथ के लिए, 800 मीटर उसके इंड्योरेंस और ऑक्सीजन कैपेसिटी चेक करने के लिए करते हैं। तो इससे हम लोग को लगता है कि बच्चा किस इवेंट में कर सकता है। अगर देखते हैं कि नहीं ये बच्चा नहीं अच्छा कर पाएगा तो उसको हम लोग कहते हैं बेटा पढ़ाई में ठीक हो तो पढ़ाई की तरफ जाओ।
1: अच्छा
0: हाँ,
1: अपना
0: अगर
1: समय
0: फिजिकल के लिए करना है तो आप फिजिकल एक्टिविटी के लिए कर सकते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स के लिए आप उतना नहीं है। ये नहीं कहेंगे कि आप स्पोर्ट्स ना करो,
1: हाँ
0: लेकिन
1: स्पोर्ट्स मत
0: शारीरिक
1: करिए,
0: मानसिक और स्वास्थ्य रूप के लिए आपको किसी न किसी फिजिकल एक्टिविटी या स्पोर्ट्स से जुड़ना बहुत जरूरी है
1: बहुत जरूरी
0: आज के
1: है
0: परिवेश
1: जी
0: में,
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि आजकल बच्चों के ऊपर इतना दबाव है मानसिक रूप से कह
1: हाँ
0: दिया जो भी, या पेरेंट्स का या जो भी है, सभी का है कि केवल पढ़ाई पढ़ाई, और
1: हाँ
0: फिजिकल और इनका जो शारीरिक विकास रुक रहा है,
1: अच्छा
0: जिससे उनको आज के परिवेश को सहन नहीं कर पा रहे। देखिए आए दिन
1: हाँ
0: बच्चे
1: बदलते परिवेश में बिल्कुल। खेलो इंडिया कार्यक्रम का भी उद्देश्य यही है
0: जी
1: ना। अच्छा खेलो इंडिया कार्यक्रम 3 स्तर या 4 स्तर पे मैं समझता हूँ हो रहा है, एक
0: जी जी
1: विश्वविद्यालय स्तर पे, स्कूल स्तर पे, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताएं।
0: हमारा दो है सर। अब इसका जो पहला हमारा आ गया कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हो गया,
1: अच्छा
0: जिसमें 21 वर्ष से कम, और एक है अंडर 17, जिसके स्कूल से ही बच्चे, और हमारा यूथ जिसे नेशनल गेम्स होता है अंडर 18, उससे बच्चों का चयन करते हैं। तो इसमें स्कूल से और एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया जो भी एसोसिएशन है उससे
1: हाँ
0: बच्चों का चयन करते हैं, उसका नेशनल पर होता है। उसमें नेशनल से चयन करके उस बच्चों को, अब एक स्कीम है, अब तो टेस्ट कर करके उन्होंने अपना खेलो इंडिया का एक स्कीम करके बच्चों को वो एडाप्ट कर रहे हैं, स्पेशल ट्रेनिंग लगा रहे हैं,
1: अच्छा
0: उसमें भी बच्चों को विशेष प्रशिक्षण करके वो अपने आवासीय जो एसटीसी का
1: हाँ
0: सेंटर है उसमें भी वो ले रहे हैं।
1: देवी जी, जैसे मैं थोड़ा सा पिछले प्रश्न पर ले जाऊंगा
0: जी
1: कि आपने जब बच्चे का चयन कर लिया, अपने स्पोर्ट्स
0: जी
1: कैंपस है उसके लिए, फिर क्या उसकी दिनचर्या होती है? आप कैसे उस शुरुआत से लेके, आपका कई स्तर होता होगा
0: जी जी
1: ट्रेनिंग का है ना, तो कैसे उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं?
0: हम लोग हर बच्चे की एज के हिसाब से ट्रेनिंग शेड्यूल डिवाइड करते हैं।
1: अच्छा
0: जैसे अंडर बच्चा अंडर 14 है तो उसका अलग होगा, अंडर 16 है तो अलग है, अंडर 19 अलग है, 20 अलग है, मेंस अलग है।
1: अच्छा
0: कुछ एज के लेवल के कंपटीशन में उसको जाना है, उस
1: अच्छा
0: हिसाब से उसका ट्रेनिंग है। और डिपेंड करता हमारा कंपटीशन डेट कि नेशनल
1: अच्छा
0: कंपटीशन कब या इंटरनेशनल का कंपटीशन मेरा कब है,
1: कब
0: तो उस हिसाब से हम लोग 3 तरह से डिवाइड करते हैं, मतलब ईयरली, मंथली और वीकली प्लान, उसको हम लोग माइक्रो और बोलते हैं मीजो,
1: अच्छा
0: ये प्लान है। अगर हमारा लॉन्ग ड्यूरेशन इसलिए लेके चलते हैं, अगर नहीं लड़के को जाना है कॉमनवेल्थ गेम्स या एशियन गेम्स में, तो उसका टारगेट हम लोग अभी विजन बना के चलते हैं कि इसको हमको धीरे धीरे हर साल कितना इम्प्रूव करना है उसको।
1: अच्छा
0: बीच में अगर कोई टूर्नामेंट जिससे आ गया हमारा नेशनल का इस तरह का, तो हम उसका ट्रेनिंग में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, लेकिन हमारा जो ईयरली प्लान लेके चल रहे हैं वही रहेगा, लेकिन
1: हाँ
0: कंपटीशन सेशन आने के बाद थोड़ा सा हम लोग स्पीड बढ़ गया इस तरह लोड कम करके उसको चेंज कर।
1: ये तो हो गया आपका अलग अलग शेड्यूल बच्चे को।
0: जी
1: पहली बात तो आप ये बताएं कि जो बीच में कंपटीशन होते हैं, एक तो अंतर जनपदीय होता है
0: जी
1: और एक मंडलीय अंतरराज्यीय है
0: हाँ
1: ना,
0: अंतर्राज्य
1: तो इन कंपटीशनों के लिए क्या कोई अलग से ट्रेनिंग दी जाती है या आपकी जो ट्रेनिंग शेड्यूल रहता है उसी में आप इम्प्रूवमेंट करते चलते हैं?
0: ट्रेनिंग जो शुरू रहता है उसी को इम्प्रूवमेंट करता है। बीच में अगर कोई स्टेट टूर्नामेंट आ गया
1: हाँ
0: तो हम लोगों को जिसे 10 दिन 15 दिन पहले पता चला, तो वही जो वीकली ट्रेनिंग शेड्यूल है उनको चेंज करके स्पीड वर्क कराया जाता है। और बाकी मेन फोकस यही रहता है कि हमारा खिलाड़ी ट्रेनिंग के दौरान इंजरी में न जाए, जो कंपटीशन का टारगेट है वो मेन चीज़ है।
1: हाँ
0: और जो ट्रेनिंग का शेड्यूल है हम लोग का प्रातः और सायं दो चलता है सेशन,
1: अच्छा तकरीबन कितने घंटे का सेशन होता है, सुबह और शाम का?
0: 3 घंटे का सुबह और 3 घंटे का शाम का सेशन
1: शाम का
0: होता
1: सर
0: है। लेकिन अगर छोटे बच्चे हैं तो
1: हाँ
0: उनका 1-1.5 घंटे का जो एडवांस ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो 7 साल से 8 साल, उनको 3 से 3.5 घंटे का ट्रेनिंग शेड्यूल है।
1: आपके जो आवासीय बच्चे हैं, लोकल होते होंगे बच्चे, वो
0: जी
1: ट्रेनिंग करने के बाद अपने घर जाते होंगे, फिर आपकी जिम्मेदारी उनकी खत्म हो जाती होगी, जो आपके परिसर में जो बच्चे रहते हैं उनके पढ़ने की व्यवस्था कैसे की जाती है?
0: उनकी पढ़ने की व्यवस्था पूरी सरकार के द्वारा है। ये
1: अच्छा
0: बच्चे यहाँ

0: आते हैं उनका, जो हमारे सरकारी कॉलेज होते
1: हाँ
0: हैं जो कैंपस से हमारे नज़दीक हो, उस विद्यालय में उनका एडमिशन कराया जाता है।
1: जी
0: बच्चे उसमें आफ्टर ट्रेनिंग पढ़ने जाते हैं और उसके बाद पूरी फीस जो होती है सरकार का है, मतलब
1: हाँ
0: 3,000 रुपया पर ईयर,
1: पर ईयर के हिसाब से।
0: ये है सुविधा फीस की, और 2,000 मेडिकल की। और
1: अच्छा
0: बच्चे अगर कहीं खेलने जाते हैं तो उनकी जो अपना सरकारी फेयर है वो उनको मिलता है छात्रावास में।
1: देवी प्रसाद जी, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी खेल नीति बनाई है, तो उस खेल नीति से कितना फर्क पड़ा है? आपके जो खेल प्रोग्राम है या जो प्रदेश का जो स्तर है वो किस हिसाब से बदला है?
0: हमारा 2023 में खेल नीति लागू किया था माननीय मुख्यमंत्री जी ने,
1: जी
0: तब से हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का तो अपना काम कर रहा था, जो हमारा स्पोर्ट्स एसोसिएशन है
1: जी
0: वो भी और एक्टिव है। अब स्पोर्ट्स खेल नीति आने से जो हमारे खेल विभाग के, क्योंकि सारे जो फाइनेंशियल खर्च हैं
1: जी
0: हमारा खेल विभाग करता है, स्पोर्ट डिपार्टमेंट
1: अच्छा
0: सरकार हमारी करती है, और कोचेज भी कोचिंग देने काम हमारा स्पोर्ट डायरेक्टरेट करता है। एसोसिएशन का काम है कि टूर्नामेंट का डेट आयोजित करना
1: हाँ
0: अपना, उनको ऑफिशियल देना, और टीम ले जाने के लिए अपना टीम मैनेजर और करते
1: टूर्नामेंट
0: हैं,
1: का टोटल आयोजन जो होता है वो उसको मैनेज करते हैं,
0: मैनेज
1: समायोजित करते
0: करते
1: हैं।
0: हैं, और जिसे जो स्टेट के हमारे जो एसोसिएशन है, जो भारत सरकार के फेडरेशन है, तो वो डेट के अनुसार वो समय से आयोजन कराना। और ये भी हुआ कि जब से खेल नीति आने के बाद समय से हमारे आयोजन भी हो रहा है, समय से टीम भी जा रही है, हर चीज़ है
1: तो चीजें शेड्यूल्ड हो गई हैं, है ना?
0: शेड्यूल्ड हो गई है। और उसमें हम लोगों ने शिक्षा विभाग में इन्वॉल्व कर दिया है,
1: अच्छा
0: और जिसे हमारे कोचेज विद्यालयों में जाके ट्रेनिंग देते हैं कि जो
1: हाँ,
0: बच्चे।
1: मैं अभी इस प्रश्न पर आऊँगा
0: जी जी
1: कि जैसे खेलो इंडिया कार्यक्रम में
0: जी
1: स्कूलों को शामिल किया गया कि स्कूली स्तर पर खेल को बढ़ावा दिया जाए,
0: जी जी
1: तो उसमें आपकी क्या भूमिका है? आप कैसे स्कूलों में खेल को बढ़ावा दे रहे हैं?
0: हमारे यहाँ जितने कोचेज हैं
1: हाँ
0: सभी गेम के अलग अलग कोच हैं, अलग
1: हाँ
0: अलग विद्यालयों में प्रत्येक मंथ कम से कम 2 दिन कम से कम किसी न किसी विद्यालय में जाएं, वहां जाके ट्रेनिंग तो नहीं दे, बेसिक
1: हाँ
0: चीज बताएं और खेल के बारे में कैसे कैसे आए, किससे आपका इससे भविष्य बन सकता है, वहां से आए, वहां अगर संसाधन है तो ठीक, नहीं तो
1: ठीक
0: बच्चा स्टेडियम में आके भी प्रैक्टिस कर सकता है।
1: है। अच्छा
0: ये हम लोग पूरा जानकारी और खेलो इंडिया की जो योजनाएं हैं उसके बारे में जानकारी करते हैं, और जो खेल विभाग की जानकारी उनको सब बताते हैं।
1: खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत आपके यहाँ जो अभी पिछले साल की जो अचीवमेंट्स हुई हैं उसके बारे में कुछ बताइए। इस कार्यक्रम के तहत आपने जो
0: जी
1: तैयारियां करवाई, तो हाल ही में जो बच्चे सफलता प्राप्त किए मदन मोहन मालवीय स्टेडियम या अमिताभ बच्चन स्पोर्ट्स अकेडमी या
0: जी
1: प्रयागराज की
0: जी
1: जो उपलब्धि रही
0: जी जी
1: उसके विषय में थोड़ा सा बताएं।
0: खेलो इंडिया में हमारे यहाँ प्रयागराज की उपलब्धि अच्छी रही है,
1: अच्छा
0: एथलेटिक्स में भी, वॉलीबॉल में भी यूपी की टीम विनर रही
1: अच्छा
0: अंडर 17 में, उसमें हमारे अमिताभ बच्चन स्पोर्ट्स छात्रावास के कम से कम 5-6 बच्चे थे,
1: अच्छा
0: और हमारे एथलेटिक्स छात्रावास के 3 बच्चों ने खेला जिसमें 2 का मेडल था, 1 पार्टिसिपेशन था, और हमारे स्थानीय बच्चे, ये नहीं कि केवल छात्रावास के,
1: जी
0: स्थानीय बच्चे भी हमारे गए, हम लोग टोटल एथलेटिक्स में 9 बच्चे गए थे यहाँ से प्रयागराज से, पिछले
1: अच्छा
0: वर्ष की जो हमारा खेलो इंडिया हुआ था चेन्नई में, उसमें काला कि सबका अच्छा अचीवमेंट रहा, पोल वॉल्ट में भी हमारा रिजल्ट रहा, और गेम में जिसे वेट लिफ्टिंग में भी एक बच्चा था।
1: देव प्रसाद जी, एक बड़ा आधारभूत प्रश्न है कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग का खर्च वहन करने में उनको समस्या होती है, वित्तीय रूप से उतने सक्षम नहीं होते, उनके लिए किस तरह की सुविधाएं सरकार मुहैया करवाती है?
0: हमारे यहाँ इस समय एक एकलव्य क्रीड़ा कोष है, तो जो बच्चे स्टेट में मेडल दिए हैं या नेशनल खेले हैं तो वो एक फार्म है, वो जनपद के प्रत्येक स्टेडियम में मिलता है, वो बच्चा लेकर भर के अपने सर्टिफिकेट जो उसकी अचीवमेंट है वो अपने संबंधित एसोसिएशन के प्रदेश सेक्रेटरी से उसको वेरीफाई करा के उसको अपने जो भी जनपद है वहाँ के क्रीड़ा अधिकारी या क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी के माध्यम से वो खेल निदेशालय जाते हैं, तो उस बच्चों को प्रोत्साहन के रूप में उनको पोषण सामग्री या इक्विपमेंट से संबंधित जो भी है सरकार उस लेवल के जिस लेवल का खिलाड़ी
1: आर्थिक
0: उसके हिसाब
1: सहायता।
0: से आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
1: अच्छा, कभी कभी ऐसे बच्चे भी आते होंगे जो खेलने में बड़े अच्छे होते होंगे और पढ़ने में भी उनकी ठीक पकड़ होती होगी, ऐसे में माता पिता जो हैं उनके वो उतना सपोर्ट नहीं करते होंगे बच्चों को और आप चाहते होंगे कि बच्चा खेले, तो ऐसे में कैसे आप उनके माता पिता को कन्विंस करते हैं या राजी करते हैं कि बच्चा आगे बढ़े खेल के फील्ड में? कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम जिस समाज में रहते हैं
0: जी
1: वहाँ ये
0: जी
1: परंपरा है ना कि माता पिता चाहते हैं कि बच्चा IITian बने या बच्चा डॉक्टर बने या बच्चा IAS ऑफिसर प्रशासनिक सेवा में जाए, लेकिन बहुत कम ही माता पिता होंगे जो बचपन से ही ये चाहते होंगे कि हमारा बच्चा अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन बने।
0: जो गार्जियन है हम तो उनको कहते हैं, हम कहे आपको अगर लगता है कि नहीं मेरा बच्चा का लायक नहीं बने, लेकिन कम से
1: अच्छा
0: कम उसको एक स्वस्थ नागरिक तो बनने दीजिए जिससे समाज के लिए
1: अच्छा

0: क्योंकि वो ये नहीं कि पढ़ने में ही ठीक है, उसको साथ साथ स्पोर्ट्स में भी ठीक है, दोनों तरफ पहलू से वो विकास कर सकता है। तो हम लोग उनको मोटिवेट करते हैं।
1: हाँ
0: अब गार्जियंस हम लोग कहाँ रोज आते हैं कि सर हमारा बच्चे को किसी तरह मोटिवेट करिए स्पोर्ट्स की तरफ। आज के युग में जब से ये हमारा कोरोना काल से सभी बच्चे मोबाइल की ओर डाइवर्ट हो गए
1: हाँ
0: हैं, ये
1: मोबाइल
0: सबसे बड़ा गार्जियंस के ऊपर बहुत बड़ा है। सभी गार्जियंस इससे परेशान है कि बच्चों को किस तरह मोटिवेट किया जाए।
1: अच्छा
0: स्पोर्ट्स एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम लोग उनको अच्छी दिशा में ला सकते
1: ला
0: हैं।
1: सकते हैं। हमारे रेडियो के माध्यम से आप यूथ को अगर कोई संदेश देना चाहें।
0: हमारा आकाशवाणी के माध्यम से सभी गार्जियंस और खिलाड़ियों को, जो यूथ लेवल के बच्चे हैं, वो किसी न किसी, जो ग्रामीण लेवल पर हैं तो युवा कल्याण विभाग के मिनी स्टेडियम वहाँ जुड़ें, और जो शहरी क्षेत्र में है या जो आ सकते हैं स्टेडियम में उनसे आप जुड़ें। दोनों टाइम न तो कम से कम एक टाइम स्पोर्ट्स के लिए, अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बच्चों को समय दें, और जो शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा वहीं अच्छा विकास करेगा देश के लिए, भविष्य के लिए।
1: जी देवीलाल जी, आपने हमसे बात की और अपना महत्वपूर्ण समय दिया, इतनी लाभकारी जानकारियाँ दी। उम्मीद है कि हमारे जो श्रोता हमारे इस प्रोग्राम को सुन रहे होंगे वो निश्चित रूप से इस जानकारी से लाभान्वित होंगे और न सही एक अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन के रूप में बल्कि अपने जीवन शैली में खेल को शामिल करके एक स्वस्थ मनुष्य के रूप में जीवन यापन जरूर करेंगे। आपने हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा खेलो इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत और फिर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नई खेल नीति जारी होने के बाद हमारे आसपास प्रदेश और देश में खेल का परिदृश्य बदला है और नए उम्र के जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, वो खेल से जुड़ रहे हैं, न केवल अपने स्वास्थ्य के लिए बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करने के लिए, मेडल लाने के लिए, और एक नई उमंग, एक नई तरंग, एक नई ऊर्जा के साथ नए उम्र के बच्चे नए नए खेल को स्वीकार कर रहे हैं और सरकारी तौर पर उनको जो इन खेलों की आधारभूत सुविधाएं हैं वो मुहैया कराई जा रही हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में दो बच्चे हैं, एक आर्यदेव हैं जो पोल वॉल्ट के प्लेयर हैं और नेशनल स्तर के खिलाड़ी हैं, दूसरे हैं नवीन यादव जो शॉट पुट यानी कि गोला फेंक के खिलाड़ी हैं और ये भी राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुके हैं। आप दोनों का हमारे स्टूडियो में स्वागत है।
2: धन्यवाद सर।
1: तो सबसे पहले मैं आर्यदेव आपसे जानना चाहूंगा कि
2: जी
1: आप
2: सर।
1: थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, कहाँ से शुरुआत की आपने खेल की, वो समय कौन सा था जब आपको लगा कि आपको पोल वॉल्ट खेलना चाहिए, कहाँ से शुरुआत की?
2: मेरा नाम आर्यदेव, मेरे पापा किसान हैं तो मैं गांव में रहता था। तो गांव में एक विद्यालय था सर जिसमें स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स था, तो मेरे गांव के कुछ लड़के जाते थे तो मैं उनके साथ देखने गया था कि क्या
1: अच्छा
2: होता है स्पोर्ट्स, कैसे होता है। तो वहाँ सर पोल वॉल्ट सिखाते थे तो मैं देखा, काफ़ी हाइट से जंप कर रहे थे तो बहुत अच्छा लगा सर। मुझे भी जिज्ञासा हुई कि मैं सीखूंगा इसको, तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। उसके बाद सर कुछ दिन बाद लॉकडाउन लग गया कोविड की वजह से, तो लॉकडाउन लगने के बाद मैं यहाँ चला आया रूम लेके प्रैक्टिस करने। तो कुछ दिन तक यहाँ रूम लेके प्रैक्टिस किया, उसके बाद हॉस्टल का ट्रायल आया सर।
1: जो आप मदन मोहन मालवीय स्टेडियम प्रैक्टिस
2: जी
1: करते
2: जी
1: हैं?
2: जी सर।
1: अच्छा
2: तो मैंने हॉस्टल का ट्रायल दिया तो
1: अच्छा
2: जिसमें मेरा सिलेक्शन हो गया।
1: अच्छा
2: तो सिलेक्शन होने के बाद हमको अच्छे कोच मिले हैं और हमारे सरकारी व्यवस्था अच्छी मिली है सारी चीज़ें, तो जिसमें रहे कि हम अच्छा अपना परफॉर्मेंस कर रहे हैं सर।
1: हाँ,
2: हम नेशनल खेल चुके हैं, 4 नेशनल मेडल रह चुका है मेरा सर
1: 2019 से आपने शुरुआत की और
2: जी
1: 6 वर्षों
2: सर,
1: में आपके पास 4 नेशनल मेडल हैं।
2: जिसमें 2 साल रेस्ट हो गया था कोविड की वजह से,
1: अच्छा
2: लॉकडाउन था तो
1: अच्छा
2: उसमें कुछ नहीं किया, घर ही था सर
1: अच्छा कुल
2: जी
1: मिला के 4 साल में 4 नेशनल मेडल है,
2: जी
1: बहुत अच्छी सफलता है, या यूँ कहें कि आप प्रतिभाशाली हैं। आरदीप जरा ये बताइए कि जिस हॉस्टल में आप रहते हैं, मदन मोहन मालवीय स्टेडियम के हॉस्टल में आप रहते हैं,
2: जी
1: तो आपका जो खर्च है एक रोज़मर्रा आप एक के जीवन के लिए, जो हॉस्टल है
2: जी
1: वहाँ रहने का खर्च, खाने का और एजुकेशन का, ये सब खर्चे कैसे मैनेज होते हैं आपके?
2: जी मेरे सारे खर्चे गवर्नमेंट देती है,
1: अच्छा
2: वो चाहे स्कूल फीस हो या मेडिकल का हो
1: अच्छा
2: या स्पोर्ट्स डाइट का हो या रूम किराए, सब में सरकारी व्यवस्था है सर।
1: सारी सुविधाएं सरकार मुहैया करवाती
2: जी
1: है।
2: सर।
1: क्या रूटीन होता है आपका जब आप सुबह सो के उठते हैं, उसके बाद से दिन भर की दिनचर्या कैसी रहती है आपकी?
2: सुबह उठ के सर वही सारी जरूरी प्रक्रिया करते हैं,
1: अच्छा
2: उसके बाद हमारा असेंबली होता है 6 बजे,
1: हाँ
2: फिर वहाँ से हम अपना वर्कआउट स्टार्ट करते हैं जिसमें हमारा 3 घंटे तक वर्कआउट चलता है सर।
1: अच्छा
2: फिर वहाँ से आते हैं तो ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट करने के बाद हमें स्कूल जाना रहता है सर, वहाँ हम 3 घंटे क्लास करके आते हैं, फिर खाना खाते हैं, फिर रेस्ट करते हैं सर, फिर शाम को प्रैक्टिस करने जाते हैं सर, फिर वहाँ से आते हैं, जो हमारी डाइट प्रोटीन रहती है हम लेते हैं, उसके बाद थोड़ा पढ़ाई करते हैं सर, फिर डिनर होता है, उसके बाद फिर सोते हैं, रेस्ट करते हैं,
1: अच्छा
2: डेली का ही रूटीन है सर।
1: कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि मन नहीं लगता होगा कि मूवी देख लेते हैं या खेलने का मन ना हो, उस दिन क्या कुछ गैप करते हैं या फिर आप मन को मार लेते हैं?
2: नहीं सर, ऐसे ख्याल तो आता है

0: परंतु जब कंपटीशन पास में होते हैं तो ख्याल कंपटीशन के भी आ जाता है, जैसे मूवी का आया ख्याल, फिर जस्ट उसका कंपटीशन के भी। अगर मैं मूवी देखने गया, प्रैक्टिस नहीं किया, तो कंपटीशन में मेरे कंपटीटर जो आएंगे बाहर से,
1: हाँ
0: वो हमसे बेहतर कर जाएंगे। तो ये सब सोच के दूसरा मन दबा के रख लेते हैं सर, और प्रैक्टिस पे चले जाते हैं।
1: शरीर को फिट रखने के लिए जैसा कि आपने बताया कि आप सुबह वर्कआउट करते ही हैं, खाने पर कितना ध्यान रहता है आपका? क्या क्या चीज़ें आप खाते हैं, या क्या चीज़ें खाने से अवॉइड करते हैं कि इन चीज़ों को खाने से नुकसान होता है तो ये चीज़ें नहीं खानी है?
0: खाने में सर बाहर की चीज़ें तो बिल्कुल नहीं खाएं, ऑयली चीज़ बिल्कुल नहीं खाना चाहिए
1: अच्छा
0: जी। ये मार्केट वाली चीज़ कुछ नहीं लेनी चाहिए हमें, जितना हरी सब्जियां, फल
1: हाँ
0: या प्रोटीन कुछ होते हैं सर, ऐसे
1: अच्छा,
0: अंडे, केले, ये सब डेली का
1: प्रॉपर
0: रूटीन
1: डाइट आप फॉलो करते हैं खुद को
0: जी।
1: फिट करने
0: प्रॉपर
1: के
0: डाइट
1: लिए?
0: हमें डेली का रूटीन है ना सर, वो
1: अच्छा
0: गवर्नमेंट देती है
1: अच्छा
0: जी सर
1: तो उसका एक डाइटिशियन होता होगा जो आपकी डाइट डिसाइड
0: जी।
1: करता
0: पूरा
1: होगा,
0: मेन्यू होता है
1: पूरा
0: हमारा,
1: मेन्यू होता है आपका,
0: उसी के हिसाब से चलता है डेली
1: उसके
0: सर।
1: हिसाब से। अब जब आप किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो हारने का डर लगता है?
0: हारने का डर सर बना रहता है, जैसे कंपटीशन के पहले बना रहता है, पर जब कंपटीटर सामने होते हैं तो ये होता है सर, अगर डरेंगे तो हार जाएंगे, तो
1: हाँ
0: डरना नहीं है, डर हटा के सर अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करते हैं सर
1: बेस्ट परफॉर्म करते हैं, बाकी
0: जी
1: रिजल्ट
0: सर
1: जो होगा वो देखा
0: जी
1: जाएगा।
0: सर। डरेंगे तो फिर अगला वाला हम पे भावी रहेगा सर।
1: हमारे साथ बैठे हुए हैं नवीन यादव, जो शॉटपुट के प्लेयर हैं और राष्ट्रीय स्तर पर खेलते हैं। नवीन जी, कैसे आपने डिसाइड किया, या पहली बार आपने कब गोला फेंक की प्रैक्टिस की, बताइए अपने बारे में थोड़ा सा।
2: मैं पहले पढ़ाई करता था अपने पापा के पास, मेरे पापा फौज में हैं सर,
1: जी
2: जलंधर में पोस्टिंग है पंजाब। तो सर वहाँ पे स्कूल जब ओवर होता था सर,
1: हाँ
2: ग्राउंड की तरफ जाते थे,
1: हाँ
2: तो वहाँ पे देखते थे काफ़ी जो फौज के जो रहते थे सर, वो प्रैक्टिस करते रहते थे वहाँ,
1: हाँ
2: तो देखता रहता था मैं, तो
1: हाँ
2: देखते थे, मैं भी सोचा यार मैं भी कर सकता हूँ। तो
1: अच्छा
2: मैं गया भैया सर, क्या मैं भी कर सकता हूँ? तो उन्होंने कहा कि आओ देखो फेंको, फिर फेंके तो काफ़ी थोड़ा अच्छा गया, तो कहें कि हाँ तुम
1: अच्छा
2: कर सकते हो।
1: अच्छा
2: तो उन्होंने काफ़ी 1-2 महीने तक प्रैक्टिस करवाया, फिर स्कूलों में स्कूल गेम होते हैं,
1: अच्छा
2: तो वहाँ से मैं पार्टिसिपेट किया स्कूल गेम में उसी इवेंट से।
1: अच्छा
2: तो सर वहाँ पे मेरा मेडल लग गया, मैं SGFI तक गया। तो सर वहाँ से फिर एक मन बन गया कि हाँ यही गेम खेलना है।
1: तो इलाहाबाद फिर कैसे आना हुआ?
2: उसके बाद लॉकडाउन लगा 2 साल
1: अच्छा
2: का, तो
1: अच्छा
2: फिर सर पढ़ाई तो वहीं स्टॉप हो गई, अपने घर आ गए, फिर अब गांव में रहने लगे, फिर वहाँ कोई ऐसा कोच नहीं था कोचिंग देने वाला,
1: अच्छा कोई
2: तो
1: प्रॉपर मतलब ऐसा ना,
2: गाइड
1: कोई
2: करने
1: ऐसे
2: वाला नहीं
1: हाँ
2: था।
1: गाइड करने वाला नहीं था।
2: पूछा कई लोगों से, क्या कहीं मतलब कि हमारे यहाँ स्टेट में यूपी में कहीं प्रैक्टिस करने के लिए है? तो उन्होंने बताया कि जाओ यहाँ हॉस्टल है अपना इलाहाबाद में, प्रयागराज में,
1: अच्छा
2: इन सर के पास जाओ, देवी सर के पास, वो प्रैक्टिस करवाते हैं। तो आया पूछा, फिर बताया गया कि हॉस्टल वगैरह जैसे कैंप वगैरह मिलता है हम लोग को
1: अच्छा
2: ट्रायल देने पे, तो सर वहीं ट्रायल दिए, हुआ सिलेक्शन, सर के पास आए।
1: आपका क्या रूटीन होता है, क्या शॉटपुट का अलग कुछ टेक्निक होती
2: हाँ
1: है?
2: सर, उसके लिए सर बॉडी वेट का ज़रूरी है,
1: अच्छा आपका बॉडी वेट क्या कम होना चाहिए, ज़्यादा
2: नहीं
1: होना?
2: ज़्यादा, जितना बॉडी वेट हो उतना कम है
1: अच्छा मतलब उतना, जितना ज़्यादा हो सके उतना अच्छा।
2: जी सर। सर
1: अच्छा
2: इसमें वेट ट्रेनिंग चाहिए, स्पीड चाहिए, स्ट्रेचिंग वगैरह चाहिए सर, इसके
1: अच्छा
2: बाद से ज़्यादा ज़्यादा डाइट भी चाहिए इसके लिए। जो सर शॉट पुट रहता है 7.26 kg का होता है जी सर, उसको फेंका जाता है जितना हो सके।
1: कोई स्पेशल टेक्निक होती है उसको
2: हाँ
1: फेंकने
2: सर,
1: की,
2: इसके लिए
1: कैसे
2: एक
1: फेंकते हैं?
2: सर्कल होता है सर,
1: हाँ
2: उसमें सर उस डिस्को पट होता है सर्किल,
1: हाँ
2: वही सर गोल घूम के फेंकना पड़ता है, उसमें
1: कंधे के ऊपर
2: कंधे पे
1: रखकर।
2: रख के और सर्किल पे घूमना पड़ता है सर,
1: अच्छा
2: उसके लिए टेक्निक होती है।
1: क्या रूटीन होता है, सुबह कितने बजे सो के उठते हैं और फिर दिन भर कैसे बीतता है आपका?
2: सुबह सर वही 5:30 बजे लगभग सर उठ जाते हैं,
1: हाँ
2: उसके बाद अपना सब कुछ करके नीचे उतरते हैं, 6 बजे असेंबली होती है अपनी।
1: हाँ
2: असेंबली करने के बाद वार्म अप वगैरह करके फिर कोच को रिपोर्ट करके
1: अच्छा
2: अपना ट्रेनिंग जो सर बताते हैं हमारे, ट्रेनिंग शुरू करते हैं। उसके बाद ट्रेनिंग वगैरह जब ख़त्म हो जाती है, फिर रिपोर्ट लगाते हैं सर को, ऊपर जाते हैं अपना डाइट लेते हैं सर, डाइट लेने ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर स्कूल जाया जाता है। हाँ सर, फिर स्कूल आने के बाद खाना वगैरह खा के फिर रेस्ट करके फिर शाम की ट्रेनिंग।
1: नवीन, डेली रूटीन से अलग क्या हफ्ते में कोई रेस्ट डे भी होता है आपका?
2: रेस्ट डे तो नहीं होता सर, जैसे वैसे काफ़ी जब फ्राइडे सैटरडे आता है
1: हाँ
2: सर, उस दिन बॉडी एकदम थक जाती है शुरू
1: अच्छा
2: का वर्कआउट करते
1: हाँ
2: करते सर,
1: हाँ
2: उस दिन एकदम बॉडी चलती ही नहीं है,
1: अच्छा
2: फिर भी सर उसमें थोड़ा बहुत गैप कर लेते हैं वर्कआउट में।
1: कैसे मैनेज करते हैं आप पढ़ाई अपनी?
2: प्रैक्टिस के बाद जाते हैं जो 2-3 घंटे इस क्लास करते हैं।
1: अरदेव जरा आप बताएं क्या है पोल वॉल्ट?
0: पोल वॉल्ट जो है सर एथलेटिक में सबसे टेक्निकल गेम है सर। जब हम रनवे पे खड़े होते हैं पोल लेकर सर,
1: हाँ
0: तो जब पोल को ऊपर टांगते हैं हवा में,
1: हाँ
0: तो जो हमारा पहला स्टेप निकालते हैं वहाँ से सर, तो
1: हाँ
0: वहीं से हमें टेक्निक यूज़ करनी पड़ती है। 16 स्ट्राइड होता है हमारा
1: अच्छा
0: रनवे पे रनिंग
1: हाँ
0: का, तो हर एक स्टेप पे हमको टेक्निक सर देखना, कितने फोल्ड डाउन करना है,
1: अच्छा
0: किस लेवल पे हमको प्लांट करना है सर। तो जैसे सर और गेम होते हैं तो ग्राउंड से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन जो पोल वॉल्ट है सर ये हमें हवा में काम करना रहता है टेक्निक से। सब में तो आपको सर पता है कि हम जमीन पे कर लेंगे, पर पोल वॉल्ट डेंजरस है सर, हवा में सब कुछ करना रहता है, टेक्निकल गेम है सर। तो बहुत सारे टेक्निक होता है सर।
1: आप भी पढ़ाई कैसे मैनेज करते हैं अपना?
0: सुबह

0: प्रैक्टिस के बाद आते हैं, ब्रेकफास्ट स्कूल गए सर, फिर रेस्ट किए, फिर प्रैक्टिस किए, फिर शाम को आके डाइट लिए थोड़ा बहुत सर, उसके बाद 2 घंटे पढ़ाई कर लिए शाम को सर, फिर डिनर करके सो जाते हैं।
1: हरदेव नवीन, आपने अच्छी जानकारियां दी, आपके अनुभवों से हमारे युवा सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। आप लोग हमारे स्टूडियो में हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रोताओं, आज के अंक में बस इतना ही। अब मुझे यानी सुंदरम तिवारी को आज्ञा दीजिए, आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेल दर्पण, वाचन संपादन एवं प्रस्तुति थी सुंदरम तिवारी की। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र पर तैयार किया गया।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेल दर्पण। हम आकाशवाणी के
4: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

श्रोताओं एक सूचना सुनिए। गुरुवार दिनांक 20 अगस्त 2026 को प्रसारित होने वाले सजीव हेलो पनघट कार्यक्रम में महिलाओं के कानूनी अधिकार विषय पर आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए स्टूडियो में उपस्थित होंगे एडवोकेट नाजिया नफीस। आप अपने प्रश्न दोपहर 1:15 से 2 बजे तक फोन नंबर 0532-297-0462 और 0532-242-3649 पर पूछ सकते हैं। फोन नंबर फिर से सुन लीजिए 0532-297-0462 और 0532-242-3649। आप अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 8004926250 पर भी भेज सकते हैं। सूचना समाप्त हुई।

आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए पंडित नारायण राव व्यास का राग हमीर में ख्याल गायन। आपके साथ तबले पर संगत की है श्री शंभुनाथ भट्ट ने, सारंगी पर श्री नजीर अहमद खान। तो आइए सुनते हैं पंडित नारायण राव व्यास का राग हमीर में ख्याल गायन।

Mama, come on,

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित नारायण राव व्यास का राग हमीर में ख्याल गायन। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए समाचार जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि पर्यावरण से जुड़े प्रयास लोगों पर केंद्रित, टिकाऊ और विकासशील देशों की वास्तविकताओं के अनुरूप होने चाहिए। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक में कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान भारत का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से प्रेरित है। इसमें ग्लोबल साउथ की चिंताओं को एजेंडे में सबसे ऊपर रखा गया है और ब्रिक्स को सहयोग तथा स्थिरता के लिए

0: के समायोजन तथा नवाचार को बढ़ावा देने वाले मंच के तौर पर फिर से परिभाषित किया गया है। श्री भूपेंद्र यादव ने जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के नुकसान, प्रदूषण और आपदा के खतरों जैसी बढ़ती वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों पर प्रकाश डाला।
1: इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज,
2: जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का नुकसान और प्रदूषण, ये तीनों मिलकर एक बड़ा संकट पैदा कर रहे हैं। आपदाओं का बढ़ता खतरा भी दुनिया भर में पारिस्थितिकी तंत्रों को प्रभावित कर रहा है। ये चुनौतियाँ विकासशील देशों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा और समावेशी विकास जैसी व्यापक विकास प्राथमिकताओं से जुड़ी होती हैं।
1: फूड सिक्योरिटी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ।
0: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 2 अक्टूबर से एक महीने का अभियान बैंकिंग फॉर यूथ शुरू करेंगे। आज शाम नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सम्मेलन के समापन भाषण में उन्होंने कहा है कि इस अभियान का प्राथमिक उद्देश्य युवाओं को वित्तीय क्षेत्र से जोड़ना और उनकी वित्तीय यात्रा में मार्गदर्शन करना होगा। उन्होंने बताया कि अभियान का लक्षित समूह 16 वर्ष और उससे अधिक आयु के युवा पेशेवर होंगे। भारत ने इंडोनेशिया में आए भीषण भूकंप से हुई जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि भारत इस त्रासदी से बेहद दुखी है और भारत इंडोनेशिया को राहत और बचाव कार्यों में हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की चुनाव प्रणाली की प्रशंसा करने और अमरीकी चुनावों में मतदाता पहचान पत्रों की कमी पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की टिप्पणी का जिक्र करने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत की चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता सर्वविदित तथ्य है। बांग्लादेश से ऊर्जा संबंधी अनुरोध प्राप्त होने की खबरों पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत का बांग्लादेश के साथ ऊर्जा सहयोग जारी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस क्षेत्र में स्थानीय आबादी को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सहानुभूति और एकजुटता की जरूरत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत जापान साझेदारी को और मजबूत करने पर जोर दिया है। उन्होंने जापानी कंपनियों से भारत में निवेश और कारोबारी साझेदारी बढ़ाने का आह्वान किया। नई दिल्ली में जापानी प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के संबंध शांति, प्रगति और समृद्धि की साझा सोच पर आधारित हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली में हाल ही में छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिसकर्मियों के खिलाफ हिंसा के आरोपों की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने परीक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। एजेंसी ने करीब 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञों को शामिल करने का फैसला किया है। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार प्रश्न पत्रों की जांच के लिए 4 स्तर की व्यवस्था लागू की जाएगी। हॉकी इंडिया ने भारतीय महिला हॉकी टीम की फॉरवर्ड लाल रेमसियामी और पुरुष टीम के मिडफील्डर राजकुमार पॉल को अर्जुन पुरस्कार 2025 के लिए चुने जाने पर बधाई दी है। खेल मंत्रालय ने कुल 17 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति इन खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगी। मिजोरम की लाल रेमसियामी 2017 से भारतीय महिला हॉकी टीम का हिस्सा है। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भारत के ऐतिहासिक चौथे स्थान हासिल करने में अहम भूमिका निभाई थी। उत्तर प्रदेश के राजकुमार पॉल ने 2020 में अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण किया। वह पेरिस 2024 ओलंपिक में लगातार दूसरी बार कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय पुरुष हॉकी टीम का हिस्सा थे। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by V.C. Pramod. BRICS nation today reiterated their commitment to strengthening collaboration on environmental protection and sustainable development. A joint ministerial statement adopted on the conclusion of the 12th BRICS Environment Ministers meeting in New Delhi today said, BRICS nations also reaffirmed their commitment to advancing the full and effective implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development, the United Nations Framework Convention on Climate Change, and its Paris Agreement. The countries emphasize that enhanced